आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: फ्रीक्वेंसी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707-06-575।
11: श्रोता लोग प्रणाम, सुप्रभात, ई सुबह सवेरे के सुहाना मौसम में स्वागत बरुआ सबके। हम हई राउर रेडियो दोस्त दीपाली, और ई हम लेके हाजिर बानी स्वास्थ्य वर्धक घरेलू नुस्खा। वैसे तो कार्यक्रम के नाम तो रहुआ पता ही बा, आपन देह आपन देखभाल। दोस्त लोग, ये कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, तो आई श्री गणेश कही जाओ आज के शो के। दोस्त लोग, आज हम सबसे पहले बताएं प्याज के बारे में। सफेद प्याज के गुलाबी, लाल और पीला प्याज के किस्म से उत्तम मानल गइल बा। प्याज के भोजन के साथ कच्चा रूप में ही प्रयोग करे के चाहिए, ताहि कि पाके से ओके खाद्य गुण नष्ट हो जाला। प्याज एगो उत्तेजक आहार है, अतः एकर प्रयोग अधिक मात्रा में ना करे के चाहिए। प्याज के बीज से वृय के मात्रा बढ़ेला और दांत में लागल कीड़ा नष्ट हो जाला। प्याज के पत्ता में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड पावल जाला। प्याज के सेवन से पेशाब खुल के आवेला और बलगम पिघलेला। औषधि प्रयोग में प्याज के रस ही प्रयुक्त होला। तो दोस्त लोग, चले जानल जाओ कि प्याज के प्रयोग से कौन कौन बीमारी से पीछा छुड़ावल जा सकेला। बाजीकरण, बाजीकरण में सफेद प्याज के छिलके लुगदी बनाई और मक्खन में भूरा रंग तक तली। यदि ई तलल प्याज के एक चम्मच मात्रा रोजाना शहद के साथ सेवन कैल जाए तो ऐसे काम शक्ति बढ़ी और यौनांग भी सबल हो जाई। ई उत्तम बाजीकरण के काम करेला। पेशाब में जलन होकल पेशाब रुकल में यदि पेशाब करते समय जलन हो रहल होके तो एक चम्मच प्याज के लुगदी के 500 ग्राम पानी में उबाली। आ जब मात्रा आधा शेष रह जाए तो ओकरा के ठंडा करके छान ली और वो पानी रोगी के पिलाई। ऐसे पेशाब के जलन दूर हो जाई। प्याज के कद्दूकस करके 10 गुना चीनी के साथ रोगी के दी। ऐसे पेशाब की रुकावट दूर हुई और पेशाब के निर्बाध प्रवाह पुनः चालू हो जाई। दिल के दौरा में प्याज पर 7 वर्ष तक शोध करे के बाद यदि 100 ग्राम कच्चा प्याज रोजाना खाइल जाए तो दिल के दौरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज खून में थक्का बने के प्रवणता और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ल सामान्य हो जाई जैसे हृदय की प्रणाली सुचारू रूप से काम करे लगी। हैजा होके पे हैजा के इलाज में प्याज एगो प्रभावकारी साधन है। 5 से 6 चम्मच प्याज के रस में 7 काली मिर्च डाल के बारीक पीस ली और ई रोगी के दी। ऐसे प्यास कम लगी और बेचैनी वमन और दस्त सिरे की शिकायत भी दूर हुई। ऐसे अधिक प्रभावकारी बनावे खातिर इमे थोड़ा सा चीनी मिला दी। खूनी बवासीर में 30 ग्राम प्याज के पानी के साथ बारीक पीस ली आ इमे 60 ग्राम चीनी मिला के रोगी के देवे से बवासीर रोग में खून आवल बंद हो जाई। मिर्च मसाला और खटाई के प्रयोग उपचार के दौरान ना करें। दोस्त लोग अबे हमनी के जननी है संग प्याज के बारे में। अब चली जान लिहल जाओ घीग्वार यानी ग्वार पाठा के बारे में। पाठा के पौधा स्वयं ही खेत के किनारे जंगल में या नदी किनारे पैदा हो जाला। आयुर्वेद में एके सिनग्ध भारी शीतल प्रकृति वाला तिक्त स्वाद में मधुर विपाक में कड़वा व्रीय बलवर्धक रक्त शोधक वातहर तथा नेत्र हितकारी मानल गई बा। प्रयोग जिगर तिल्ली शोथ खांसी दमा कब्ज अंडवृद्धि त्वचा और रक्त विकार के दूर करे में भी सहायक मानल गई बा। यूनानी चिकित्सा में एके शुष्क गर्म कब्ज हरी वाला रक्त शोधक रज और मूत्र प्रवर्तक अमाशय के बल देवी वाला जिगर तिल्ली के विवर्धन के कम करे वाला। पाचन सुधारक नेत्र खातिर हितकारी कृमि नाशक संधि विकार में लाभकारी और बवासीर में गुणकारी मानल गई बा। घीग्वार के प्रयोग अनेक सौंदर्य प्रसादन में भी कई जा रहल बा। एकर प्रयोग में सावधानी ई बरते के बा कि प्रसूता स्त्री जब तक बच्चा के स्तनपान करा रहल होके ता एकर सेवन ना करे। एक प्रकार गर्भवती स्त्री भी एकर प्रयोग ना करे। यदि कोनो रोग के कारण शरीर के कोनो अंग में रक्त स्त्राव हो रहा होके तभी एकर प्रयोग वर्जित पा। यदि एकर प्रयोग निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कर लियल जाए तो दस्त और मरोड़ शुरू हो जाए। दोस्त लोग चली जानल जाओ घीग्वार के रोग उपचार के बारे में। विकार में यदि कफ अधिक हो के, छाती में रुकल हो के और बाहर निकले में कठिनाई हो के, त घृत कुमारी के रस छाती पर मली, ऐसे आराम मिले। खांसी में आधा चम्मच ग्वार पाठा के रस लेके उसमें एक चौथाई भाग सौंठ और एक चौथाई भाग काली शहद मिला के पिलाई। चोट लागे पे घाव के स्वच्छ करे के बाद घाव पर ग्वार पाठा के रस लगाई, इसे घाव पाके ना पाई। ज्वर में ग्वार पाठा के रस में हल्दी डाल के रोगी के पिलाई और पंजा तथा माथा पर ई रस के मालिश करी, साथ में रोगी के सुदर्शन चूर्ण भी दी, ऐसे बुखार उतर जाई। पेट दर्द और वायु विकार में ग्वार पाठा की सब्जी बना के रोगी के खिलाई। यदि पेट में गैस रुकल होके तो ग्वार पाठा की गुद्दा लेके उसमें जीरा, काला नमक, सेंधा नमक और हल्दी मिला के रोटी बनाई और रोगी के खिलाई, ऐसे गैस और पेट दर्द दोनों में आराम मिलेगा। विकल्प के रूप में ग्वार पाठा के बारीक टुकड़ा काट ली, उसमें जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक और नींबू के रस डाल के शीशी में बंद करके 5 से 7 दिन पड़ा रहेगी। जब पेट दर्द, गैस और अपचन के शिकायत होके, तब 3 टुकड़ा मुंह में रख के ई रस के चूसी या अचार के तरह सेवन करी, तब ई सब रोग में राहत मिली। जिगर के सूजन में सेंधा नमक या काला नमक मिला के रोगी के ग्वार पाठा के रस पिए के दी। बवासीर में 15 से 30 ग्राम ग्वार पाठा के रस रोगी के पिए के दी। साथ ही घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण मिला के मस्सा पर लगाई, ऐसे काफी राहत मिली। दांत में दर्द व दांत के हीले में दांत पर ग्वार पाठा के छिलका रगड़ी और चबाई, ऐसे ये दोनों रोग में आराम मिली। आग से जलन पर ग्वार पाठा के पत्ता के चीर के उसमें से गुद्दा निकाल के जलल होकल स्थान पर दिन में 2 से 3 बार लगाई, ऐसे शांति मिली और जलन कम हुई और घाव भी शीघ्र भरी। शारीरिक बल और पुष्टि खातिर ग्वार पाठा के 3 से 4 पत्ता के चीर के उसमें से गुद्दा निकाल के गिलोय और नीम के चूर्ण के 1 चम्मच मिला ली। इसमें से रोजाना 2 से 4 चम्मच खाई तो शरीर में बल वृद्धि हुई और शरीर पुष्टि हुई। हिचकी आवे पे ग्वार पाठा के 2 चम्मच रस में आधा चम्मच सौंठ के चूर्ण मिला के सेवन करे से हिचकी बंद हो जाए। सूजन में घीग्वार के पत्ता में पीसल हल्दी और जीरा डाल के लेप तैयार करी और इस सूजन के स्थान पर लगाई, ये प्रयोग कई बार करे से सूजन दूर हो जाए। यदि शरीर में कहीं गांठ फट जाए तो घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण और लहसुन मिला के प्रभावित स्थान पर गरम गरम लेप करी, तो ऐसे गांठ दब जाए। तो दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही, कहे कि अब वो समय आ गईल बा जेमें दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। नमस्कार।
12: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
13: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
14: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
15: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
14: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
13: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
14: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करे 87-894-18744।
16: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
17: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव वैराग्य का असली मतलब समझाते हैं, शिव जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। अब आगे
5: मामा, मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे बात नहीं करनी। अगर ज्यादा जिद करोगे ना आप, तो मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी।
18: अब प्रशांत,
5: थैंक यू।
18: आप ठीक हैं? काफी परेशान लग रही हैं।
5: मैं ठीक हूँ, थैंक यू।
19: अरे ये यहाँ क्यों बैठ गया?
18: आई एम नील।
5: हाय मेघा। मामा प्लीज मुझे फोन मत करो, मेरा डिसीजन फाइनल है।
18: आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हैं।
5: आपको कुछ पता नहीं मेरे बारे में, आप क्या मदद कर पाएंगे मेरी?
18: मदद ना कर पाऊँ शायद, पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगी तो शायद आपको हल्का फील होगा। सो
5: ठीक है, सुनो, मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे पड़ गए हैं शादी करने के लिए।
18: ओ, तो आप शादी नहीं करना चाहती?
5: नहीं ऐसा नहीं है, मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे वो
18: हाँ?
5: अरे यार, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। He's good। मैंने बात की है उससे और मिली भी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो राजस्थान के किसी छोटे से शहर में पोस्टेड है, और मैं हूँ कि मैंने तो आज तक मेट्रो सिटीज के अलावा कुछ देखा ही नहीं है।
18: What? Are you serious? आप सच में इसलिए शादी नहीं करना चाहती?
5: हाँ, अरे मुझे आदत है बिजी लाइफ, गुड लाइफस्टाइल और सब फैसिलिटीज की जो बड़े शहरों में होती है। मैं वहाँ कैसे रहूंगी, कैसे एडजस्ट करूंगी, क्या काम करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरी मम्मी पापा है जो समझ ही नहीं रहे।
18: अच्छा अच्छा, आप रो क्यों रही हैं? लेकिन आप यहाँ मंदिर में क्यों बैठी हैं?
5: मुझे नहीं जाना घर, वो लोग मुझे फोर्स करेंगे, मुझे नहीं रहना उस छोटे से शहर में।
18: ठीक है, चलिए आपका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
5: क्यों, तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो मेरे साथ?
18: अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, फिर आप ठंडे दिमाग से अपना डिसीजन ले लेना, ठीक है?
5: ठीक है।
18: अच्छा, आपको एक कहानी सुनाऊं?
5: ठीक है।
18: तो हुआ ये कि माता पार्वती और भगवान शिव एक दिन धरती पर विहार करते करते एक सुंदर सी जगह पर आकर रुक गए।
20: प्रभु, ये स्थान कितना सुंदर है ना?
21: वो तो है।
20: क्या हम यहाँ नहीं ठहर सकते प्रभु?
21: यहाँ?
20: क्यों प्रभु, यहाँ रुकने में क्या समस्या है?
21: प्रिय, यहाँ रुकने में कोई समस्या नहीं, पर
20: कुछ नहीं प्रभु, हम यहीं विश्राम करेंगे।
21: तुम्हारे हट के सामने मेरी कहाँ चलती है पार्वती। ठीक है, जैसा तुम चाहो।

0: ये प्रभु माता पार्वती के संग यहाँ के क्यों रुके हैं? हमारे स्वर्ग में कहाँ स्थान की कमी थी कि उन्हें धरती पर रुकने की आवश्यकता पड़ गई?
1: नारायण नारायण, ये बात तो ठीक है प्रभु आपकी, इसके पीछे अवश्य ही महादेव की कोई माया है।
0: तो चलो चल के देखते हैं। अब इस स्थान में कहाँ ढूंढूं मैं महादेव को?
1: नारायण नारायण, हे ईश्वर, ये कैसी माया है, इतना सुंदर स्थान, वो भी धरती पर।
0: अब समझ में आया, अवश्य माता पार्वती की हट पर महादेव यहाँ ठहरने के लिए माने होंगे।
1: प्रभु, किंतु महादेव तो सांसारिक माया से परे हैं, उन्हें इस स्थान की क्या आवश्यकता, ये धाम तो श्री हरि विष्णु का ही होना चाहिए।
0: तुम सही कह रहे हो, ये स्थान तो मेरा ही होना चाहिए, कुछ योजना बनानी होगी।

0: ये कैसी आवाज है? ये तो किसी बालक के रोने की आवाज लगती है। प्रभु, आप सुन पा रहे हैं?
1: हाँ, आवाज तो आ रही है।
0: रुकिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ बालक? कौन हो तुम? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम रो क्यों रहे हो? इस वन में ये कौन बालक रो रहा है? और ये यहाँ आया कहाँ से? इसकी माता कहाँ है? मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती, इसे अपने साथ ले चलती हूँ।
1: ये कोई साधारण बालक नहीं, किसी देव की लीला के समान लगता है। पार्वती, इस बालक को घर के बाहर छोड़ दो, वो अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। तुम इसे यहाँ ले आई हो, पर इसकी माता इसे ढूंढते हुए वन में आएगी तो ये उसे नहीं मिलेगा।
0: किंतु प्रभु, मैं इसे अकेले वन में कैसे छोड़कर आ सकती थी? देखिए तो, बालक सो गया है। अब हम कोई शोर नहीं मचाएंगे, यदि ये उठ गया तो फिर से रोने लगेगा।
1: ठीक है प्रिय,
0: चलिए ना, कुछ दूर तक भ्रमण करके आते हैं। चलिए, घर आ गया। अरे ये क्या, द्वार अंदर से बंद है?
1: कहीं ये तुम्हारे बालक ने ही तो बंद नहीं किया?
0: बालक ने बंद किया होगा, किंतु वो तो बहुत छोटा है। अरे मेरे लाल, मेरे पुत्र, द्वार खोलो। ये क्या, ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा प्रभु?
2: मुझे छल के लिए क्षमा करें माता, बालक रूप में ये मैं ही था।
0: क्या श्री हरि, आप?
1: मैं जानता था ये तुम्हारी ही लीला है श्री हरि।
0: पर आपने ऐसा छल किया ही क्यों? आपको इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी?
2: ये स्थान मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे यही विश्राम करने दीजिए। प्रभु, आपको तो वैसे भी मोह माया नहीं है, और आप तो वैसे भी यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं, इसलिए अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं और ये स्थान मुझे भेंट कर दें।
0: श्री हरि, आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सही नहीं है, द्वार खोलिए, मैं कहती हूँ द्वार खोलिए। ये महादेव का दिव्य धाम है।
1: क्रोध मत करो प्रिय, क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं।
0: किंतु ये हमारा घर है स्वामी, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे?
1: निश्चिंत रहो, हम जहाँ भी होंगे वो ही हमारा दिव्य धाम बन जाएगा। प्रिय, ये सब संसार की मोह माया, सब कुछ क्षणिक है, एक ना एक दिन चला जाएगा, और फिर घर से घृणी नहीं होती बल्कि घृणी से घर होता है।
3: इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि इस संसार में मोह माया के बहुत साधन हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जो कुछ भौतिक है, मतलब मटीरियलिस्टिक, वो सब काफी टेम्पररी है। लाइफ में ऐसे चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन वो दुनिया का एंड नहीं है। लाइफ चलती रहती है हर दिन एक नई शुरुआत के साथ।
4: हाँ, बात तो सही है, पर मैं वहाँ क्या नई शुरुआत करूंगी?
3: अरे ये बताओ, तुम क्या काम करना चाहती हो?
4: मैं तो सोशल वर्क करना चाहती हूँ। यू नो, यहाँ पर भी मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ।
3: What? Really? तो फिर तुम इतना क्या सोच रही हो?
4: मतलब
3: ये कि अगर तुम सच में बच्चों को पढ़ाना ही चाहती हो तो तुम वो वहाँ भी जाकर कर सकती हो। वहाँ भी ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे।
4: हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
3: वही तो, तुम्हें बस एक ही एंगल दिख रहा है कि तुम बड़े शहर से छोटे शहर जाने वाली हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जो करना चाहती हो वो तो तुम कहीं भी कर सकती हो।
4: हाँ, पर मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी?
3: अरे मेघा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जगह बड़ी हो या छोटी, अपॉर्चुनिटी बड़ी हो या छोटी, ट्राई जरूर करना चाहिए। और फिर तुम तो वहाँ घर बसाने जा रही हो, सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। लाइफस्टाइल हो या तुम्हारा काम, सब डिसीजंस तुम्ही से होकर गुजरेंगे। सुना है ना, गृहिणी घर से नहीं, घर गृहिणी से होता है। तुम बिना डरे आगे बढ़कर देखो तो सही।
4: हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं।
3: ठीक है, तो मैं चलूं?
4: हाँ, मुझे भी चलना चाहिए, रजत आज अपनी फैमिली के साथ घर आ रहे हैं।
3: हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑल द वेरी बेस्ट।
4: थैंक यू नील, तुम सच में एक अच्छे इंसान निकले।
3: अरे चलो, मैं चलता हूँ, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा।
4: अच्छा, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम कर लेते आप अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो?
3: कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ठीक है, चलता हूँ।
4: जी वैसे मेरी शादी में आओगे ना?
3: कोशिश करूंगा।
4: एड्रेस दे दो, कार्ड भेजती हूँ।
3: अमरनाथ जा रहा हूँ, महादेव के धाम पर, कार्ड वहीं भिजवा दो। हर हर महादेव।
5: मैं पैदा हुआ 10x10 की खोली में, जब हीरो बना, स्टार बना, तब भी 10x10 की खोली में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग भी आए 10x10 की खोली में। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर छोटा या बड़ा, क्योंकि घर परिवार से बनता है, ईंट पत्थर दीवार से नहीं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है घर की गृहिणी, घर की औरत, पत्नी, माँ। मुझे मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आता है, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इसके बाद मैं क्या बोलूं बिड़ू, मेरी बात नहीं अगर समझ में आया तो शिव महाराज की तो बात समझ। शिव घर से नहीं, घर वालों से प्यार करना सिखाते हैं। शिव परिवार को साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यो द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
12: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
13: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
12: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
13: आज ही

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710 3092 या 9765065750।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। टीबी मरीजों को जिलाधिकारी ने दी पोषण की पोटली। 2 अक्टूबर से जन मंथन कार्यक्रम की होगी शुरुआत। विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया आदेश। संदिग्ध स्थिति में एक विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नीतीश कुमार के आगमन की दी गई आज जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। केंद्र सरकार एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के नवाचारी प्रयास रिफॉर्म उत्सव के सफल क्रियान्वयन के तहत गोपालगंज जिले में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जन मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जन मंथन सभाओं का आयोजन कर आम नागरिकों से सरकारी प्रक्रियाओं एवं सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए रचनात्मक एवं व्यवहारिक सुझाव किए जाएंगे। रिफॉर्म उत्सव के तहत विभिन्न स्तरों पर सभा को आयोजित करने का उद्देश्य केवल शिकायतों का संकलन करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में स्थायी एवं व्यवस्थित सुधार के लिए नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना भी है। इन सभाओं के माध्यम से आमजन प्रशासन के साथ सीधे संवाद करते हुए सरकारी योजनाओं, सेवाओं एवं प्रक्रियाओं में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान के संबंध में अपने सुझाव साझा करेंगे। जन मंथन कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी समीर सौरभ के द्वारा जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी स्वयं होंगे, जबकि अपर समाहर्ता गोपालगंज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। समिति के द्वारा जन मंथन सभाओं के आयोजन, प्राप्त सुझावों के संकलन, पोर्टल पर सुझावों की प्रविष्टि, संबंधित विभागों को अग्रसारित करने, त्वरित समाधान योग्य मामलों की पहचान तथा सुधारों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने निक्षय मित्र अभियान के तहत दूसरी बार टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार किट का वितरण किया। मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य और इलाज की स्थिति की जानकारी ली। डीएम ने नियमित दवा और संतुलित आहार लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज और पोषण से टीबी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। समाज के सक्षम लोगों और संस्थाओं से निक्षय मित्र बनने की अपील की गई। टीबी मरीजों को हर माह नियमित रूप से पोषण सहायता देने की पहल निक्षय मित्र अभियान के तहत किया जा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव में आज एक संदिग्ध परिस्थिति में 9 विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। आरोपी पति और मृत महिला के सास को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर आवश्यक अनुसंधान शुरू किया है। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। मृत महिला विश्रामपुर गांव के उमेश यादव की पत्नी प्रतिमा देवी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृत महिला के गले पर काला निशान भी दिखा है। हालांकि अब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें आवश्यक जानकारी दी जाएगी। फिलहाल पति और सास को हिरासत में लेने के बाद पुलिस इसमें आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें जिले के सभी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में विद्यार्थियों को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि बच्चों एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र केवल शिक्षा एवं पोषण के केंद्र नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए भी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को दूषित या असुरक्षित पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। बैठक में जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज आगमन हो सकता है। संभावित कार्यक्रम को लेकर जदयू पार्टी के तमाम नेता इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। आज इस संदर्भ में जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा,
3: आदरणीय नीतीश कुमार जी का दौरा होना है। पार्टी के नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत कुमार जी का भी जिला में दौरा होना है और संगठन को धारदार बनाने के उद्देश्य से गांव और बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम चल रहा है। आज सभी पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को और प्रखंड कमेटी के लोगों को निर्देश दिया गया कि आप एक सप्ताह के अंदर पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी को जो सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को रखते हुए, सामाजिक समीकरण को देखते हुए कमेटी बनाए और बनाकर शीघ्र उसको जमा करें, ताकि जिला स्तर पर हमारे जो नेताओं का कार्यक्रम होना है उसकी सफलता के लिए हम लोग जो है तैयारी पूरा कर लें। देखिए, नीतीश कुमार जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है, सितम्बर माह में उनका कार्यक्रम संभावित तय हो गया है। अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर माह में ही कार्यक्रम उनका जो है कि तय है। अब डेट आधिकारिक तौर पे 2-4-10 दिन के अंदर में जो है कि आ जाएगा। उसके पहले हम लोग पूरे जिले में, हर प्रखंड में, विधानसभा स्तर पे हमारे पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय पूर्व विधायक, ये सब लोग पूरी तैयारी में जो है कि लग जाएंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। चूंकि आज भी नीतीश कुमार का जो जलवा है, लोगों में जो प्रेम और उत्साह है, वो आज कम नहीं हुआ है और बढ़ते जा रहा है।
2: कटिहार थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 914 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ राजस्थान के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पिकअप गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब लोड कर बिहार में सप्लाई के लिए जा रही है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद ग्राम नंदी पट्टी स्थित पैक्स गोदाम के पास छापेमारी की, जहां यूपी के तरफ से आने वाले सभी वाहनों और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर वाहन चालक को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी राजा राम उर्फ राजेश जाट, पिता लुम्बा राम, यह राजस्थान का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस खंगाल रही है। साथ ही पिकअप गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया है। इधर कटिहार पुलिस ने ही 5,000 रुपए के इनामी वांछित शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लंबे समय से फरार चल रहे 5,000 के इनामी अभियुक्त धर्मेंद्र बैठा उर्फ धर्मेंद्र कुमार रजक, पिता स्वर्गीय हरेंद्र बैठा, साकिन खाल गांव थाना कटिहार को आज गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इसको पकड़ने के बाद आज पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस आरोपी पर 2018 से ही शराब तस्करी के मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 20 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया गया। प्राप्त आवेदनों पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत देने का सख्त निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया। आवेदन लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को उन्होंने गंभीरता से सुना भी और आवेदनों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब नहीं करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। इधर गोपालगंज के विद्युत विभाग के अभियंता ने बताया कि लगातार शहर में विद्युत की सप्लाई 23 घंटों से भी अधिक वक्त तक की जा रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान सुरक्षा कारणों से ही शहरी क्षेत्र में विद्युत की कटौती की गई थी, उसके बाद से लगातार विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और क्षेत्र के सभी फीडरों में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से संचालित की जा रही है। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने भी 49 लीटर से अधिक देशी शराब को जब्त किया है। इसमें किसी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने निरंतर सर्च अभियान के अंतर्गत ग्राम महिचा बाजार के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां एक व्यक्ति के घर से 49 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की गई है। तस्कर फरार हो गया है, उसकी पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस दीदी अभिया ब्रिगेड की टीम लगातार शैक्षणिक संस्थानों एवं हॉस्टलों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग कर रही हैं। आज भी कई जगहों से तस्वीरें आईं। जिले के कई विद्यालयों में गुलाबी कलर की हेलमेट लगाए हुई स्कूटी पर बैठकर अभिया ब्रिगेड पुलिस दीदी की टीम लगातार विद्यालयों और हॉस्टलों इत्यादि के आसपास पेट्रोलिंग करती हुई दिख रही है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी 75 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने ग्राम सिपाया खास में वाहन जांच करते हुए 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को पकड़ा, जो पुलिस को देखकर भाग रहे थे। पकड़ने के बाद पुलिस ने इनके मोटरसाइकिल की जांच की तो इनके गाड़ी में बोरे से 75 लीटर से अधिक शराब मिली। इस मामले में संलिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार किया है। इनकी शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और अब 3 पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सुपर पेट्रोलिंग के तहत पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी कई इलाकों का दौरा समय समय पर किया है और उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी इलाकों में पुलिस कर्मी और चौकीदार इत्यादि जो ड्यूटी पर रहते हैं, सुपर पेट्रोलिंग के तहत उनकी भी जांच की जाए और इसी को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी लगातार जांच पड़ताल क्षेत्र में करते रहते हैं। इधर गोपालगंज में हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज परिसर में बिहार बोर्ड का एक विशाल परीक्षा भवन बन सकता है। बताया जा रहा है कि यहां 5000 सीटिंग क्षमता के साथ बड़े भवन का निर्माण होगा, जहां परीक्षा एक ही कैंपस में करवाई जा सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन ने भूमि का आवंटन भी किया है। बताया जा रहा है कि अब परीक्षा के दौरान किसी भी विद्यालय में पढ़ाई बाधित न हो, इसको लेकर बिहार बोर्ड सभी जिलों में अधिक से अधिक क्षमता वाले परीक्षा भवन का निर्माण करा रहा है, जिसमें गोपालगंज में भी हथुआ के गोपेश्वर कॉलेज परिसर में 5000 विद्यार्थियों के बैठने के लिए भवन का निर्माण होगा और थावे के मुखीराम हाई स्कूल परिसर में भी बोर्ड का परीक्षा भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु खबरों के अनुसार इस तरीके की तैयारी की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। टीबी मरीजों को जिलाधिकारी ने दी पोषण की पोटली। 2 अक्टूबर से जन मंथन कार्यक्रम की होगी शुरुआत। विद्यार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का डीएम ने दिया आदेश। संदिग्ध स्थिति में एक विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नीतीश कुमार के आगमन की दी गई आज जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
12: वीर सैनिकों, मृत्यु सिर्फ एक बार मिलती है। अपने धर्म के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान का गौरव सिर्फ एक बार मिलता है। मुगलों को कुचल डालो, एक एक राजपूत पांच पांच शत्रुओं को मारेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
13: युद्ध की ये हुंकार उठी थी मेवाड़ की धरती से और चुनौती दी गई थी दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर को। इतिहास में बहुत कम किरदार ऐसे मिलते हैं जिनका संघर्ष, इनकी लड़ाई हार और जीत के पैमाने पर नहीं तोली जाती। उन किरदारों का संघर्ष, स्वाभिमान और लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाती है। उनकी जिंदगी महागाथा बन जाती है, इसे पढ़ना, सुनना और देखना जरूरी होता है। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार गौरव गाथा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपने आन बान और स्वाभिमान की खातिर जान देने और लेने की ठानी थी। कहते हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके सबसे बड़े दुश्मन अकबर की आंखें नम हो गई थी।
14: 1560 का भारत, दिल्ली के तख्त पर नौजवान मुगल बादशाह अकबर बैठा था। तभी दिल्ली से तकरीबन 600 मील दूर चित्तौड़गढ़ के जंगलों में उसका लगभग हम उम्र लड़का भाले और तलवार से खेल रहा था। वो नौजवान था मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह का बेटा कीका। यही कीका आगे चलकर अकबर का महान प्रतिद्वंदी बना। इन्हें ही आगे चलकर महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है।

0: तुम दोनों ने आने में विलंब कर दिया मित्रों।
1: खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
2: शाम हो गई है, माँ बुला रही है।
0: आ रहा हूं।
3: कीका, मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले भील समुदाय में लड़के को प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता है। कई फारसी ग्रंथों में भी महाराणा प्रताप का नाम राणा कीका के नाम से लिखा गया है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप का शुरुआती जीवन भील समुदाय के बीच बीता था, लेकिन इसकी वजह क्या थी जबकि उनके पिता मेवाड़ के राजा थे।
4: राजस्थान में आज जहां उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिला है, वही मेवाड़ कहलाता था। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे कुछ इलाके भी मेवाड़ का ही हिस्सा थे। मेवाड़ के बड़े हिस्से पर सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था। बताया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी पहले कुंभलगढ़ हुआ करती थी। उन्हीं दिनों 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता राजा राणा उदय सिंह थे और माँ रानी जयवंताबाई थी। महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे सक्षम माने जाते थे, लेकिन पिता उदय सिंह की राय कुछ और थी। दरअसल उदय सिंह ने कई शादियां की थी, लेकिन उनका लगाव सबसे ज्यादा अपनी छोटी रानी से था।
5: महाराज,
6: कैसी हैं आप?
5: जी, ठीक हूं।
6: महारानी
5: जी। महाराज,
6: आप चुप क्यों हैं? बैठिए
5: जी।
6: आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों है?
5: नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जगमाल के बारे में सोच रही थी।
6: क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है?
5: जगमाल तो ठीक है, लेकिन उसके भविष्य का क्या होगा? ये चिंता मुझे खाई जा रही है।

0: महारानी, आप जगमाल की चिंता क्यों कर रही हैं? वो हमारा उत्तराधिकारी है और फिर हमारे बाद सब कुछ उसे ही तो संभालना है।
1: छोटी रानी के प्रेम में राणा उदय सिंह ने पुत्र जगमाल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया था। वो छोटी रानी की बातों में आ गए थे। दूसरी तरफ राजा उदय सिंह ने राणा प्रताप के रहने की व्यवस्था चित्तौड़गढ़ से बाहर दूर एक गांव में कर दी थी।
2: भटियाणी महारानी थी जिसका लड़का जगमाल था, तो उससे ज्यादा स्नेह वगैरह हो गया, तो एक प्रताप डिस्कार्डेड के ढंग से कि प्रताप को राजमहलों में नहीं रखा, तलेटी में उनको माता और पुत्र को रखा। परंतु जहाँ तक अर्ली पीरियड का ट्रेनिंग है, जेमर और दूसरे व्यक्तियों के नाम आते हैं कि जिन्होंने उसको शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या का ज्ञान कराया था।
3: चित्तौड़ में सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर शुभबुगाहट शुरू हो गई थी। इससे पहले कि राजा उदय सिंह इस बारे में कोई घोषणा करते, मेवाड़ पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। ये संकट अकबर की अगुवाई में मुगलों के आक्रमण का था।
1: मुगल बादशाह अकबर की नजर उत्तर और पश्चिम भारत के उन राज्यों पर थी जिन पर राजपूत राजाओं का शासन था। उन राज्यों के अधिकार के लिए अकबर ने सहयोग और मैत्री की नीति अपनाई। इस कोशिश में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया था। मेवाड़ का सिसोदिया वंश मुगलों से ऐसे संबंध और समझौते के खिलाफ खड़ा था। वहीं मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि अकबर उसे हर हाल में मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था।
4: इसकी व्यापारिक महत्ता भी है इस क्षेत्र की। सारे गुजरने जितने भी कारवांस हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, व्यापार के भी। अगर उसे दक्षिण जीतना है और स्थायित्व रखना है, जीतना अलग बात है, दक्षिण को जीतकर वहाँ पे अपना स्थायी शासन जमाना है, तो उसे बीच के जो रास्ते हैं उनको अपनाना बहुत जरूरी है। उस दृष्टि से वो मेवाड़ भी लेना चाहता था।
1: अकबर की अगुवाई में मुगल की एक बड़ी फौज मेवाड़ की तरफ बढ़ी। रणनीति के मुताबिक वो सबसे पहले चित्तौड़ पर धावा बोलने वाले थे। इस आक्रमण की खबर जब तक राणा उदय सिंह को मिलती तब तक देर हो चुकी थी।
5: महाराज, हमें सूचना मिली है कि मुगलों की फौज ने कई गांव वालों को बाहर करवा दिया है, कई जगह आग लगवा दी है और कुछ बस्तियां उजाड़ दी है।
6: महाराज की जय हो। महाराज, मुगलों की फौज चित्तौड़गढ़ किले की ओर बढ़ती आ रही है।
7: महाराज, इससे पहले मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ किले को घेर ले, हमें कुछ करना होगा।
8: सिसोदिया वंश के शासकों ने आज तक मुगलों के सामने ना तो घुटने टेके हैं ना घुटने टेकेंगे। हम वो नहीं जिन्होंने मुगलों से रिश्ता जोड़कर राजपूतों के स्वाभिमान को कलंकित किया है। हम अकबर को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम अरावली की घाटी में छुपकर उस पर हमला करेंगे। जाओ, राजमहल के लोगों को उदयपुर ले जाने की तैयारी करो।
5: जी महाराज।
8: जाओ।
1: राणा उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर जाने का फैसला कर चुके थे। इससे पहले कि मुगलों की सेना चित्तौड़गढ़ के किले में घुसती, राणा उदय सिंह परिवार समेत वहां से उदयपुर चले गए।
2: कहते हैं कि प्रताप ने इसका विरोध किया कि महाराणा चले जाएं, मैं खुद यहाँ रहूँगा। परंतु सारी जो वार काउंसिल थी, युद्ध परिषद थी, युद्ध परिषद ने एक मत से निर्णय लिया था कि सपरिवार यहाँ ज़्यादा है जाना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष चलाई रखना है और संघर्ष चलाई रखने के लिए महाराणा और उसके परिवार को जीवित रखना ज़्यादा जरूरी है।
1: अकबर की अगुवाई में मुगल फौज चित्तौड़ पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने चित्तौड़ के आम लोगों निवासियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मुगल सैनिकों ने घर में बैठे बूढ़े बच्चों और महिलाओं को भी निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों के घरों में आग लगा दी, कई गांवों को उजाड़ दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चित्तौड़ में अकबर के सैनिकों ने करीब 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़ की भीषण तबाही और बादशाह अकबर की बेरहमी ने राजस्थान के राजपूत राजाओं को हिलाकर रख दिया था।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
14: अच्छा, मिला ही नहीं
13: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
13: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
16: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
17: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
16: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
17: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
16: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
17: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
16: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
13: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
18: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
18: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
10: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
18: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
10: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
18: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
10: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
19: निर्दोष नागरिकों को कत्लेआम कराना 30,000 की संख्या ऐतिहासिक रूप से जो तथ्य सम्मत बैठती है, वो 30,000 वहाँ पर है। उस सारी जनता का कत्लेआम कराना, ये जो ऑर्डर दिया गया, जब युद्ध भी बंद हो गया है, आप जीत भी गए हैं, आप विजयी रहे हैं, दूसरा पक्ष भाग गया है, ऐसा अमानवीय कृत्य कराना ऐसे आदमी के लिए, जिसको बहुत इतिहासकारों ने महान भी कहा है, उनके चेहरे पर वो दाग है।
20: युद्ध में मेवाड़ के कई इलाकों पर मुगलों का कब्जा हो गया। राणा उदय सिंह मुगलों से लड़ाई में अकेले पड़ चुके थे। आसपास के राजा एक के बाद एक अकबर की अधीनता कबूल कर रहे थे। दूसरी तरफ वो बीमार भी रहने लगे थे। मेवाड़ में इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी, अब मेवाड़ का भविष्य किसके हाथों में होगा, कौन राजा बनेगा। और उन्हीं दिनों एक दिन राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

0: महारानी, जगमाल कहाँ है?
1: जगमाल?
2: जी पिताजी।
0: पुत्र, हमारे जाने के बाद पूरे राज्य की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है।
2: जी पिताजी।
3: राणा उदय सिंह की घोषणा के बाद जगमाल के करीबियों ने कुंभलगढ़ में उसका राज्याभिषेक कर दिया। मेवाड़ के पुराने वफादार सामंतों और राणा प्रताप के शुभचिंतकों को जब इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गए। वो जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाए जाने के खिलाफ थे।
4: चित्तौड़ हाथ से निकल गया, मेवाड़ उजड़ रहा है और हमारा शत्रु बादशाह अकबर सिर पर है। इस हालत में अगर जगमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया तो समस्या और बढ़ जाएंगी।

0: ये कार्य किए हैं जिससे कि परिपक्वता सामने आ चुकी है, अन्यथा जो मेवाड़ के सरदार हैं वो इस तरह की बातें उसके पक्ष में कहते नहीं। दूसरा ये है कि महाराणा प्रताप को भीलों से बहुत सहयोग मिला, वो महाराणा बनने के बाद संभव नहीं है, वो महाराणा बनने से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसा काम स्थानीय जाति के साथ उठ बैठ करके किया है जो कि अलग से था, क्योंकि महाराणाओं के संबंध भीलों से ठीक ठीक थे लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। लेकिन महाराणा प्रताप को जितना सहयोग भीलों से मिला उतना और किसी समूह से नहीं मिला।
1: तो फिर राजगद्दी पर जगमाल की जगह राणा प्रताप को बिठाना चाहिए।
2: मेवाड़ को महाराणा प्रताप की जरूरत थी। मेवाड़ के पुराने सामंत और लोग जगमाल की जगह राणा प्रताप को राज सिंहासन पर देखना चाहते थे, जबकि पिता राणा उदय सिंह जगमाल को पहले ही राजा घोषित कर चुके थे। कहते हैं कि जिस दिन राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उसी दिन सामंतों ने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। गोगुंदा उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर अरावली की चोटियों पर बसी वो जगह है जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ।
3: ये मेवाड़ के लिए और हमारे लिए बहुत कठिन वक्त है। मेवाड़ के उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में मुगलों ने अपना साम्राज्य बना लिया है, लेकिन सिर्फ दक्षिण की दिशा है जहां पर वो अब तक कब्जा नहीं कर पाए हैं। हमारे आस पड़ोस के क्षत्रिय राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया है, यहां तक कि एक राजा ने अपनी पुत्री का विवाह भी एक मुगल के साथ कर दिया है। लेकिन हम उनकी तरह नहीं है। मेवाड़ और सिसोदिया वंश ने कभी अपनी स्वाधीनता और अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया है।
4: महाराज, हम मुगलों के सामने नहीं झुकेंगे, हम उनका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे।
3: हाँ, यह सच है कि मुगलों के साथ इस लड़ाई में अब तक हमारे बहुत सारे योद्धा मारे गए। मेवाड़ और चित्तौड़ का एक बहुत बड़ा इलाका अब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है, लेकिन हम मुगल साम्राज्य के साथ मिलकर या झुककर कभी भी अपनी स्वतंत्रता को खोएंगे नहीं। हम स्वाधीन थे, स्वाधीन हैं और हमेशा स्वाधीन रहेंगे।
4: प्रताप के, महाराणा प्रताप के।
5: कोई व्यक्ति अपनी वैयक्तिक और अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने को प्रस्तुत है, संदिग्ध है, संकल्पबद्ध है, कर रहा है, क्रियाशील है और उसने वो कार्यान्वित भी किया है, अपने आप को बर्बाद और मिटा करके किया है। महाराणा प्रताप चाहते तो कितने ही पूरे राजस्थान क्या कितने प्रांतों के वो सूबेदार और क्या क्या नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना बेहतर समझा।
4: प्रताप के,
2: महाराणा प्रताप के हुंकार ने मेवाड़ के सामंतों और सैनिकों में नया जोश भर दिया। उन्होंने राणा प्रताप के भाई जगमाल को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जगमाल मेवाड़ छोड़कर परिवार समेत बादशाह अकबर की शरण में चला गया। जगमाल से पहले महाराणा प्रताप के एक और भाई शक्ति सिंह ने मुगलों की अधीनता कबूल कर ली थी। अकबर ने जगमाल को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे जहाजपुर की जागीर भी दी। जहाजपुर अब भीलवाड़ा जिले का एक शहर है।
6: जगमाल की तरह कई राजपूत राजा और सामंत मुगल शहंशाह के खेमे में चले गए थे, लेकिन अकबर की नजर अब भी मेवाड़ पर थी। मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप के बैठते ही अकबर ने एक बार फिर मेवाड़ को हासिल करने की कोशिश तेज कर दी। कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक के बाद एक चार दूत भेजे थे। अकबर हर हाल में मेवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था।
7: अकबर उत्साही हो चुका था राजकुमारी आमिर राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद। उसे लग रहा था कि हर राजा जो है वो अपनी राजकुमारी, अपना इस तरह के पारिवारिक संबंधों के द्वारा वो एक राजनीतिक स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसी दृष्टि से वो चाहता था कि राणा प्रताप भी उसके साथ एसोसिएशन में, अलायंस में आ जाए। और उसने बाद में जब देखा कि वो राजकुमारी देने को तैयार नहीं है तो धीरे धीरे वो इस बात पर आ गया कि केवल वो एक राजकुमार को भेज दे जो कि उसके दरबार में आकर के हाजिरी दे दे।
8: आलमपना, महाराणा मुगल सल्तनत से किसी भी किस्म का समझौता नहीं करना चाहता।
9: वो आपके दरबार में आना तो दूर,

0: आपसे मिलना भी नहीं चाहता है।
1: जलाल खान, तुम अपनी कोशिश में नाकामयाब रहे इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना बंद कर दें। मान सिंह।
2: जी महाराज।
1: मान सिंह, तुम महाराणा के पास जाओ, हमें पूरा यकीन है कि तुम खुशी की खबर लेके आओगे।
2: जी महाराज।
3: आमेर के कुंवर मान सिंह की उम्र सिर्फ 21-22 साल की थी। तेज दिमाग और बलशाली योद्धा मान सिंह शहंशाह अकबर का वफादार था। अकबर को उम्मीद थी कि क्षत्रिय मान सिंह महाराणा प्रताप को किसी सुलह या समझौते के लिए राजी कर लेगा। मान सिंह को एक बड़े दल के साथ महाराणा प्रताप के पास भेजा गया।
4: मान सिंह आमेर जो बाद में जयपुर कहलाता था उसके राजकुमार थे और प्रताप ने अकबर ने दो कारणों से भेजा। सफल हो तो उसका मकसद पूरा हो जाता है, असफल होगा तो राजपूतों में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तत्परता पैदा कर सकता हूँ।
5: मेवाड़ में आपका स्वागत है मान सिंह जी।
2: हम आपके आतिथ्य से अति प्रसन्न हैं।
5: ये तो कुछ नहीं है मान सिंह जी, मेवाड़ के महाराजा महाराणा ने आपके सम्मान में उदय सागर झील में एक विशेष भोज का आयोजन किया है।
2: ओहो, ये तो महाराणा का बड़प्पन है। उदय सागर झील की शीतलता में शांति से बात हो पाएगी। चलिए हम महाराणा से वहीं मिलेंगे।
3: आगे उदयपुर की उदय सागर झील पर आयोजित भोज में जो कुछ हुआ वो कहानी बेहद चर्चित है।
5: मान सिंह जी, ये अमर सिंह है, महाराणा के पुत्र।
2: हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई।
5: पधारिए।
2: महाराणा स्वयं नहीं आए, हम तो बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
5: मानसिंह जी, महाराणा किसी कारणवश यहां नहीं आ रहे, आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए।
2: ये कैसा भोज है, हमें बुलाकर महाराणा खुद नहीं आए, इसमें मेरा ही नहीं बादशाह अकबर का भी अपमान है।
5: मानसिंह जी
2: बस, महाराणा ने ये जानबूझकर किया है, अब इस अपमान का फैसला युद्ध भूमि में होगा।
5: मानसिंह जी, अगर ऐसा है तो आप युद्ध भूमि में अपने साथ शहंशाह अकबर को भी ले आइए।
2: अमर सिंह,
6: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं,

0: लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: मान सिंह जी, ये अमर सिंह है, महाराणा के पुत्र।
3: हमें आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई।
4: पधारिए।
3: महाराणा स्वयं नहीं आए, हम तो बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
4: मानसिंह जी, महाराणा किसी कारणवश यहां नहीं आ रहे। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कीजिए।
3: यह कैसा भोज है? हमें बुलाकर महाराणा खुद नहीं आए, इसमें मेरा ही नहीं बादशाह अकबर का भी अपमान है।
4: मानसिंह जी,
3: बस। महाराणा ने यह जानबूझकर किया है, अब इस अपमान का फैसला युद्ध भूमि में होगा।
4: मानसिंह जी, अगर ऐसा है तो आप युद्ध भूमि में अपने साथ शहंशाह अकबर को भी ले आइए।
3: अमर सिंह,
5: गुस्से से बौखलाए मान सिंह को मेवाड़ से लौटना पड़ा। मान सिंह से मिले बिना ही महाराणा प्रताप ने अपना रुख साफ कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी अकबर ने कुछ महीने बाद ही अहमदाबाद के राजा भगवंत दास को मेवाड़ भेजा। भगवंत दास को भी कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में अकबर के ज्ञानी और अनुभवी सलाहकार टोडरमल महाराणा प्रताप के पास गए।
4: टोडरमल जी, मैं आपकी विद्वता का सम्मान करता हूँ, मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा प्रिय हाथी उपहार स्वरूप आप अपने साथ ले जाएं।
6: मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपके पास शहंशाह अकबर का दूत बनकर आया था एक वचन लेने के लिए। अब आपसे कोई उपहार स्वीकारना मेरे लिए उचित नहीं होगा महाराज, मुझे क्षमा कीजिए।
5: टोडरमल इस इरादे से आए थे कि महाराणा बिना किसी युद्ध के शहंशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ले, मेवाड़ को मुगल सल्तनत का हिस्सा मान ले। अकबर की इस नीति के सामने कई राजपूत राजाओं ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन महाराणा को यह मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप को वो चित्तौड़ फिर से हासिल करना था जिसकी जमीन पर बादशाह अकबर की सेना ने 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
2: आज मैंने आप सबको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बुलाया है, एक ऐसा उद्देश्य जो हिमालय से महान और समुद्र से ज्यादा गंभीर है। भाइयों, आंख उठाकर देखो, क्या हम आदर्शों से भ्रष्ट, धर्म से पतित, मातृभूमि के हित से विमुख हो रहे लोगों को देखकर चुप रह सकते हैं? क्या इस समय हमें अपने हाथ को बांधकर रखना चाहिए? भाइयों, जिस तरह प्रलय की आग से एक पहाड़ घिर जाता है, उसी तरह आज मुगलों के साम्राज्य ने हमें घेर के रखा हुआ है और हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक हम स्वतंत्र हैं। मुगल हमें भी अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, क्या हमें उनकी गुलामी स्वीकार करनी चाहिए? तो फिर तैयार हो जाइए भाइयों, हम मुगलों को अपनी चमकती हुई तलवार का पानी दिखाएंगे। मेवाड़ का बच्चा बच्चा मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार है। और हां, जब तक हम मुगलों से चित्तौड़ वापस नहीं ले लेते, तब तक हम कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे। और ये मेरा प्रण है, चित्तौड़ को लिए बिना मैं अपने नख बाल नहीं काटूंगा, सोने चांदी के बर्तन से नहीं खाऊंगा। और जिन लोगों ने चित्तौड़ के लिए अपना खून बहाया है, जब तक उस खून का प्रतिशोध नहीं ले लेते, तब तक मैं महल में भी नहीं रहूंगा, हर सुख और हर आराम से दूर रहूंगा। क्या मेरी इस प्रतिज्ञा से आप सबको कोई संदेह है?

0: प्रताप एक ढंग से कह सकते हैं कि अपनी मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, परंतु उसकी स्वतंत्रता का आधार ज़्यादा व्यापक था। वो केवल अपने राज्य के लिए, अपने राजवंश के लिए या खुद के लिए नहीं लड़ रहा था, एक आदर्श उसने समाज को दिए उन आदर्शों के लिए, जो स्वतंत्रता, संस्कृति की सुरक्षा, ये अब महत्वपूर्ण है, तो उसमें दिया गया।
1: उधर बादशाह अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी के लिए अजमेर पहुंच गया। साल 1576 के अप्रैल महीने में बादशाह अकबर ने अपनी शाही सेना को अजमेर से मांडलगढ़ के लिए भेजा। उसी शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था 22 साल का सेनापति मान सिंह।
2: यानी अकबर ने क्षत्रिय राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ एक क्षत्रिय को ही युद्ध के मैदान में उतारा था। यही नहीं, अकबर की शाही सेना में बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक और मनसबदार थे। कहते हैं कि मांडलगढ़ में मानसिंह करीब 2 महीने तक डेरा डाले रहा, इस उम्मीद में कि महाराणा शाही सेना के दबाव में आकर बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मानसिंह शाही सेना के साथ मांडलगढ़ से गोगुंदा की तरफ रवाना हुए।
3: महाराज, सूचना मिली है मानसिंह शाही फौज को लेकर मांडलगढ़ से होता हुआ खंडोर गांव पहुंच चुका है।
4: महाराज, खबर ये भी है कि मानसिंह पड़ोस के जंगलों में भी शिकार कर चुका है। मानसिंह अगर फिर ऐसा करता है तो उसे जंगल में ही मार के गिराया जा सकता है।
5: धोखे से शत्रु पर वार करना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम मुगलों का सामना करेंगे। हम अपने योद्धाओं के साथ कुंभलगढ़ की पहाड़ी से उतरकर लोहसिंह गांव में डेरा डालेंगे।
3: महाराज, ये जगह तो हल्दी घाटी के पास है, सिर्फ 7-8 मील दूर। यहाँ तो पहाड़ी सिकुड़ कर जाती है और आने जाने के लिए सिर्फ एक संकरा सा दर्रा है। यहाँ से सिर्फ 10-12 मीलों की दूरी पर तो मुगल सेना खड़ी है।
5: हाँ, हल्दी घाटी। हमारी सेना सबसे पहले घाटी के दर्रे के पास पहुंचेगी, उसके बाद हमारी सेना 4 हिस्सों में बट जाएगी और घाटी के हर दिशा से हमारी सेना आगे बढ़ेगी। हमारा आक्रमण तीर, कमान और तलवार के साथ तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेना आसपास के पहाड़ों से दुश्मन पर पत्थर भी बरसाएगी।
1: महाराणा की रणनीति मुगल सेना को हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में घेर कर उन पर आक्रमण करने की थी। इस समय मुगल और मेवाड़ सेना की क्षमता क्या थी, इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। मुगल कालीन इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोनों तरफ की सेना का पूरा ब्यौरा दिया है। बदायूनी खुद वहां मुगलों की तरफ से युद्ध के लिए आया था।
0: साहित्य में 80,000 भी मिल जाएगी या अलग अलग मिल जाएगी, पर रफ एस्टिमेट और बदायूनी जो वहाँ पर मौजूद है उसको असेस करने के ये लगते हैं कि 5,000 और 3,000 का रेशियो या 8,000-5,000 के रेशियो से, 8,000 से मुगल सेना ज़्यादा नहीं थी और 5,000 से ज़्यादा अकबर की प्रताप की सेना ही नहीं थी।
2: 18 जून 1576 की सुबह मेवाड़ की सेना का एक हाथी मेवाड़ के झंडे के साथ अचानक हल्दी घाटी के उत्तरी पूर्वी मुहाने से बाहर निकला। दूसरी ओर सेना के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। इससे पहले कि मुगल सेना आक्रमण के लिए मोर्चा संभालती, महाराणा प्रताप के योद्धा उन पर टूट पड़े।
1: हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में किया गया यह आक्रमण इतना भयानक था कि मुगलों की सेना में हड़कंप मच गया। मुगल सेना के कुछ दस्ते तो ऐसे भागे कि बनास नदी के तट से 10-12 मील आगे चले गए। लगभग 3 घंटे की लड़ाई में महाराणा के योद्धाओं ने मुगल सेना के हरावल दस्ता यानी अग्रिम पंक्ति को ध्वस्त कर दिया।
0: अगर वापस बदायूनी को जिक्र करूं तो युद्ध का पहला आक्रमण इतना तेजी से हुआ कि खुद वो मुस्लिम इतिहासकार कहता है कि सेनाएं, मुगल सेनाएं छिन्न भिन्न हो गई और बनास नदी के दूर जाकर के, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर तक भाग गई। प्रताप के आक्रमण का भी असर वो बताता है कि हमारी इतनी भगदड़ मिल गई कि उसको पता ही नहीं लगा कि दोस्त राजपूत कौन है, दुश्मन राजपूत कौन है, दोनों की एक ही वेशभूषा होने से।
1: बनास नदी के तट पर खमनोर और लाहगल गांवों के बीच में रक्त तलाई नाथ की एक जगह है। कहते हैं यहां भागती हुई मुगल सेना फिर से लौटी और उनका मेवाड़ के योद्धाओं से ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि वहां की जमीन खून से लाल हो गई थी। दोनों तरफ की सेना में राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में थे। जाहिर है इस युद्ध की कहानी राजपूत सैनिकों के लहू से लिखी जा रही थी।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: युद्ध के दौरान जो रॉयल फोर्सेज है, मुगल लोग पूछते हैं कि साहब हमें ये बताइए, बड़ी मुश्किल आ रही है कि इतनी दुर्धर्षता से ये कछुआ है और बाकी लोग इनसे लड़ रहे हैं जो राणा प्रताप के पक्ष से, तो कौन सा राजपूत तो हमारा है मानसिंह वाला और कौन सा इनका, हमें मुश्किल हो रही है किसे किधर तीर चलाएं। बोले किधर भी तीर चलाओ चलाओ, जो भी मरेगा मरेगा तो काफिर।
2: युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब महाराणा का सामना मानसिंह से हो गया। मानसिंह एक हाथी पर सवार था जबकि महाराणा अपने प्रिय घोड़े चेतक पर। कहते हैं कि जैसे ही मानसिंह सामने आया, चेतक ने अचानक अपने अगले दो पैर हवा में उठा दिए और मानसिंह के हाथी के सर पर वार किया। अगले ही पल महाराणा ने अपने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया। मानसिंह ने झुककर किसी तरह से खुद को बचाया, लेकिन उसकी तलवार के वार से चेतक का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। चेतक के घायल होने से महाराणा के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। दुश्मनों से घिरे महाराणा अब क्या करते? इसी बीच छाला बीदा नाम का एक योद्धा महाराणा की मदद के लिए आगे आया।
14: महाराज, महाराज, आपका घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो चुका है। महाराज, आप चेतक को लेकर जाइए। महाराज, हम आखिरी सांस तक लोहा लेते रहेंगे। महाराज, आप जाइए। महाराज,
1: झालाबीदा ने मुगल सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए महाराणा का राजकीय छत्र ले लिया था। ऐसा करने से मुगल सैनिक झाला को ही महाराणा समझ बैठे। झाला काफी देर तक बहादुरी से लड़ता रहा और आखिर में वो महाराणा और मेवाड़ के लिए कुर्बान हो गया। बलिदान चेतक घोड़े ने भी दिया, जिसने घायल अवस्था में भी महाराणा का साथ देते हुए दम तोड़ दिया। कहते हैं इस मुश्किल घड़ी में ही महाराणा की मुलाकात अपने भाई शक्ति सिंह से हुई। शक्ति सिंह मुगलों की ओर से युद्ध में शामिल था।
14: शक्ति सिंह तुम यहां?
15: राणा मुझे क्षमा कर दीजिए। राणा मेवाड़ के लिए सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, यहां तक कि आपके घोड़े चेतक ने भी स्वयं मृत्यु का वरण करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। और एक मैं हूं जो मुगलों के साथ मिलकर अपने ही लोगों का वध करता रहा। भूल गया था मैं अपनी मातृभूमि को और अपने कर्तव्यों को। राणा क्षमा कर दो मुझे। राणा क्षमा कर दो मुझे। राणा क्षमा कर दो। क्षमा कर दो मुझे।
2: हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के शौर्य, साहस और उनकी तलवार की चमक ने पूरे भारत को चकाचौंध कर दिया। मुगल बादशाह अकबर की फौज को भारत में कड़ी टक्कर मिली थी। एक छोटे से मेवाड़ राज्य ने पहली बार विशाल मुगल साम्राज्य को आईना दिखा दिया था। मुगल सेना ना तो महाराणा प्रताप को मार पाई, ना ही उन्हें बंदी बना सकी। बादशाह अकबर मेवाड़ की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए थे। कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम से अकबर इतना निराश था, इतने गुस्से में था कि उसने मानसिंह के दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी।
16: अकबर अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रताप वापस अपनी एक नई राजधानी नहीं बना पाते। इसका मतलब है कि स्थानीय सरदारों का और स्थानीय लोगों का उनके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते थे। निश्चित तौर पर भीलों का भी उसमें हाथ है, जो सेठ साहूकार हैं उनका हाथ है, और जो वापस उन्होंने अपना रिवाइव करके एक नई राजधानी बताई, वही एक ऐसे एकमात्र जो है कहा जा सकता है कि अकबर को उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम इस मतलब मैं जो है अभी भी तुम्हारे अधीन नहीं।
1: हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से लौटकर महाराणा ने मुगल सेना के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब महाराणा और उनके भील सैनिक अचानक किसी भी वक्त दुश्मन पर हमला करने लगे। इस गुरिल्ला युद्ध से अकबर की सेना इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने कई जगह रास्ते बंद कर दिए, कई नगरों में ऊंची दीवारें खड़ी कर दी।
0: बिल्कुल वो प्रिजनर्स के ढंग से मानसिंह की सेनाएं वहां पर रुक गई। भूखे मरने की नौबत आ गई। क्यों कि बाहर से सारा रसद मार्ग भीलबुराना के सेनाओं ने, सैनिकों ने बिल्कुल जिस भील जाति के लोग थे प्रमुख रूप से, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए।
17: अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो नान्यो सो अमर्यो चीख पड़े।
1: कहा जाता है कि महाराणा और उनके परिवार के लिए ये समय बहुत कठिन था। कई जगह ये कहानियां मिलती हैं कि महाराणा और उनके बच्चों को घास की रोटी तक खानी पड़ी। इसके बाद भी महाराणा और उनके सैनिकों ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

इस बीच महाराणा ने सामंतों की मदद से मेवाड़ की बिखरी हुई ताकत को फिर से एकजुट करना शुरू कर दिया। महाराणा ने चावंड को नई राजधानी बनाया, जो उनके बाद

0: तो श्रोताओं, आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: That's what we hope for. We thank you so much listeners for tuning in and we hope you have a great day ahead.
0: नमस्कार।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
5: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है, और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
2: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
6: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Samachar Prabhat mein aapka phir swagat hai. भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
6: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
8: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
9: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंदुझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दो सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का नौवां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
11: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की GDP सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9106264498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512100101।

0: लेना।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61 12 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: चौधरी ने इंद्रपुरी जलाशय योजना, सोन फल्गु नदी जोड़ योजना तथा सारण जिला बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना फेज वन को केंद्रीय बजट 2026-27 में शामिल करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही फरक्का बराज और भारत बांग्लादेश जल संधि से उत्पन्न समस्या, नदी की धारा में बदलाव तथा बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति एवं समर्पित कोष बनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नेपाल से संबंधित लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कोसी हाई डैम, कमला डैम और बागमती डैम के सर्वेक्षण तथा डीपीआर कार्य में तेजी लाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय रिवर लिंक परियोजना सहित केंद्रीय बजट में घोषित लंबित सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति एवं केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
1: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद यह उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 3 नई विशेष एनआईए अदालतें गठित की हैं। इन अदालतों में उन अपराधों की सुनवाई होगी जिसकी जांच एनआईए कर रही है। ऐसे अपराधों में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले और अन्य गंभीर मामले शामिल हैं। पटना स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 26 की अदालत को एनआईए मामले के लिए विशेष न्यायालय संख्या 2 के रूप में नामित किया गया है। यह न्यायालय केवल एनआईए द्वारा जांचे गए अनुसूचित अपराधों के मुकदमों की सुनवाई करेगा तथा इसका अधिकार क्षेत्र पूरा बिहार होगा। इन अदालतों का गठन एनआईए एक्ट 2008 की धारा 11 के अंतर्गत संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन किया है। इस जांच दल में 4 डीएसपी और 4 इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ईओयू ने धांधली की शिकायतों की जांच के लिए पूर्णिया और गया केस को अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की शिकायतें मिली हैं जिसकी जांच की जा रही है। अब तक की पुलिस जांच में मिले साक्ष्यों और दर्ज प्राथमिकी का अध्ययन करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद देवेश कुमार को राज्य योजना परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री कुमार का कार्यकाल 3 साल का होगा। योजना और विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपाध्यक्ष के रूप में देवेश कुमार को राज्य मंत्री की सुविधाएं मिलेंगी। गौरतलब है कि उन्होंने पिछले महीने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इधर राज्य सरकार ने हरेंद्र बहादुर सिंह को नागरिक परिषद का महासचिव मनोनीत किया है जबकि डॉक्टर अजय कुमार सिंह को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सरकार ने प्रदेश स्तरीय राज्य क्रियान्वयन कमेटी में 3 नए सदस्यों को नियुक्त किया है। कैबिनेट विभाग की अधिसूचना के अनुसार विधायक आलोक कुमार सिंह, पूर्व मंत्री अनिल कुमार और लोजपा रामविलास के नेता सुरेंद्र विवेक को सदस्य मनोनीत किया गया है। इन्हें उप मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष अब 55 वर्ष से कम उम्र के लोग बनाए जाएंगे। पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे पर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा में उन्होंने जिला अध्यक्ष के लिए 4-4 नेताओं का नाम भेजने का आग्रह किया है। श्री यादव ने कहा कि वे पार्टी की जिलावार बैठक भी करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा आज स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग की जाने वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये पखवाड़ा 15 सितंबर तक चलेगा। उर्वरक विभाग ने कहा है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का लक्ष्य भौतिक और डिजिटल दोनों कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाना है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि 2 अक्टूबर से सभी जिलों में खाद की ऑनलाइन बिक्री होगी। उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम में कहा कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत वैशाली और शेखपुरा में ऑनलाइन बिक्री की व्यवस्था शुरू हुई थी। इसकी सफलता को देखते हुए अब प्रदेश भर में इसका विस्तार किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि विभाग ने खाद बिक्री व्यवस्था को डिजिटल और किसान केंद्रित बनाने के लिए FSAS के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है। इसका सीधा लाभ अब किसानों को मिलेगा। नेपाल में बचाव दल त्रिशुली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर कीचड़ से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंपों का उपयोग कर रहा है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 939 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,925 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि देश भर में 11,000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में आई बाढ़ और बिहार में बढ़ते नदी जलस्तर के बीच पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने लोगों को बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार बाढ़ के पानी में मछलियों के सीवेज, मृत पशुओं और अन्य दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से इनके जीवाणु, विषाणु और अन्य रोगजनक तत्वों से दूषित होने की आशंका रहती है। ऐसी मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक बाढ़ का पानी पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता और जल स्रोतों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का उपयोग खाद्य के रूप में नहीं किया जाए। विभाग ने आम लोगों से अज्ञात या असामान्य दिखने वाली मछलियों का सेवन भी नहीं करने की अपील की है। साथ ही बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों की खरीद बिक्री और खाद्य उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ रेखा राज्य के उत्तरी भागों से गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक 145.4 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद के गोह में दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है।
1: दिनांक 1 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया जी एवं रोहतास जिलों में अति भारी वर्षा, जबकि बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, खगलिया, लखीसराय, नवादा, नालंदा एवं शेखपुरा में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड हमलों के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि क्या एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे सख्त नियमों के दायरे में लाया जाना चाहिए। और अब खबरें खेल जगत से। चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप के लिए घोषित भारतीय टीम में बिहार के 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बालक टीम का कप्तान पटना के रोहित कुमार, जबकि पटना की सलोनी कुमारी को भारतीय महिला रग्बी टीम की कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आयोजित 10वीं शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण समेत 19 पदक जीते हैं। पटना के प्रथम चक्रवर्ती ने अलग अलग वर्गों में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। भुवनेश्वर में 3 सितंबर से खेली जाने वाली पूर्वी क्षेत्र इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए बिहार पुरुष, महिला, जूनियर बालक और जूनियर बालिका टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित 7वीं राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप के सीनियर पुरुष 20 किलोमीटर क्रॉस कंट्री मास स्टार्ट में कैमूर के राकेश रंजन ने स्वर्ण पदक, जबकि महिला वर्ग में बेगूसराय की बबली ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार झारखंड में सोन के जल बंटवारे का विवाद खत्म, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों में बनी सहमति। दैनिक जागरण ने केंद्र सरकार के निर्णय के हवाले से लिखा है, एससी एसटी को गंभीर बीमारियों से मिलने वाली मदद का दायरा बढ़ा। दैनिक भास्कर ने शिक्षक स्थानांतरण पर लिखा है, अब 5 सितंबर को जारी होगी ट्रांसफर की औपबंधिक सूची। प्रभात खबर की सुर्खी है, TRE4 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्थगित। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों में होगी पीजी के समान पाठ्यक्रम की पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर ने बाढ़ की खबर पर लिखा है, बिहार में बाढ़ से 20 जिले प्रभावित, 5600 लोगों को किया गया रेस्क्यू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की। केंद्र सरकार ने बिहार समेत 3 राज्यों में एनआईए की नई विशेष अदालतें गठित की हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने दारोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए एसआईटी बनाई। और राज्य सरकार ने लोगों से बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने का आग्रह किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205262112 पे।
0: कई दिनों
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
12: Pick it up.
13: Hello?
12: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी मैम, गाना सुनना है।
2: जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: हिंदी सॉन्ग है, आने का वादा किया।
2: जी,
1: और वही वाला गाना सुनना है।
2: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: गुलाबसा है, शहनाज है, रवीना है, अजमेरी है, मौलादीन भैया, जमशेद, शमशेर, इरफान, अरमान, रेडियो सुनने वाले सब श्रोता को।
2: जी तो वैसे आप अपना नाम बता।
1: मेरा नाम साहिबा खातून, कैथोलिया से।
2: जी जी, तो गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
2: रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जुदा।
1: नमस्कार मैम
2: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम से। मैं तो
1: गुस्साई है क्या मैम?
2: नहीं तो मैं आपसे क्या गुस्सा होंगी।
1: आप तो 26 तारीख को फोन किए थे, मेरे बड़े वाले लड़कों को बर्थडे था, उस दिन कॉल किए थे। आप 26 को किए थे मगर आप रिसीव नहीं की शाम को, शाम में 3:00 पर।
2: नहीं नहीं, वहाँ वो योर भर्ती फ्रेश।
1: जी जी मैम,
2: नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी कभी कॉल मिस हो जाता है।
1: इतना की है क्या मैंने, उसका बर्थडे था तो मेरा
2: मैसेज कर देना चाहिए था।
1: मैम मैसेज करना नहीं आता है अभी, उतना हम नहीं सीखे हैं, छोटा अब बड़ा वाला मोबाइल हो गया है तो अब थोड़ा मैंने सीखेंगे। व्हाट्सएप बोलकर भेज देते हैं लोग, वो भी सीखेंगे तो सीख कर तो भेजेंगे। मगर उस दिन बहुत आपको याद किया, नहीं की फोन
2: मिस कर गए।
1: आश्चर्य, 8 तारीख को आएगा मेरा मझिला लड़का को, उस दिन मिस नहीं कीजिएगा।
2: नहीं नहीं करेंगे।
1: आप सब बोलिए।
2: और सब ठीक है?
1: ठीक है मैम। खाना उना हो गया है?
2: जी खाना हो गया। आप सबका हो गया है?
1: जी मैम मेरा भी हो गया है। 4 तारीख को जन्माष्टमी ना है?
2: हाँ जन्माष्टमी है।
1: जी मैम तो कोई गाना सुना दीजिएगा उन्हीं का, कृष्ण भगवान को।
2: अच्छा, उनसे रिलेटेड तो मूवी का ही सॉन्ग बजा देंगे। ठीक है,
1: मूवी
2: मतलब जैसे कि अगर कान्हा जी का बजाना है तो किसी मूवी का गाना बजा सकते हैं, अब ऐसे एल्बम सॉन्ग नहीं बजा सकते।
1: अच्छा
2: जी, तो एक है लगान मूवी में का राधा कैसे न जले।
1: जी जी जी,
2: सॉन्ग ठीक लगेगा आपको?
1: जी मैम, आपको जो पसंद है वो बजा दीजिएगा।
2: जी
1: जी,
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी मैम, आपको मनोरमा मैम को, जितना भैया सुनते हैं बहने सुनती हैं सभी को सुनाना है।
2: जी जी बिल्कुल, तो गाना प्ले करें।
1: थैंक यू मैम,
2: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
2: वेलकम।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: Now pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
9: Hello.
8: Pick it up, pick it up.
9: Hello.
8: Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी नमस्ते।
12: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM।
11: बाली सुंदर तो।
12: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: ठीक है, अपन बताइए।
12: जी हम सब भी ठीक है।
11: ठीक है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
12: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, बस ऐसे सुहाना मौसम बना हुआ है।
11: इधर तो हुआ एक अच्छा।
12: अभी
11: अभी
12: चलिए, सबसे बढ़िया है।
11: जी सुंदर है, परदेश परदेश नहीं मुझे छोड़ के परदेश गाना है।
12: और गाना किसी को सुनाना भी है?
11: अमन आशीष
12: गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: जी नमस्ते।
12: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 में।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: गाना सुनना है?
0: बिल्कुल सुनाएंगे। नाम भी बताएं अपना।
1: रामकेश शर्मा।
0: जी जी। और रामकेश जी कैसे हैं आप?
1: ठीक है।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अरे तो उनका गाड़ी चल रहा है। गाड़ी
0: अच्छा, गाड़ी से आ रहे हैं तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: नदिया के पार के गाना जिसका मैं लेके चला रहे बताइए।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: हाँ जैसा मैं सुन रहा है सब लोग।
0: जी तो गाना प्ले करें, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।

0: मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 FM में।
5: जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर, बगई बाजार, कटिया, गोपालगंज।
4: जी क्या हाल चाल है आपका?
5: बढ़िया है जी, अपना बताइए।
4: मेरा भी बढ़िया है।
5: भारती जी बोल रहे हैं। और सब बताइए, अच्छा है साहब?
4: जी सब सही अच्छे हैं।
5: आज का मौसम सब सही है, धूप हो रहा है, कभी छांव हो?
4: हाँ, कभी छांव।
5: ठीक है, बोल रहे हैं गाना सुना दीजिए।
4: बता दीजिए।
5: गाने का बोल है, नफरत की दुनिया से प्यार की दुनिया में कोई सुनाना मेरे यार।
4: सुनाना भी है
5: यही सुना दीजिए।
4: नहीं, गाना आपके किसी को सुनाना चाहते हैं?
5: सभी लिसनर्स है, जितने लोग हैं, रिंगिंग करवा रहे हैं, उतने सब आदमी को सुनाना चाहते हैं।
4: और सबसे
5: हाँ जी, बढ़िया है, दया है।
4: आप ये चल रहे हैं, सुनते रहिए।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बस खाना खा रहे हैं और आपका फोन ट्राई कर रहे थे तो फोन लग भी गया।
0: जी
1: भारती मैम बोल रही, मनोरमा मैम बोल रही है।
0: मैं भारती बोल रही हूँ।
1: ये गाना कब बजेगा मैम जी? आज या कल?
0: नहीं तो कल, ये दो दिन में तो बज ही जाएगा।
1: जी जी, तो पिक्चर का नाम है धर्मकांटा और गाने के बोले ये कोठेदार लहंगा निकलूं जब डाल के।
0: एक बार और बताइए।
1: फिल्म का नाम है धर्मकांटा
0: और गाने के बोल?
1: गाने के बोले ये कोठेदार लहंगा निकलूं जब डाल के।
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: जी भारती मैम को, सोनी मैम को, मनोरमा मैम को, गजराज सिंह लोधी है, जीतन धाकड़ जी, गोपाल ओझा जी है और अमर सिंह गिल है दिल वाली पठान से।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: नमस्ते मैम।
10: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: हम मिथुन शर्मा बेंगलोर से बात कर रहे हैं मैम।
10: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
11: अच्छा है मैम, गाना सुनना चाहते हैं?
10: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
11: एक ही रास्ता का है, प्यार गजब की चीज है, हो जाए हो जाए।
10: और गाना किसी को सुनाना है?
11: सभी रेडियो दोस्त को सुनाना चाहता हूँ, आपको भी सुनाना चाहते हैं।
10: बिल्कुल, तो गाना फिर करते हैं
11: जी मैम,
10: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
11: ओके।

0: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: क्या कर रहे हैं?
0: ठीक बात बताए तो कैसे बनी?
1: ठीक बने अपन सुनाए।
0: हम लोग भी ठीक बने सर। क्या होता है अभी?
1: खाना बनाता है।
0: अच्छा, हम लोग क्या होता है सर?
1: आए
0: आए सर।
1: हाँ बिल्कुल आए रहो आए मुनरवा में मैम।
0: हाँ क्या होते वाली सर? बस
1: चौपाई अली बानी ना।
0: हाँ
1: चौपी कहाँ चौपे बताइए हम आए थे इस तरह।
0: बताई ना हमने कहाँ आई सर पहुंचे
1: आ जाए पठानपुरी बाजार पर।
0: अच्छा अच्छा चली आओ तरी सर। तो गाना बता दी कौन सा गाना बजाया तब तो नाम सॉन्ग बजा के।
1: अच्छा जी गाना बजाइए क्या है ना? बजा दी हिंदी गाना।
0: कौन गाना के बोल बता दी?
1: ये परदेसी परदेसी जाना नहीं।
0: अच्छा
1: जी
0: गाना
1: तो सुना हूँ और सुने मैम सुने सब कोई सुने जितना लोग रेडियो सुनाता है।
0: जी जी गाना प्ले करते हैं सुना रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। हेलो, जी नाम बता दीजिएगा अपना। हेलो,
8: चालू होता
7: ना सो चली, अभी चालू करे जाते बानी, अभी चालू करे जाता नहीं,
8: चालू चालू ना होता, अभी चालू ना होता
7: ना ना, थोड़ा काल तबियत ठीक ना रहे, वैसे ना चलो यहाँ जाता नहीं चालू करे। बता दी कौन सा गाना सुने,
8: सुना भी करो अपने,
7: ना ना बता दी जल्दी बताई
8: कौन सुन कौन बता दो।
7: अच्छा, और गाना क्यों भी सुनाऊंगा, चलिए फिर गाना प्ले करके नहीं सुनाते हैं रेडियो 90.4 FM।
8: ठीक है,
7: ओके।

0: ठीक है काम बा। मौसम तो ठंडा भइल बा।
1: मौसम
0: ठीक भइल बा। गाना सुना दे।
1: बता दे।
0: ओनन से फरिश्ते इससे ये कैसे नाता।
1: अच्छा और गाना सुनाओ तो बता।
0: हाँ आपको और पूरे रिमझिम टीम को जहाँ पर पहला है सबको और मेरे ग्यासुद्दीन भाई को उनके अन्य परिवार को।
1: तो गाना प्ले कर रहे हैं सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
0: कब आ जाएगा?
1: सुने की आज अनाथ साल मिल गई।
0: ठीक है सर।
1: ठीक।

0: का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello?
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
14: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 एफएम में।
17: नमस्कार मैम,
16: नाम बता दीजिएगा अपना।
17: मधु सर से राजीव कुमार बोल रहे हैं।
16: जी कैसे हैं आप?
17: ठीक हूँ।
16: और कौन से गाने की फरमाइश है बता दीजिए।
17: मिलने से दिल करता है रे बाबा से, मिलने को दिल करता
16: है। और गाना किसी को सुनाना नहीं है
17: सभी रिम सुनने वाले
16: तो। जी तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिम 90.4 एफएम।

0: जी मेरा नाम जाकिर हुसैन।
1: जाकिर हुसैन
0: जी,
1: और कहाँ से हैं आप?
0: मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, गोपालगंज।
1: आपका
0: सब ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: जी हम सब भी ठीक है।
0: चलिए आपको भी बहुत शुभकामना, रेडियो परिवार को भी हार्दिक शुभकामना।
1: जी
0: मैम जाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए कौन सा
0: गाना। मेहमान किया रे बड़ा जुलूम किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: जी मैम हमारे दोस्त लोग हैं जी, तो के आलम यूसुफ विकास और हम और पूरा परिवार को और सबको आप सबको बस कैसे आदमी को सुनाना चाहता हूँ।
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।

0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमरजैट पर।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
5: एफएम में। मैं सुरेश बोल रहा हूँ, जिला देवघर झारखंड से मैम।
4: जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: जी हम भी ठीक हैं।
5: और आपके रेडियो रेंज की पूरी टीम सब कैसे हैं?
4: जी सब कोई ठीक है। ठीक है ना?
5: जी बिल्कुल, सब परिवार सब ठीक होंगे।
4: कौन सा गाना सुना है आपको?
5: आज सुना दी पुरानी फिल्म अमिताभ बच्चन की लवारिस फिल्म का गाना सुना दी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में।
4: गाने की बोल बता दीजिए।
5: के बिछड़े हुए आज यहाँ आके मिले, इस तरह की गीत की बोल
4: है। अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
5: जी सबसे पहले मैं आपको आपके रेडियो रिंगन पूरे टीम को और जितने भी रेडियो रिंगन के लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ।
4: जी तो गाना प्ले करें।
5: जी मैम। जी
4: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: भारती जी, आपका भी रेडियो रंजन में स्वागत है। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: और कैसे हैं आप?
0: ठीक ही हैं?
1: ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक ही हैं, इसका मतलब ठीक नहीं है?
0: हाँ तो मतलब ठीक है।
1: चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। क्यों, बारिश वरिश नहीं आ रहा है क्या?
0: नहीं, बारिश तो नहीं आ रहा है, बस मौसम बना हुआ है।
1: बारिश वरिश करवाई है, मौसम बन रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बताइए। हम लोग इधर बेसब्री से इंतजार करते हैं, भारती जी की आवाज सुनने को भी नहीं मिलता।
2: पर आप लोगों ने उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं खिलाई और ऊर्जा में भी नहीं आई। हम लोग तो सड़स के रह गए।
0: जी जी, तो थोड़ा तबीयत खराब था ना।
1: कहते हैं कि थोड़ा सेहत पर ध्यान दीजिए।
0: थोड़ा आजकल मतलब पर्व वगैरह था ना, मम्मी तो कुछ करती नहीं है, उनसे नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। अकेले तो कभी कभी हो जाता है ऐसे।
1: ये भी देखना जरूरी है। फिर मैंने कहा कि जब ये कॉन्टेस्ट वाला नहीं हुआ था, भारती जी आज लगता है छुट्टी पे है, नहीं
0: आई। बिना सर को बताया हम लोग छुट्टी पे कभी नहीं जाते।
1: कोई बात नहीं, तो माँ जी का भी ध्यान रखिए और सबसे पहले अपना भी ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, कल नहीं आई तो, लेकिन सेहत सही तो ला गई। क्यों, सेहत सही रहेगा तो स्वस्थ इंसान रहेगा, तो हम लोग को भी आवाज सुनने को मिलेगा।
2: बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है ना। नाश्ता उसका पानी करके आई है कि नहीं? आज
0: नहीं, नाश्ता पानी तो करके आते हैं, इससे कहाँ होने वाले हैं।
2: सेहत पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग को आवाज देते रहिए। आखिर हम लोग जो है इसी में हम लोग आपको आवाज के लिए बेसब्री से इंतजार करते
0: हैं।
1: इसीलिए तो कहते हैं कि दुआ दुआ करते हैं आपके लिए हम हर पल, हर दिन आपके लिए लाए हसीन पल। वो खुशी का आपका ये जो रहे सदा हर पल। ये गाना है,
0: बता दीजिए।
1: आई फिलहाल की रात का है या दिल का है? मुझे नींद ना हो, मुझे चैन ना है, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया।
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनवाएंगे।
0: जी जी,
1: और साथ में आवाज जो आ रही है आपके मनोरमा जी हैं, उनको भी सुनाएंगे।
0: जी,
1: और जितने तमाम श्रोतागण इस रेडियो को शाम प्रोग्राम सुनेंगे उन सभी का ये गाना डेडिकेट है। लेकिन आपसे बात करके बहुत खुशी आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनने को मिलेगा हम लोगों को।
0: जी जी,
1: थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम वोग्राम सुना, उसके बाद नहाया धोया और जाकर निकला। थोड़ा टाइम दे देते हैं हम लोग कंप्यूटर पे अपना, देखते रहते हैं।
0: अच्छा, देखना ही चाहिए थोड़ा बहुत,
1: इसलिए कि हर चीज का सुविधा है, कोई ऐसा चीज ऊपर वाले कमी नहीं दिए हैं। बाकी जो है भेजूंगा वीडियो, देखिएगा, आइएगा प्रोग्राम में। तो
0: जी जी, बिल्कुल।
1: तो नमस्कार, और भी लाइन में लगे होंगे।
0: जी,
1: तो रखते हैं, आपका दिन शुभ हो।
0: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: मैं अहमद अली, सरयाबाद नंबर 1 से।
9: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
8: ठीक है, आप कैसे हैं?
9: मैं भी अच्छी हूँ।
8: हम लोग भी अच्छे, भारती मैम बोल रहे हैं?
9: जी जी,
8: हम लोग भी अच्छे हैं। आज तो एक ही बार सोचा है, कब से सोच रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, एक ही बार में लग गया कॉल।
9: जी, थोड़ा कॉल स्लो हो जाता है, टाइम भी तो हो गया।
8: हाँ टाइम हो गया, इसलिए मेरा लास्ट कॉल होगा।
9: हाँ, तो कौन सा गाना
8: सुनो? आज गाना सुना दीजिए, बेखुदी मूवी से मेरा गाना है, आएगी मेरी याद जब होगा बुरा हाल, तो देखे ये रुमाल मुझे याद करना।
9: और गाना किसी को सुनाना है?
8: गाना तो लाजिम सुनवाना है मैम, सबसे पहले तो आपको, सोनी मैम को। अख्तरी को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, समीर भाई को और राघव जी को और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
9: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
8: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
9: जी सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: थैंक यू।

0: नमस्कार
1: नमस्कार वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेडूरन
0: जी। मैम कैसे हैं?
1: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी मस्त है, अगले जिले में आकर और मैं बहुत एक घंटे से हम इंतजार कर रहे थे, लगा रहे थे, लग ही नहीं रहा था।
1: एक
0: बहुत ज्यादा
1: लग रहा है
0: जी। मैम 200 बार कॉल कर चुके हैं, मेरे हाथ भी दुख गया लगाते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश नहीं कर रहा है।
1: कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है।
0: हमको लगा मैम की आज मनोरमा में रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए ज्यादा लोग ज्यादा बिजी आ रहे हैं, वो करते हैं तो ज्यादा बिजी आता है,
1: ज्यादा कॉल ज्यादा ज्यादा
0: देर तक होता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा पीछे हो गए मैम।
1: पीछे हो गए तभी तो ठीक है।
0: हाँ,
1: पीछे रहने से इसलिए ठीक होता है ना, क्योंकि हम लोग जब कंप्यूटर में कॉल लेते हैं तो ये पीछे वाले लोग आगे हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ, ऐसा हम सुने हो
1: ना, तो
0: ये और आपका कॉल हम 4 बजे तक इंतजार किए हैं, भोजपुरी एक्सप्रेस का चलाई नहीं।
1: हाँ, कल थोड़ा तबियत ठीक नहीं था इसलिए नहीं चला।
0: हमको लगा थोड़ा कि मैम को लगता है वो शनिवार को सुन रहे थे तो अभी तक का सही नहीं आ रहा था, इसलिए हम सोचे, लेकिन फिर भी इंतजार कर रहे थे 4 बजे तक। 4 बजे तक इंतजार किए, उसके बाद सोडियो बंद कर दिए। आज सोचे आज लगाते हैं तो आज बहुत मेहनत करा भरा, तब लगा कर मेहनत सफल हुआ
1: जी।
0: हम भी ऐसे कल ट्रेन में थे और इंतजार कर रहे थे भोजपुरी एक्सप्रेस चलेगा तो अच्छा लगेगा, एक्सप्रेस में एक्सप्रेस नहीं चला। चलिए तो आज
1: आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा
0: जी। मुझे आज गाना सुनना है आरजू मूवी से, और गाने का बोल है मिल जाते हैं जो प्यार में, कुमार सानू अलका याग्निक आवाज में है।
1: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: हाँ, बारिश भारत में रहने वाली भारतीय हमको यानी आपको, क्योंकि आप भारत में ही रहती है ना
1: जी। जी, हम तो पूरा मेरे नाम में ही बसा हुआ है
0: जी मैम, और सभी आरजे को, सभी रेडियो दोस्त को जी। आज भी मैं रुमा में लेकर रिकॉर्डिंग करूँ इतना ही आधा घंटे बाद, आपका ही है पूरा।
1: हाँ।
0: मैम तो आज मेरा 1 नंबर में बजाइएगा, एक सप्ताह हो गया उसका, योर वॉइस का
1: जी जी।
0: हम मतलब रूल के हिसाब से फॉलो करते हैं,
1: रूल के हिसाब से 2 नंबर।
0: क्या मैम?
1: रूल के हिसाब से 2 नंबर में, 1 नंबर में मेरा बजेगा, 2 नंबर
0: में आपका। जी मैम जी, जुड़ते हैं उसमें वॉइस के साथ प्ले कीजिएगा। चलिए धन्यवाद एडवांस में।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
0: ओके मैम, बाय बाय
1: बाय। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:29 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है आप लोग तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। ये बातें तो आप सभी के बीच हर रोज कार्यक्रम को शुरू करते वक्त और बीच में भी बताई जाती है। तो जो भी श्रोतागढ़ नए हैं जो सुन ले और सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गाने, तो पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी फरमाई हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैसेज हमारे पास काफ़ी पहले जो पहुँचे हुए उस मैसेज को हम शामिल नहीं करेंगे, 5 मिनट पहले वाले मैसेज को लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार और गाना सुनना है, लिंक भेजे हुए हैं सुना दीजिएगा आपको और भारती जी को, रोशनी जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सगीर अंसारी, आजाद भाई और सन्यासी भाई, दिलीप राम इस मैसेज को किए हुए हैं। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप जब भी लिंक भेजें तो लिंक के साथ साथ उस गाने के नाम भी बता दें ताकि हमें आपकी फरमाइश आ रही, चाहे जो भी श्रोतागढ़ लिंक के माध्यम से गाने की फरमाइश करते हैं तो उसका नाम भी बता देंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी आप सभी के फरमाइशों को पूरा करने में। सो दिलीप जी आप भी, आपसे विशेष निवेदन है, पहले जो सुविधाएं हमारे पास थी वो सुविधाएं में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है जिसके वजह से हमें लिंक के माध्यम से गाने की फरमाइश पूरी करने में दिक्कत होती है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया कैसे हैं आप, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से और गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है, तो बढ़िया है, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं निशा डुमरिया से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार कैसे हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित यूपी 36 अमेठी ज़िला उत्तर प्रदेश से और मैं अपने गांव आया हूँ, इसलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सुनो बाबू क्या हाल खबर है, हम भी ठीक हैं, एक सॉन्ग सुनना है फिल्म आप आए बाहर आए, रफ़ी जी का स्वर है, सॉन्ग है पूछे जो कोई हमसे की बाहर। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है, तो मेरा हाल अभी फ़िलहाल ठीक है और आप सभी की भी उपस्थित हूँ। मैसेज को दोहराया गया है आशा चौहान की तरफ से, तो आपकी मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है गाने के फरमाइश से, तो एक एक करके फरमाइश पूरी करेंगे और थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है। आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सब्र को बढ़ाए और पहले गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं। अभी तो समझ में नहीं आ रही कि कौन से गाने हैं, चलिए और यही दिक्कत होती है हमारे पास जिसको ठीक करना अभी उचित हमारे पास समाधान नहीं है। तो आपसे कहना यही है कि आप जब भी लिंक के माध्यम से गाने की फरमाइश करें तो नाम बता देंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी। और चलिए दिलीप जी आपकी फरमाइश हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, फिलहाल आप सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब और यहाँ पे लिंक के माध्यम से गाने के फरमाइश किए हुए थे और हमें इनकी गाने के फरमाइश हम पूरा करने ही वाले थे, तब तक अपने गाने को लिंक को चेंज कर दिए शायद। और ऐसी घटनाएं होती है तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि पूरी क्लियर हो जाए कि कौन से गाने सुनने हैं
और आगे बढ़ते हैं, हम अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है रफ़ी जी की आवाज़ में, और डेडिकेट पहले मैडम जी को करते हैं अपने, और रोशनी शफाक हिना शबीना और सलोनी शाहजहाँ गुड़िया ब्यूटी निशा आशा खुशी हाजरा शब्बा और हमें भी डेडिकेट किए हुए हैं और दिलीप भाई को भी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MCM 90.4 FM पे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि प्रणाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं सभी दोस्त, कैसे हैं? ठीक है, सुपर गाना। चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, हम सभी बढ़िया हैं। अपना बताएं, सविता चौहान। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि तालों में नैनी ताल बाकी सब तलैया। सॉन्ग सुनना है, बड़ेरिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? गोपालगंज में बाढ़ आया है क्या? बाढ़ तो नहीं आई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है शाम को। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग वीरेंद्र भैया, थैंक्स मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए, सॉन्ग में शामिल करने के लिए। कैसे हैं आप और भाभी जी कैसी हैं? मैसेज करती हैं आशा चौहान सराफरा परशौनी से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि, और इस मैसेज को पहुंचाते हैं रोहित जी देहरादून से, और गाने की फरमाइश करते हैं। हमने घर छोड़ा है, कम को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। और यह गाने अपने गांव आने के उपरांत फरमाए हुए हैं, तो इसलिए अपने गांव आए और गांव पे भी रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सुनते रहें, इंजॉय करते रहें, जहां कहीं भी रहें कार्यक्रम और हम सभी से जुड़े रहें, यही आपसे निवेदन है। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने, हम सभी रेडियो रिमझिम 94 FM पे।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। शो चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं, और आगे मैसेज लिखा गया है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया गाना प्ले करने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि मैं डेरी मिल्क लेके गया था उसको प्रपोज करने के लिए, किसी ने उसको चीनी का बोरा दिखाकर प्रपोज कर दिया। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि चीनी का दाम बढ़ गया है तो कीमत के अनुसार उसने भी अपना इरादा बदल लिया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश किए हुए हैं यहाँ पे दिलीप जी, और इनकी फरमाइश तो फर्स्ट में ही पूरी होने वाली थी, और इनके ही वजह से इनकी फरमाइश दो गाने के बाद पूरी हो रही है। तो आप लोग जब भी गाने की फरमाइश करें तो क्लियर हो जाए कि हमें कौन से गाने सुनने, तो मैसेज करें। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, गोरे रंग पे इतना गुमान ना कर गोरा रंग एक दिन ढल जाएगा। बिल्कुल बात सही है गाने का कहना, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

कमल के शॉन्ग टहा दिलीप जी के तरफ से और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते सुनो भैया, हमारा गोपालगंज कैसा है? आज शायद बारिश हुआ है, बिल्कुल बारिश हुआ है। कहते हैं कि भैया गाना सुना दीजिए और ये शोला मूवी से। आज सुबह जब मैं जागा तेरी कसम ऐसा लगा। भैया मेरा नाम सिद्धांत पशवान सिसई बरौली गोपालगंज से और डेडिकेट सॉन्ग फॉर ऑल रेडियो रिमझिम लिसनर्स एंड भारती मैम मनोरमा मैम को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी, और लिखे हुई कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा, और मैं भी सुर से जुड़ गई हूँ, और मेरे भी हाजिरी लगा दीजिए रोशनी कुमारी मानिकपुर से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू भैया। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए सिद्धांत जी, और आगे भी कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि कुछ वक्त का इंतज़ार मिला मुझको, पर खुदा से बढ़कर यार मिला मुझको, ना रही तमन्ना किसी जन्नत की, मुझे तेरी दोस्ती से वो प्यार मिला मुझको। सुना भाई नमस्कार, और वीरेंद्र भैया जी को नमस्कार, गाने में शामिल किया और मेरे गाने चलाने के लिए शुक्रिया आपको। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमछम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग लता जी और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में, बस इसी तरह सुनाते रहिए। सोनम भैया MD 97 दरभंगा भजीतपुर से मैसेज किए हुए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मेरी फरमाइश को आप दबा दिए हैं क्या जी? तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और उससे पहले के हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है आशा चौहान के, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है आओ सुनाऊँ प्यार की एक कहानी, और डेडिकेट करती हैं, बहुत सारा नाम दिए, और लिखती हैं कि आपको और अपने सिस्टर अंशु को और रेडियो फ्रेंड्स अनामिका जी, सबीता जी, काजल जी, गुड़िया जी, ब्यूटी निशा, शबीना, रुबीना, शफाक, सलेहा, सुफिया, हिना, हजरा, खुशी, संतरा, सब्बा, तब्बू, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी, समीर भैया, साहिल भैया, इरफान भैया, कमरान भाई, पंकज भैया, गुलाम भैया, और अतीश भाई, राम कुमार पांडे जी, दिलीप भैया, साहिल भैया, सावंत शर्मा, सनोज भाई, नौसाद भाई, एके पांडे, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को। इसलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, आशा चौहान आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमछिम 94.4 FM पर।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: सभी प्यारा सॉन्ग सुनने थे, अभी हम सभी रेडियो रमछीम 94.4 FM पे सो चल रहा है। इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश किए हुए हैं सनोज जी, और गाने के फरमाइश बोल देते हैं ताल में नैनी ताल बाकी सब तलैया। सभी प्यारे रोमांटिक जुनून भरी सॉन्ग है, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछीम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, कमाल के शौक सुन रहे थे अभी हम सभी। और दो गाने, आशनाओं प्यार की एक कहानी और एक ये तालों में नैनी ताल बाकी सब कलैया। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है दोनों गाने को उपरांत एक वाओ सुपर सॉन्ग, एक कमाल के सॉन्ग। मैसेज करती हैं रोशनी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को पहुंचाए हुए हैं अनीश कुमार जी। और कहते हैं कि हाय, मुझे सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग की फरमाइश करते हैं, लिखे हुए हैं कि ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे, क्योंकि समय जो है समाप्ति से आगे निकल रहे हैं। तो कार्यक्रम यहीं तक रहेगा आज। जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं तो नाराज नहीं होना है, समय जो हमारा है वो निर्धारित समय है। और ज़्यादा हमें आदेश मिलता है तो आप सभी को सेवा देने की कोशिश की जाती है। फिलहाल आज कोई आदेश नहीं, सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो आप सब सुनते रहें रेडियो रमझम 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और यहाँ जब तक हमारे सारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूँगी और गाने की बोल है कजरा रे। तो चलिए सभी के साथ एंजॉय करते हैं इस गाने को रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी आप सभी सुन रहे थे मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग कचरा रे, और मूवी नेम है बंटी और बबली। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय नमस्ते भारती दी, मैं श्याम सुंदर संग्रामपुर से, और मेरा एक हफ्ता हो गया है क्या मैम की, मुझे भी गाना सुनवा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारती जी, मैं भी जुड़ गया हूँ आपके शो में, और नाइस ओपनिंग सॉन्ग पूरे 100 नंबर इसके लिए। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, बंटी बबली से शुरुआत किए बहुत अच्छा लगा, और मैसेज करने वाले हैं दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो हाय भारती जी, कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से, और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, और हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से गाना सुन रहे हैं और गाने की लिंक भेजे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से, लिख रहे हैं जी मैम नमस्ते गुड आफ्टरनून मैम, और आ गई नहीं हम हूँ, और वाओ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है कजरा रे तेरे काले काले नैना। और इसी के साथ यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्ते, क्या हाल है जी, और आपका इंतज़ार कर रहे थे जी, और मुझे गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं विकास गुप्ता, भोरे गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज मेरे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं नमस्ते नमस्कार प्रणाम भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहल्ले पंजाब से आज बहुत दिन बाद फरमाइश भेजा हूँ, डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स 24 आवर एंड हार्ड को मेरा और मेरे घर भी नई नन्ही परी आई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और नन्ही परी आपके यहाँ आई है तो बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि माँ सोफ़ा लेटने के लिए नहीं बैठने के लिए होता है बेटा, हाँ तो चप्पल भी मारने के लिए नहीं पहनने के लिए होता है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप ठाकुर, और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम, गाना सुनना है और गाना सुना दी मैम, खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का न्यू गाना सुना दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो आपका भी गाना प्ले करने जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कि गाने की तो फरमाइश नहीं लिखे हैं, तो चलिए अपने मन से गाना प्ले करते हैं शिल्पी राज और खेसारी लाल का, तो एंजॉय कीजिए गाने को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: छोटे से ब्रेक के बाद जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि संजय यादव जी, थैंक यू मैम मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपके कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, सादर नमस्ते, न्यायपारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, पप्पू ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, सच्ची का, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं, प्रणाम मैडम जी, सुनील यादव दुबई से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय, और मैसेज बोरिक हेल्पर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो कि किया है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि सत्यम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास के रहने वाले हैं और गाने की फरमाइश किए हुए हैं, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज भी पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: और ये ना उसमें लिंक है गाने का, वो क्यों नहीं पढ़ती है आप लोग, जय बार हम करते हैं। ये कौन सा वो है हमारे मैसेज, कोई आपत्ति है तो बोल दीजिए हम नहीं भेजेंगे।
0: तो आपके मैसेज को पढ़ा जाता है और जो आप लिंक भेजते हैं फेसबुक से भेजते हैं, और मैं फेसबुक का लिंक प्ले नहीं कर सकती, और वो रील्स होता है तो रील्स कोई कैसे चलाएगा, रील्स 30 सेकंड के होते हैं आपको तो पता ही होगा। आप ही बताएं मैं कैसे प्ले करूं आपके लिंक को। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास अगली फरमाइश, और आपको अगर लिंक भेजना है तो लिंक ऐसा भेजिए जो प्ले कर सकें, और रील्स वाले लिंक को मैं प्ले नहीं कर सकती, आपको तो बताना नहीं है, ये सबको पता है। और जो कि यहाँ हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है उमाकांत मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं और हिंदी सादा बहार गाना सुनना चाहते हैं, और कोई भी हिंदी सादा बहार गाना प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ, और गाने की बोल है, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

लोग सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। और यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहा है कि दिल में कुछ यूं बस गई हो तुम कि मेरी हसरत चाहत बन गई हो तुम, लगता नहीं है दिल अब कहीं तेरे बगैर, सुकून आदत जरूरत बन गई हो तुम। नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी, प्यार भरा नमस्कार है, तब क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है। और मैसेज करने वाले हैं रेडियो फैन इरफान, मोहम्मद इरफान फ्रॉम शारजा सिटी यूएई दुबई से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मेरे तरफ से कुछ खास लिसनर निशा भारती, उज्जवलिया, रुखसार खातून, आयशा खातून, सगुफ्ता फिरदौस, शिल्पी सुधा भारती, हजरा खातून और अनिल भाई को प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार बोलिएगा याद से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सिर्फ बेहद चाहने से क्या होता है, नसीब भी होना चाहिए किसी का प्यार पाने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है मोहम्मद इरफान जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहा है कि बहुत अच्छा गाना चल रहा है, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, और मैं भी जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम से, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। और सुनील कुशवाहा मैयर एमपी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैम जी, हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि जिस हिसाब से दूध के दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से माँ के दूध के कर्जा तो दूर, दूध वाले का कर्जा उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। बात तो सही है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि शशि

रानी की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश जी की, भारती जी हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ऐसा ऐसा गाना बजाइएगा तो हम जवाब पूछेंगे ही। अच्छा जी, और लिख रहे हैं कि दिल में जो कुछ होता है वो कहाँ नहीं जाता, अब दर्द जुदाई सहा नहीं जाता, हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से, अब मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, हमारे प्रिय आरजे सोनी जी के लिए। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनेश कुमार जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि अगर आपको प्यार है तो जाकर उनसे बोल दीजिए दिल में क्यों रखे हैं। और मुकेंद्र कुमार कुशवाहा दुबई से, दुबई के रहने वाले हैं और बंजारी से जुड़े, दुबई से रहने वाले हैं बंजारी के, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि जिन चिरागों में तेल ही नहीं उन्हें जलाने से क्या होगा, जो अपना था ही नहीं उस पर हक जताने से क्या होगा, बड़ी मुद्दत बाद नींद आई है इस थकी हुई आँखों में, अब बीते हुए कल को फिर से जगाने से क्या होगा, और नाइस सॉन्ग जिनका भी है यह सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मुकेंद्र जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, आज इनके यहाँ एक नन्ही परी आई हुई है और इसी के लिए गाना प्ले करना है। और दिलीप कुमार ठाकुर जी मैसेज करने वाले हैं और यहाँ गाने की फरमाइश इनकी तरफ से लिंक के माध्यम से पहुँची हुई है। और गाना है मेरे घर आई एक नन्ही परी और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो गाना प्ले करेंगे बिना देरी किए और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और अभी हम लोग काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, मेरे घर आई एक नन्ही परी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुनील कुशवाहा जी की, मेरे घर आई एक नन्ही परी बहुत अच्छा गाना चल रहा है रेडियो रिमझिम में। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि ये लिख रहे हैं दिलीप भैया को बहुत बहुत बधाई और नन्ही परी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी, और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं हेलो, और बस हेलो लिख के भेजे हुए हैं। और आप बता दीजिए मुझे आप कौन हैं और कहाँ से हैं ताकि मुझे पता चले, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मेरे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं मोहम्मद इरफान जी की, ना बचाओ दिल में किसी की यादों को इस कदर कि बिछड़ने के बाद जीना दुश्वार हो जाए। वो तो चले जाते हैं अपनी दुनिया में हंसकर और इंसान अपनी ही तन्हाई में बीमार हो जाए। और लिख रहे हैं कि बगैर तेरे कहाँ गुजरती है सुकून ये, बगैर तेरे कहाँ गुजरती है सुकून से ये तन्हाई वाली रातें, या यकीन ना हो तो आकर मेरे तकिए से ज़रा पूछ लो। क्या बात है, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और लिख रहे हैं कि तमन्नाएं इसको तो हम भी रखते हैं, किसी के दिल में हम भी धड़कते हैं, ना जाने हमें वो कब मिलेंगे शिद्दत से जिसके लिए हम रोज़ इतना गर्मी में तड़पते हैं। क्या बात है, और कोई गर्मी में तड़पने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ैन या आपके पास एसी जो भी हो चला लीजिए, और ऐसे तड़पने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा है लिख रहे हैं हेलो मैम मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए, और सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास दिलीप कुमार ठाकुर जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद भारती मैम गाना बजाने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम जी, आपको भी मेरा प्रणाम। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि भारती जी क्या हाल है जी आपका, और मैसेज करने वाले हैं विकास गुप्ता जी, और लिख रहे हैं कि शायरी है लोग मिल जाते हैं कहानी बनकर, दिल में बस जाते हैं निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपनी आँखों में क्यों निकल जाते हैं वो पानी बनकर। और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं विकास गुप्ता जी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम जी, मैं नूर आलम जीरादाई से सिवान से जुड़ा हुआ हूँ, फरमाइश के साथ गीत का लिंक भेज दिया हूँ, मैडम जी प्ले कर दीजिएगा। और गीत सबसे पहले आपको और सभी सुन रहे दोस्तों को डेडिकेट है और मैडम जी। और लिख रहे हैं कि अर्ज़ किया है कि टूटा हुआ आईना किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या, और ये तो तुम सुन रहे हो इतने गौर से मेरी शायरी, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। और क्या बात है, आज काफ़ी खूबसूरत लाइन हमारे पास पहुँचे हुए हैं सभी की तरफ से। और लिख रहे हैं मैडम जी क्या मेरा मैसेज इधर नहीं जाता है क्या, तो जी बिल्कुल आपका भी मैसेज यहाँ पहुँचा हुआ है। और इनकी तरफ से जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, गाने की बोल है छम छम नाचूंगी, और मूवी है दिल परदेसी हो गया, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारी स्टूडियो के घड़ी में 12:54 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नूर आलम जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी मेरा गीत प्ले करने के लिए। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है नूर आलम जी की तरफ से लिख रहे हैं कि थोड़ा सा हक तुम पे जताने को दिल करता है, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने को दिल करता है, ये जो मीठी उलझन है तुम्हें सोचने में बस इसी उलझन में उलझ जाने को दिल करता है। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है नूर आलम जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहा है नमस्ते भारती जी, राजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मैम नमस्कार प्रणाम, हम भी नवादा संग्रामपुर से बोल रहे हैं और हमारा नाम मिथिलेश

पर लिख रहे हैं कि मिथिलेश चौहान, और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा और गाने की लिंक पहुँची हुई, और हमारे दोस्त लोग भी जुड़े हुए हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। और उससे पहले जो कि हमारे पास काफ़ी सारी फरमाइश पहुंची हुई है, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं 24 अगस्त को हुआ था, सभी दोस्तों को धन्यवाद बधाई देने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ लिख रहे भारती जी, मेरा भी सॉन्ग है प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, लिख रहे हैं कपड़ों बालों की तरह अगर औलाद के बदले भी बर्तन मिलते तो यकीन कर लो मेरे दोस्त, घर वाले हमारे बदले बर्तन ले लेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे 9 लाख मंगा दे रे सैया दीवाने शराबी मूवी का गीत चला दो मैडम जी। और बसंत कुमार ठाकुर न्याय पारा विरई से जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूं मैंने आपके गाने को प्ले किया था, इसीलिए मैं प्ले फिर से नहीं करूंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बस मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और उससे पहले जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हम हूँ अबे आओ तनी और गुड आफ्टरनून मैम केम छो, तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं पंकज जी, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी की आप जो लाइन पढ़ते हैं नंबर 1 फीलिंग जो आता है ना सीधे दिल पे वार करता है, जी मैम बहुत ही खूबसूरत अंदाज है, और लिख रहे हैं लाइन में भरपूर एनर्जी डाल देते हैं। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहा है कि शशि लाल यादव का गाना है और सुनना है, डेडिकेट है प्रमुख जी को, और दिलीप भैया और अनिल जी की तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई, और गाने की बोल है जा रे सुगना जा रे सुगना। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग अनिल जी की तरफ से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया है जो कि लिख रहे हैं थैंक्स, और लिख रहे हैं कभी प्रमुख भाई किसी के लिए। इस गीत को सुने थे, अब वो नज़र नाराज़ है उनसे, इसीलिए ये सॉन्ग डेडिकेट था। अगर सुन रहे हैं तो मैं मान जाइए और प्रमुख भाई से बात कर लीजिए प्लीज़। और यहाँ पे हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है पंकज जी की तरफ से, और लिख रहे हैं ऐसन सुगना हमरो चाहे कहाँ मिली, और ये अनिल जी बताएंगे क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये गाना प्रमुख जी को डेडिकेट था। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है दिलीप राम जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत नहीं तो रोते क्यों हो, तन्हाई में मेरे बारे में सोचते क्यों हो, अगर मंजिल जुदाई है तो जाने दो मुझे, लौट के कब आओगे पूछते क्यों हो। भारती जी नमस्कार, और जा जा ये सुगना चुमा लिया गाल में, शुक्रिया शामिल करने के लिए, कॉल नहीं चल रहा है दिलीप राम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अभी कॉल इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि रिचार्ज नहीं था, अभी सर से बोल के उसको रिचार्ज कराई हूँ, अब कॉल ले लूँगी, और कॉल आ भी रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास कॉल पहुँचा हुआ है, तो चलिए जो कि अब कट भी गया। और यहाँ दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं तेरी जुदाई भी हमें प्यार करती है, तेरी याद बहुत बेकरार करती है, वह दिन जो तेरे साथ गुजारे थे नजरें तलाश उनको बार बार करती हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा लाइन है। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से भी फरमाइश पहुँच चुकी है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते, और राधे राधे।
0: राधे राधे, तो रानी जी कैसी हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, और कल के मेरी उधार की नो।
0: आपकी तो कॉल आधे पर से कट गई और मैं इंतजार करते रह गई, कॉल आपकी आई नहीं।
1: और हुआ था ना, और चलिए हमरा से एक काम करिए, हमरा से भोजपुरी में बात करी, और ज्यादा हम हिंदी में बात ना कर पाए।
0: कोनो बात ना, बोली ना ना ना बोली भोजपुरी, हम भोजपुरी बोल सकते नहीं।
1: जी जी बताए, सबसे पहले रुआ कैसन बानी?
0: हम तो ठीक बानी, रुआ बताई लो, रुआ सब ठीक बानी?
1: जी जी पूछिए अल्लाह नहीं, की एकदम बुखार सर्दी खांसी के साथ जबरदस्त बानी, और मैं बड़ा नीक लागत है सर्दिया के साथ।
0: अच्छा दवा ले तनी की ना?
1: दवा तो नहीं है, खाई दीसो तो सही रहला है, सही में ठीक हो जाए।
0: ना ना थोड़ा बहुत दवा ले ली हल करी, कैस की सर्दी खांसी और बुखार आजकल मजाक नहीं खेली हल जा सकत।
1: सच मानी तो घर घर के लोग के एकदम पटर परल पूरी में करे के रखे ये कहा जाला।
0: और ये तो मतलब वायरल होवे, सब एक आदमी के होई तो सबके हुके हो जाए।
1: जी जी, और घर में जैसे पूरी बिस्तरा नियत पटा गल बस तभी कोई।
0: अच्छा जी, ना ना तो दवाई से जल्दी से इलाज करके सब क्योंकि बुखार सर्दी खांसी के भगावल जाओ।
1: बाकी सब कोई ठीक बा, बाकी बस दो आदमी भतीजा के थोड़ा सा ज्यादा बा, और कल के बाद सिखा शिकायत के बाद तब देखी कहा हुए जाए कि रुए गोपालगंज, और नेटवर्क भी भाग हुए, और साथ में हमारे के दो आदमी नमस्ते भी बोल दे रहे, हम सारी सोच सुन के भी, और कही हम गोपालगंज जस्ट टिकले वाला रही, चले कॉल भी कट गए, दोहरावनी लागत ना रहोगे तुम, कहीं अब टाटा भाई बोल के हम ये चला जाता।
0: अच्छा, तो वैसे नमस्ते कहले रही उत्तम जी और दिलीप राम जी,
1: और मुकेश जी भी कहले रहे, सब कोई के सुनते हुए, और भवे ऐसे जो मोबाइल ना रहे कि हम कुछ रुवालों के जवाब वाब दी, और बाकी जाए के रुवे गोपालगंज, बाकी आज सभी कोई के रानी की तरफ से नमस्ते प्रणाम आदाब और राधे राधे हमरा तरफ से रानी की तरफ से। कल के उधार वाला आज पूरा कर देनी है, और आज हम बहुत लकी बनी आज भी हमारे कॉल लग गई।
0: जी तो कल आधा पर से कट गए, गाना ना बजा पाऊ तो कहीं आज उठा लिखल जाओ।
1: बाकी एक बात तयबा और कल बाकी सा जे सबर के फल बड़ा मीठा होला और जन्म गाना सुने के सवेरे से सोचत रही फाइनली हमारा बात जो कॉल कटवे वो कॉल आके पूरा हो गए तो हमारे दोनों आदमी कल भी थोड़ा सा जो खासियत रहे तो पूरा हो गए वही से थोड़ा सा सुकून मिल गए। और बताई
0: नाश्ता तो करिए की आयल बनी
1: बाकी आज के जोन मौसम बोले ला ना हमारा मौसम पूरा जबरदस्त बाजी काल के बारिश के असर आज थोड़ा सा कहले बा ढाका भर भर के
0: मौसम आज के बहुत बढ़िया भइल बा एकदम
1: बड़ा जबरदस्त मौसम भइल बा।
0: आज बता दी कौन सा गाना सुने।
1: गाना तो सुने के परवे करी और काफी लाइन तो बड़ा मारधार लेक्शन से भरपूर चला था रेडियो पर। अब पता ना सन्यासी बाबा जी बानी न हुआ कि नाम में जो अनुवाद लागल बानो सन्यासी बाबा ना ही लागे रही तो अच्छा रही सूट ना करेला थोड़ा सा
0: अच्छा।
2: The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है।
0: जी बोलिए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: गाना
0: गाना
1: सुना दी भोजपुरी
0: गाना के बोल बता दी
1: बता देता नहीं ऐसे में तो बात करे से पहले इतना हल चल रही बा तो गाना सुना दी। अंगुरी पर गिन गिन गिन के इंतजार कर ही ले हम पवन सिंह जी की आवाज में ही गाना बा हम का बताई तो कितना प्यार कर
0: कौन सिंह की आवाज में।
1: जी जी उमे की आवाज में ही गाना वा
0: और गाना क्यों के सुना हूं के बा।
1: जी जी और नाम ना लेम ना तो बड़ा रिप्लाई पीठ पीछे आई बाकी सब कोई के सवारे और खास करके रहुआ ये गाना के ज्यादा हकदार बानी समर ले रहे
0: तो चलो
1: जी
0: तो गाना प्ले कर दी।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्ले करे
0: तो गाना प्ले करते नहीं एंजॉय करे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।
1: जी बाय
0: बाय।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: प्रसाद क्लिनिक,
6: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
5: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और अभी बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हम सभी सुन रहे थे रानी जी की तरफ से, और गाने की बोल थी अंगली पर दिन गिन गिन के इंतजार करी ले, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग चल रहा था। और यहाँ पे प्रिंस चौहान जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग उंगली पर दिन गिन गिन के इंतजार करी ले। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी प्रिंस जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि इरफान जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं लाख शिकायत हो तुमसे ए दोस्त, पर तुम ही दिल को भाती हो, दिल को खुशी तब मिलती है जब तुम समय से रेडियो पर आ जाती हो, और लिख रहे हैं कि छू जाती हो तो

और लिख रहे हैं, छू जाती हो कितनी दफा यूं ही तुम ख्वाब बनकर, कौन कहता है कि दूर रहकर आपसे मुलाकात नहीं होती। और लिख रहे हैं कि हम तो मोहब्बत के नाम से बहुत अनजान थे भारती जी, एक शख्स की चाहत ने रेडियो पर मुझे दीवाना बना दिया। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि रियली आज का शो काफ़ी लाजवाब चल रहा है भारती जी, जिसकी जितनी तारीफ़ करे कम है, और तो और आपकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, कौन सा चक्की का आटा खाती हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो छोड़िए, रहने दीजिए। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपके लिए भारती जी, इरफान जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आपको भी प्यार भरा नमस्कार रानी मुखर्जी, आप हरखवा कैसी हैं मुझे तो भूल गई होंगी, और बहुत ही झकास सॉन्ग की प्रस्तुति आपके द्वारा, और मैं रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से। और लिख रहे हैं, पता है भारती जी, रानी जी के दुकान में चीनी सस्ता भइल बा, एक बोरा मंगा ली याद से। अच्छा तो ई बात बावे। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं, भारती जी आपसे निवेदन है कि रेडियो रिमझिम में प्यार की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसका दवा छिड़काव करें। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि सबके होते हुए भी तन्हाई मिलती है, यादों में भी गम की परछाई मिलती है, जितनी भी दुआ करते हैं किसी को पाने की उतनी ही ज़्यादा जुदाई मिलती है। और रानी जी दिलीप राम जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और काफ़ी खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, रानी जी नमस्ते जी, कैसी हैं, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है आपका, बहुत पर आपका बहुत ही इंतज़ार होता है। तो रानी जी तो कॉल के माध्यम से जुड़ी थी, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ती तो कुछ बातों का जवाब भी दे पाती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है संजय यादव जी की तरफ से, लिख रहे हैं, अच्छा गाना बा रानी जी। और सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, रानी जी का समाचार बा काबा, बहुत दिन के बाद आवाज़ सुने के मिलल। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, स्वाद कैसा लगा था सर्दी के, और मैसेज करने वाले हैं पंकज जी। और यहाँ पे जो कि मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं, हेलो भारती मैम, कल दोपहर से मैसेज भेज रहा हूँ, और मेरा गाना को नहीं बजाया जा रहा है, आप अगर आपके पास मैसेज पहुंच गया है तो एक गाना बजा दीजिएगा खेसारी लाल का, तो हर दिल हक की चार्जर कति लगा ले लूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गानों को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि कृष्ण मोहन जी जुड़े हुए हैं सिपाया खास से, और इनकी तरफ से जो कि लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुंच तो रही है पर पूरे गाने की फरमाइश नहीं आ रही है। और लिंक के माध्यम से जो कि गाने की फरमाइश पहुंची हुई, और गाने की बोल है, दिल धड़कता है, तो चलिए इनके द्वारा गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दिल धड़कता है, और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि सत्यम जी की आप कैसी हैं और मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और भारती जी यह गाना

जल्दी बजाइएगा। और ये विजय थालापति का सॉन्ग है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो सलामा सलमान अली साउथ बनकटी बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है सरफरोज अली जी की तरफ से, लिख रहे हैं चाय और राय हर जगह अच्छे नहीं मिलते, लेकिन क्या करें, चीनी का दाम बढ़ गया है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी मैडम जी भारती जी गाना हमारे बजा दी, जो गाना के लिंक भेजे हैं हमारे दोस्त लोग भी सुनेंगे। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ हमारे पास, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती मैम, सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से, मैडम हमको भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि वाह सुपर, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार, पप्पू ठाकुर बगई बाजार कटिया गोपालगंज से जुड़े हैं और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं आइए आइए जिनका ससुराल में नहीं है नाम, और घर में भी हो गए हैं बदनाम, वो खाइए मेरा चिनिया बादाम 50 रुपए में 250 ग्राम। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है सन्यासी जी की तरफ से। और इसी के साथ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि मेरा भी सॉन्ग बजा दीजिएगा, और राजू सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं आपकी मर्ज़ी है आप नेक्स्ट बजाए हैं कि नहीं, ये तो आप ही जानती हैं, और हम तो सिर्फ उम्मीद लगा के रख सकते हैं। ओहो नहीं, ऐसी बात नहीं, आपके भी गाने को प्ले करेंगे। और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, पवन सिंह के सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जा जा बद्रा तू चली जा, और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रंजन।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें। संजय

0: गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:36 हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश जी लिख रहे हैं कि अगर आपके पास ईगो है तो आप केवल मुंह फुला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनो है तो आप ढोकला, भटूरे, केक सब फुला सकते हैं, और इसलिए इनो रखिए ईगो नहीं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है इरफान जी की तरफ से, लिख रहे हैं कि भारती जी चिनिया बादाम के खियावत बा, सुन के मुँह में पानी आ गिल बा, कहें इसकी हमार फेवरेट है। और चिनिया बादाम तो सन्यासी रंजन जी खिलाओ तनी सबके हो गया। और यहाँ मैसेज इरफान जी की तरफ से पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू, जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा रेडियो पर महक जाते हैं। और बाय बाय टू ऑल माई फ्रेंड्स, प्यार वाला शुभ दोपहरिया। और आपको भी हमारी तरफ से बाय बाय। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राजू सोनी जी की, थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पंकज भैया को प्रणाम बोल दीजिएगा, और कैसे हैं, सब ठीक है ना पूछ लीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर से। और यहाँ पे हमारे पास गाने की फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँच रही है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: नमस्ते मैम
2: जी। नमस्ते,
3: कैसी
2: हैं? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: हम भी ठीक हैं।
2: नाम बता दीजिएगा अपना।
3: मेरा नाम निशा है।
2: अच्छा जी, निशा।
3: हाँ।
2: और कहाँ से हैं आप?
3: शुक्लवार से।
2: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: ये गाना है ना, खुदा जब बनारस का ही बना।
2: खुदा?
3: ऐ खुदा जब बनारस का ही बना।
2: अच्छा, ऐ खुदा जब बना ही उसका बना।
3: हाँ।
2: और गाना किसी को सुनाना भी है
3: आपको? और जितनी रिमझिम लिस्नर
2: है। ओके, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
3: हाँ जी।
2: तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।
3: थैंक यू।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग निशा जी की तरफ से, और गाने की बोल है उसका ही बना और काफ़ी खूबसूरत गाना है अरिजीत सिंह की आवाज़ में। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी जी की, जेकर फेवरेट मिठाई हवे ओकरा खातिर 100 रुपया में 100 ग्राम मिली। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि जय श्री कृष्ण न्यायपारा विरई से प्रमोद कुमार साहू, और आपको भी जय श्री कृष्ण। और लिख रहे हैं कि गाना सुना दे भारती जी लीला साहू। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की फरमाइश है लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है,

0: और गाने की बोल है हाफड़ी पोड़े। गाना सुना दीजिएगा, तमिल सॉन्ग है और भारती जी यह गाना चली बजाइएगा। विजय थालापति का गाना है, तो मैं तो गाना बजा दूं पर गाना किसी को समझ में आए तो अब। और यहाँ पे इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है वॉइस।
1: मेरा भी गाना बजा दीजिएगा, अपड़ी पोड़ी मूवी का गाना है, गिल्ली मूवी का साउथ का गाना है, अपड़ी पोड़े। आपको टाइम मिलेगा तो ये गाना जरूर बजाइएगा।
0: तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी के अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सत्यम जी, और इनकी तरफ से काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश चल रही थी और गाना तो तमिल में था, तो हम सबको तो गाना समझ में उतना आया नहीं, और लेकिन इसका जो धुन था काफ़ी ही खूबसूरत था। और यहाँ पे उनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है और वॉइस के माध्यम से है।
10: मेरा फेवरेट गाना है, बजा दीजिएगा अपड़ी पोड़े सॉन्ग, तमिल भी है, विजय थलापति का। इसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सुनना है और मजा आएगा सुनने में।
9: तो जी, गाना सुनने में तो मज़ा तो सबको आया, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है इनकी तरफ से, लिख रहा है थैंक यू सो मच, और लिख रहा है क्या मुझे कल गाना सुनने को फिर से मिलेगा क्या। और संजय यदुवंशी का गाना सुनना है और गाने का नाम भी पहुँचा हुआ है। तो मैं बता दूँ आपको कि आज आपने अपना गाना सुना और आपको फिर अगले मंगलवार को ही आपका गाना सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती मैम, सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से। मैडम जी, हमको भी गाना सुनना है तो बहुत बहुत स्वागत है। और लिख रहे हैं जो गाना अभी बज रहा था, म्यूजिक मस्त है और सुन के बहुत मज़ा आया उनको भी, और नाच भी रहे हैं। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मुझे ऐसा दर्द मिला जिसकी दवा नहीं, फिर भी खुश हूँ, मुझे उससे कोई गिला नहीं, और कितने आंसू बहाऊं मैं उसके लिए जिसको खुदा ने मेरे नसीब में लिखा नहीं। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम, दिल्ली से। तो काफ़ी खूबसूरत सा लाइन है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि हाय गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप। और संजय कुमार फ्रॉम कोलकाता से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
11: उठने लगे हौसले तो इतना याद रखना, उठने लगे हौसले इतना याद रखना, बिना मेहनत के सबको ताज हासिल नहीं होती, ढूंढ लेना इस अंधेरे में मंदिर, रोशनी कभी जोनू का मोहताज नहीं होती। नमस्कार।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: कैसी हैं?
9: मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: हम भी अच्छा है, मैं सोचा कि थोड़ा रेडियो रिमझिम में जुड़ जाऊँ, बहुत दिन हो गया।
9: जी जी।
11: और मौसम कैसा है?
9: इधर तो मौसम अभी काफी सुहाना बना हुआ है और काफी अच्छा लग रहा है।
11: दिल्ली में तो धूप है, धरती भी है।
9: नहीं तो बारिश इधर हुआ था कल और आज मौसम अच्छा बना हुआ है।
11: हाँ, मैंने सुना था कल बारिश हुआ, तैयार नहीं थी। और तो आपका पूरा टीम, सब परिवार सब बढ़िया?
9: जी जी, सब कोई बढ़िया।
11: सब बढ़िया रहना चाहिए। और तो सिस्टर हमारे जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। रानी जी जुड़ी थी?
9: हाँ, रानी जी भी आज जुड़ी थी।
11: हाँ, अच्छा लगा। रानी जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी शाम भी है। तो हमको आज तो सुना दीजिए।
9: बता दीजिए।
11: फिल्म का नाम है पहली तारीख, ये आई थी 1954 में। समीर चौधरी का संगीत है, सुरेंद्र का संगीत है, नहीं सुधीर भर का संगीत है। और गाना है, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुद है जमाना पहली तारीख है। और सबलम सिद्दीकी, आयशा, सदीना, नबा, हेना, हजरा, लक्ष्मी कुमारी, समीर आलम, गुलाम हुसैन, दिलीप राम, भावकर, अर्जू, मुकेश, उत्तम सोनी, वीरेंद्र सिंह, उमा शंकर, रानी हरकुआ और जितने लिस्नर साजिद हत्ता बुढ़िया परवीन अहमद अली अंसारी, सबके साथ सुनना चाहता हूँ। और मैं फिर आपसे मिलूंगा कल हेलो माई चॉइस में।
9: ओके जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
11: नमस्कार,
9: एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में ये प्यारा सा सॉन्ग।

है बाबू, वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना। आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाचने का दसाना।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना, जाना, वापस नहीं जाना।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे कमरान जी की तरफ से। दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, और बात बिल्कुल सही है, आज दिन भी सुहाना है और पहली तारीख भी है, और ये गाना बिल्कुल सूट कर रहा है आज के दिन के लिए। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से, लिख रहा है कमरान जी नमस्ते, रेडियो रिमझिम 90.4 में जुड़े इसके लिए ढाका से एक ढाका धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है और बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे। और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है भारती जी नमस्कार, और मुझे गाना सुनना है और खेसारी लाल की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है तो हर दिल हर की चार्जर कते ही लगा ले लूँ, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत था सॉन्ग खेसारी लाल जी की आवाज़ में और गाने की बोल थी तो हर दिल है कि चार्जर कते ही लगा ले लूँ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है अभय पासवान जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं हाय, तो आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ, एक वीक मेरा हो गया है और मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। और हमारे लिख रहे हैं हमारे दिल के भैल व चोरी एजान खेसारी लाल के गाना सुना दें। और जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं और भारती मैम मेरा भी सॉन्ग प्ले कीजिए। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जितेंद्र जी की तरफ से, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे। रेडियो रंजन 90.4 एफ

और यहाँ जितेंद्र जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहा है थैंक यू भारती जी गाना प्ले करने के लिए, बहुत इंतजार करा है और धन्यवाद। तो इंजॉय कीजिए गाने को और इसी के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ। फिर मिलेंगे आपसे दोपहर न्यूज़ के बाद।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9435946651 या 9707-06-575।
5: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: Jharkhand, Odisha and Northeast India till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
3: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान, उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
5: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती हैं। साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले 2 दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
7: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
8: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
12: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
12: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
13: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
11: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
13: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
12: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
14: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
15: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
16: भरोसे वाले से लेंगे,
15: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
16: और कीमत भी।
15: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
17: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
18: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
19: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
20: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
19: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
21: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
19: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक

0: सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटे से ब्रेक और राष्ट्रीय दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782891। जी हाँ, 9852782891। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करते हैं। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सत्यम जी की मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताइए, जैसे एक आज गाना बजा उसके बाद फिर कितने दिनों बाद गाना बजेगा? एक दिन के बाद या दो दिन के बाद इंतज़ार करूँगा? और मैं भारती जी, मैं आपके दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरा गाना बजाएं इसके लिए। और यहाँ पे लिख रहे हैं, बताइएगा ज़रूर। तो जी, आप एक हफ्ते में अपने गाने को एक ही बार सुन सकते हैं, फिर अगली बारी आपकी एक हफ्ते बाद ही आएगी। और यहाँ पे वैसे जुड़ने को तो आप रोज़ जुड़ सकते हैं, पर गाने की फरमाइश जो आप एक हफ्ते बाद ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं,

और धनेश जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं आज पूछना जरूरी है कि किसी से प्यार हुआ है ऐसा गाना बजा कर मार ही डालेंगे भारती जी। ओहो, तो गाना मुझे काफी खूबसूरत लगा इसीलिए बजा देती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे भारती जी, मुझे एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार बस्त्रा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, कल का मेरा गाना नहीं बजा है और मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मुझे भी गाना सुनना है, तो आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले यहाँ काफ़ी देर से और न्यूज़ के पहले से ही हमारे एक श्रोता जी इंतज़ार कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं, सिद्धार्थ पासवान बरौली गोपालगंज से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। और खलनायक मूवी का गाना है और गाने की बोल है, ऐसी तेरी याद आती है, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग ऐसी तेरी याद आती है, और मूवी नेम है खलनायक। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँच चुका है, जो कि लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए थैंक यू। और मैसेज करने वाले हैं सिद्धार्थ पासवान जी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। और मैसेज करने वाले हैं डॉक्टर संतोष जैसल फ्रॉम माँ पूजावंती हॉस्पिटल बस्त्रा राजा लालगंज। मिर्ज़ापुर से, और कोई एक गाना सुना दीजिएगा अच्छा वाला। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अभी तो अभी तक की सारी जो गाने की फरमाइश आई हुई है, काफ़ी अच्छी अच्छी गाने की फरमाइश है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का शो। और आप भी सारे गाने को एंजॉय करें। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास गुरु कृपा जनरल स्टोर के रहने जनरल स्टोर जी की तरफ से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं प्लीज़ दी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश करूँगी। उससे पहले कुछ लोगों की फरमाइश जो मैं न्यूज़ से पहले प्ले नहीं कर पाई थी, उनका थोड़ा प्ले करूँगी, उसके बाद आपका कर दूँगी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि भारती जी आज पता नहीं क्या कहें कि आपकी आवाज़ इतना मीठा, क्या खाए हैं कि आज आपकी आवाज़ इतना मीठा लग रहा है, और इसका कोई जवाब नहीं, इसीलिए मैं लाइन भेज रहा हूँ पढ़ने के लिए। और गाना बजाएं ये ना बजाएं, बाकी आपकी बकैती अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे धनेश जी की तरफ से पहुँचा हुआ मैसेज, लिख रहे हैं कि साधु बच्चा बच्चा तुझे स्वर्ग मिले, या लाओ कुछ दक्षिणा दे जाओ। लड़का, ठीक है दक्षिणा मैं आपको, मैंने दिल्ली दी, आज से दिल्ली आपकी हुई। साधु, दिल्ली क्या तुम्हारी है जो मुझे दे रहे हो? लड़का, तो स्वर्ग क्या तेरे बाप ने खरीदा रखा है जो तू उधर के प्लॉट यहाँ बांट रहा है? और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुँची हुई है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँची हुई है सलमान अली, जो कि साउथ बैंक बनकटी बैकुंठपुर गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि मुझे सैड सॉन्ग भोजपुरी में सुनना है। ओके, तो आपके लिए सैड सॉन्ग भोजपुरी में प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो कि गाना है जाए चंदा ले आवा खबरिया कैसन बाढ़ी मोर जान है। तो चलिए आप सभी के लिए प्यारा सा रितेश पांडे की आवाज़ में गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सलमान अली जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि डॉक्टर संतोष जैसल लिख रहे हैं थैंक यू सो मच भारती मैम गाना प्ले किए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि हम विष्णु कुमार बीके फास्ट फूड, मशीन खास जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, और हमके गाना सुने के बाद और लिंक भेज दिले बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और जो कि यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं हेलो मैम राधे राधे पाजी यूपी चौवन से जुड़े हुए हैं, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं मेरा एक हफ्ता पूरा हो गया है गाना बजाएंगी, तो जी नहीं आपका एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, कल ही आपके गाने की मैंने फरमाइश पूरी की थी, और इंतज़ार करें अगले हफ्ते फिर आपके गाने को पूरा किया जाएगा। और इनकी तरफ से कुछ लाइन पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि आती है नींद मगर हम सो नहीं सकते, जिम्मेदारियां बहुत हैं किसी के हो नहीं सकते, दुखों का तो पूरा समंदर है पर हम लड़के हैं हम रो नहीं सकते। और काफ़ी खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है पाजी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं नमस्ते हम रवि कुमार तिवारी दिल्ली से, हमारा भी फरमाइश है बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने की फरमाइश गुरुवार को पूरा की जाएगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहा है कि बहुत अच्छा गाना था, बहुत बढ़िया गाना था, इसके लिए धन्यवाद और नमस्कार, और मेरा भी गाना बजा दीजिएगा जो कि लिंक भेजा हुआ हूँ। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, और लिख रहे हैं आपके बीच आ गए हैं फिर से, और लिख रहे हैं बदल गई है वो बिखर गया हूँ मैं, आके देख कितना बिगड़ गया हूँ मैं। और लिख रहे हैं कि सुना है मरने के बाद कदर होती है इंसान की, यारो अफवाह फैला दो मर गया हूँ मैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्कार भारती मैम, अखिलेश महतो इजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से जुड़े हुए हैं, और मेरे गाने की जो पूर्वी का फरमाइश मैं बहुत दिनों से किया था, मैसेज तो शामिल हुआ लेकिन मैं गाना नहीं सुन पाया और गाना आपने बजाया नहीं, तो प्लीज़ गाना आज बजा दीजिएगा नमस्कार भारती मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी तरफ से एक पूर्वी गाना प्ले करती हूँ, और गाने की बोल है जिकर अचके में दिलवा टूट गई, तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे अखिलेश जी की तरफ से काफ़ी खूबसूरत सा पूर्वी, और गाने की बोल थी जेकर अचके में दिलवार टूट गई, और कल्पना पटवारी की आवाज़ में गाना था और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग था। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर संघर्ष फिल्म गाना बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अभी महाराज से आपको, मैं अभी पुणे महाराष्ट्र से आपको सुन रहा हूँ, और थैंक यू, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज अखिलेश जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं लाजवाब गाना, भाई अखिलेश भाई कैसे हैं आप, और हम श्याम सुंदर। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं फीडबैक है भारती मैम चला दीजिएगा, तो चलिए आपके फीडबैक को मैसेज को शामिल करते हैं।
1: भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे और साथ में जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है, और साथ में हमारे पंकज दादा भी जुड़े हैं तो उनको भी हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। अभी अभी एक गाना चल रहा था, बहुत अच्छा लगा, और गाना का कुछ बोल था इस तरह से, अरे कब करवे में हमरा रहत रहली, कब करवे में हमरा रहत रहली, क्षण भर जुदाई ना सहत रहली, अब त हमार बिना देखल सुरतिया होई जात कैसे बिहान हो, जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोरी जान हो। और इसी में एक लाइन है जो हमारे पंकज सर के लिए मैं गाऊंगा, तो वो लाइन है,
2: अरे जैसे चकोर बिना तू ही अकेला।
1: तो पंकज दादा यदि आप सुन रहे हैं तो सुनिएगा, ये बड़े गौर से आपके लिए है ये लाइन,
2: अरे जैसे चकोर बिना तू ही अकेला, वैसे पंकज के जिंदगिया कटेला।
1: पंकज दादा रउआ के दिल दुखावल नहीं चाहत रहनी है, लेकिन का बताई, अब दुखावे के तो पड़ जाला ना। तो भारती मैम हमारे पंकज सर जो है ना, मतलब कि बड़े वैसे वाले कुंवारे हैं, मतलब कि ये ऐसा कुंवारा हैं, ऐसा कुंवारा हैं कि हम बता नहीं सकता हूँ हमारे पंकज सर के लिए। और भारती मैम हमारे पंकज सर एक दिन बोल रहे थे कि पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें सपने में राजकुमारी आती है, और मेरे सपने में तो कभी मैं गिर जाता हूँ, कभी भूतनी आके उठा ले जाती है, कभी भूत उठा के ले जाता है। तो हमारे पंकज सर के बड़े दुख हैं, भारती मैम क्या बताऊँ, उनका दुख तो कटता नहीं है। पंकज दादा आपको कहूँगा कि आप ही बोल रहे थे न कि वो कहेगी, मैं मतलब कि वो कहेगी मैं बाकी लड़कियों की जैसे नहीं हूँ, मतलब कि आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो सब की अम्मा है पंकज दादा, वो सब की अम्मा है। तो आप लोग भी समझ जाइए। हम जाते जाते कुछ कहूँगा कि बड़ा धर्म संकट में आया है मित्रों, मैं जो है ना बड़ा धर्म संकट में आया हूँ मित्रों, पड़ोसन कल बोली तुम चश्मे में अच्छे नहीं दिखते हो, और मुझे चश्मे के बिना पड़ोसन नहीं दिखती है, तो आप ही लोग बताइए मैं क्या करूं, धर्म मतलब कि धर्म संकट में पड़ा हूं, तो आप लोग जरूर से बताइए, नमस्कार।
0: और काफ़ी प्यारी फीडबैक मैसेज पहुंची हुई है राम कुमार पांडे जो कि लंदन से जुड़े हुए हैं, और यहां पे जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हैं, और गाना सुनना चाहते हैं पवन सिंह की आवाज़ में, और गाने की बोल है हमरो उम्र लग जाए, और काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैसेज आप पहुँचा हुआ है, और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है धनेश जी की तरफ से, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी लिखा है। ना जाने क्यों वो हमसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, ना जाने क्यों वो हमसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, अंदर के सारे गम छुपा कर मिलते हैं। वो जानते हैं शायद नजरें सच बोलती है, वो जानते हैं शायद नजरें सच बोलती है, इसलिए वो हमसे नजरें झुका कर बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जोहर जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है, भारती जी मैं प्रमोद कुमार साहू, लीला साहू, खिलेश्वरी साहू, विमलेश्वर साहू, कल गाना सुनाने को कहा था लेकिन अपना गाना आज नहीं सुनाया है। तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, फिल्म का नाम दो कलिया, प्लीज सुना दीजिए। तो बिल्कुल

0: और यहाँ पे अगला मैसेज है जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे। भारती जी मुझे एक सॉन्ग सुना दीजिए, टिप टिप बरसा पानी। हमारे यहाँ पानी बहुत बरस रहा है, इसीलिए सॉन्ग सुनाने का मन हो गया। सुजीत कुमार, बसरा राजा। सुजीत कुमार, बसरा राजा, लालगंज, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। तो चलिए आपके गाने बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग को एंजॉय करते हैं।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी टिप टिप बरसा पानी। और इसी के साथ यहाँ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मनोरमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग बजाने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी,

0: और बरौली इसी से ही गोपालगंज से जुड़े हुए हैं। और यहाँ गाने की जो बोल पहुँची हुई है, अंगुरी पे गिन गिन के इंतज़ार करेंगे, मुझे यह गाना सुना दीजिएगा। और ये गाना तो मैं कुछ ही देर पहले बजाई हुई थी और इसलिए मैं अभी ये गाना प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि कोई भी गीत में शामिल कर लेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। हम भी रेडियो रिमझिम से जुड़ गए हैं और रिमझिम के सारे स्टाफ को रक्षाबंधन की किशोर सबलनिया परिवार की तरफ से लाख लाख बधाई हो जी। और लिख रहे हैं गुरु नानक पूरा बठिंडा पंजाब से किशोर सबलानिया और सावित्री सबलानिया और सुमन सबलानिया बेटी अंशु के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास पंकज जी की तरफ से और लिख रहे हैं कि हमू बानी अबे आवतानी गुड आफ्टरनून मैम किम छो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं सीट खाली बा मैम, तो जी बिल्कुल आपके लिए सीट खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: भारती जी नमस्कार, मैं राकेश कुमार मक्कड़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। और क्या हम भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं किसी गाने की आपके शो में, जरा बताइए हमें। कर सकते हैं तो बताइए हमें, हम कर देते हैं, तो सुनवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू। नौरमा जी नमस्कार, मैं राकेश कुमार मक्कड़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। और आपने मेरे जो है उस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या हम भी फरमाइश कर सकते हैं, आप गाना सुनाएंगी? हाँ बताएं, अगर सुना सकती हैं तो थैंक यू, धन्यवाद।
0: तो जी बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी और अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है,

और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, हाय गुड इवनिंग मैम, हम टुनटुन यादव, विलेज पठरापट्टी पठानपट्टी पोस्ट पठरा, जिला गोपालगंज, बिहार से बानी, हमके गाना सुने बा, और गाने की बोल पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं, बहुत दूर जाने को दिल चाहता है। और चलिए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं संजय यादव, जो कि दुबई से जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है शमशाद अली, जो कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं, और लिख रहे हैं आपके बीच आ गए हैं फिर से एक शाम जो आती है तेरी याद लेकर, वह अपने साथ गहरा अंधेरा लाती है। लोग पूछते हैं मेरी खामोशी का सबब और मुझे तेरी बेरुखी याद आती है। और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ फिर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से। और भारती जी कब गाना बाजी ज़रूर बताएं। और सानिया सैफी जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं गाना सुना दीजिए और प्लीज़ मैम। और हमारे बीच जुड़ चुके हैं प्रमुख जी और लिख रहे हैं गुड इवनिंग प्यारी उद्घोषक महोदय जी, नमस्कार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो जी, वो ज़रूर गए हैं, हम भी जुड़ गए हैं, अरशद लुधियाना पंजाब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और लिख रहे हैं मुझे गाना सुनना है, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: मनोरमा जी, हमें गाना सुनना है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, ये फिल्म का गाना हमें सुनवा दीजिए प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी, थैंक यू।

रानी की फरमाइश थी और हम लोग काफ़ी प्यारा गाना सुन रहे थे गुरु कृपा जी की तरफ से। और यहाँ पे जो कि हमारे पास सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारती जी आज बहुत दुख के साथ आपको बाय बोल रहा हूँ। तो धनेश जी बता दीजिए ऐसा क्यों है कि बड़ी दुख के साथ बाय बोलना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पंकज जी मुझे भी एक गाना सुनना है और काफ़ी खूबसूरत गाने की इनकी तरफ से फरमाइश पहुंची हुई है। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:58 हो चुका है और शो समाप्त करने का वक्त हो गया है। तो इसी के साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277166696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं आप सभी से विदा लूँगी इस गाने को प्ले करते हुए। और गाने की बोल है जिंदगी और पवन सिंह और रेणुका पनवार की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तो गाने को एंजॉय करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी एंजॉय करते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग पंकज जी की तरफ से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
7: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452121100।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: देखी जब हमनी के माता के गर्भ में रही ले जा, तो भगवान से यह प्रार्थना करेल आदमी कि हे भगवान, एह नरक कुंड से हमरा के बाहर करी। अब हम जब बाहर आए तेरा और नाम गुन गायब, और यहाँ आके हमनी के भुला जतनी जा एह माया में। यही पर कवि विश्वनाथ राजपुरी जी के ई रचना बा, देखी वहाँ क्या कहतनी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: माइंड जो बुची फायदा में रहबे।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
4: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल से
5: 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ, कारवां मोबाइल।

0: सारा प्यार तो नसीबे से मिलेला।
1: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से। 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन, धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: Now pick your phone up.
7: Hello?
6: Pick it up, pick it up.
7: Hello?
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रूम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते।
1: कौन? भारती मैम।
2: जी।
1: अच्छा, कैसे हैं मैम?
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी।
2: क्या हो रहा है जी?
1: अभी पहचाने नहीं है क्या? लग रहा है
2: आपका आवाज ऐसे चेंज हो जाता है हमेशा, क्यों?
1: आवाज कैसे चेंज हो जाता है? ये तो घर पर आ गए है ना, यहाँ का पानी, यहाँ का पानी खा रहा है ना।
2: हाँ हाँ, इसीलिए ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है।
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमतापुर।
2: आपकी हंसी पहचान गए
1: और बताइए मैम।
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तब रक्षाबंधन कैसे मना?
1: रक्षाबंधन सही से मना, एकदम साड़ी ओड़ी भी दिए और ऊपर से उन लोग का 2-2 किलो चीनी भी दिए और 250-250 रुपया भी दिए। बताइए घर आने के बाद कितना कितना नुकसान हुआ?
2: नुकसान क्या हुआ? अपनी बहन और क्या,
1: मैं बड़ी वाली बहन से बोले कि भाई देखो और कुछ नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, बताओ क्या चाहिए बताओ। तो बड़ी बहन बोली कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस 5 किलो चीनी दिया दो।
2: अच्छा।
1: हम बोले 5 किलो चीनी का दाम जानते हो कितना हो गया? 80 रुपया किलो के हिसाब से, वही 300-400 के आसपास हो गया। तो हंसने लगी दीदी मेरी, वो बहन बड़ी वाली, बोली कि नहीं आप लोग का प्यार है बहुत है, ये मम्मी पापा को आप लोग बस ध्यान रखिए, उतना ही बहुत है, हम लोग का पैसा उसका कुछ नहीं चाहिए।
2: तो आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी, हाथ उठ भी थोड़ा सही हो गया है, सारा करवाया है जा करके सरकारी अस्पताल में।
2: वही तो पूछ रहे हैं, मतलब अब ठीक है ना? कुछ निकला तो नहीं ना?
1: नहीं कुछ निकला नहीं है, खून जम गया था ना, खून जमा हुआ है, वही दर्द करता है।
2: तो हॉस्पिटल से दिखा लीजिएगा ताकि खून वो जो जमा है वो थोड़ा ये हो जाए।
1: नहीं दवा ववा दिया है, दवा ववा मलहम मलहम दिया है, बोल रहा है कि गर्म पानी से इसको धोया करो और गर्म पानी नमक से उसको डाल करके, और बाकी दवाई वाई मलहम मलहम दिया है। हाँ दवाई भी खा रहे हैं, दवाई भी 4-5 दिन का दिया है। हाँ नहीं तो हम अभी तक चले गए होते, अजीब से बात कर लो वो कार्टून देखता है खूब मोबाइल में, वो नहीं बात करेगा, बहुत बदमाश है गुंडा।
2: अच्छा
1: बाबू नहीं बात करेगा,
2: थोड़ा बहुत बदमाश होना चाहिए।
1: हाँ इसका मौसी बोलती है कि इसका पापा कैसा है तो वो लड़का नहीं रहेगा उसका। हाँ ये अपना घर गया था ना अपने मामा के घर।
2: हाँ
1: इसका 2-3 मौसी है, बहुत बहुत मजाक वजाक में।
2: हाँ तो उन लोगों का हक है।
1: हाँ और मौसम आज तो मौसम बहुत सुहाना है ना मैडम?
2: जी जी मौसम तो सुहाना बना हुआ है।
1: हाँ 28 तारीख को मैडम हम लोग मेला गए थे वहाँ महावीर यहाँ खड़ा। आज गाना हमको सुनवाइएगा, मेरे महबूब का वादा निभाना होगा, यही गाना।
2: पुराना सॉन्ग है?
1: पुराना नहीं है, नए सॉन्ग है।
2: हाँ।
1: इसमें में मेरे वादा निभाना होगा, ये गाना सबसे पहले आपको सुनवाना है, जितना रेडी रेमजन सुनने वाले हैं सबको। गाना मैंने जो हम बताए वही गाना बजाइएगा ना, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कौन सा गाना है।
2: ध्यान में आ गया है?
1: आ गया है ध्यान में। तो थोड़ा गाइएगा एक दो कड़ी।
2: एक दो कड़ी गाए?
1: हाँ गाइएगा।
2: ऐसे मेरे महबूब जो वादा निभाना होगा।
1: हाँ ऐसा ही है, यही है सेम,
2: चाहे रोके ये जमाना।
1: हाँ यही है, यही। हाँ हाँ राइट राइट राइट, गाना एकदम मस्त है एकदम।
2: गाना तो मस्त है।
1: हाँ हमको हिंदी गाना से भोजपुरी गाना नहीं उतना वो नहीं लगता। भोजपुरी हम गाना सुनते हैं वही खेसारी लाल का, वो थोड़ा उसका बेवफाई सॉन्ग सुन लेते हैं।
2: भोजपुरी में भी होते हैं कुछ गाने जो अच्छे हैं, अच्छा लगता है कोई कोई।
1: पवन सिंह का हो गया, खेसारी लाल का हो गया वो सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। और तो मोनार्मा सिस्टर आप ये सब कैसे है इन लोग?
2: ये सभी ठीक है।
1: अच्छा, और सब अलग अलग उन लोग का ड्यूटी दिया गया है ना? चलिए बढ़िया है, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपसे बुध के दिन बात करने वाले थे हम, बुध के दिन हम ट्रेन में थे, दीवान में उतरे हम 11:30 बजे उतारा हमको लिया कर 11:30-12 बजे करीब। अब वहाँ बारिश सीखना न होने लगा कि उठने का नाम नहीं ले रहा था मैडम। फिर वहाँ से लोकल पकड़ के थावे आ गया। थावे आ करके भाई का वहाँ से थावे से बुलाया, बोला कि आ जाओ थावे आ गए स्टेशन में।
2: चलिए फिर ठीक है, आज बहुत सारी बातें हो गई, अभी और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं।
1: ठीक है ठीक है, ओके मैम।
2: गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ठीक है, नमस्ते मैम।
2: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत है आपका रेडियो 92.4
1: जी रमजान
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाँ बढ़िया है, आपको सुनाइए। बारिश हो रहा है यार बनारस में? हो रहा है
0: नहीं, इधर तो नहीं हो रहा, इधर तो ऐसे मौसम बना हुआ है।
1: सॉन्ग सुनवा लीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा?
1: अजय मूवी का, सनी देओल का मूवी अजय।
0: जी गाने की बोल बता दे।
1: उसमें गाना है पान खा के जाना गोरिये, पान खा के जाने, यही बोला
0: जी। और गाना किसी को सुनाना कुछ है
1: जी? आप सभी को और जितने सेवना सभी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे।
0: ओके तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 92.4 FM।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो मैडम, नमस्कार।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
8: जी, मैं मन्नान बोल रहा हूँ। आज मैडम हमको कोई गाना ऐसा सुनाइए जिसमें प्यार शब्द न हो।
9: प्यार शब्द ना हो?
8: ना हो।
9: क्यों, क्या हो गया है?
8: हर गाने में प्यार प्यार प्यार प्यार ये सुन सुन के हम आजीज हो गए हैं। कोई ऐसा गाना सुनाइए कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, हिंदी गाने में न।
9: ऐसा कोई गाना आपके ख्याल में है?
8: हमारे ख्याल में होता तो आपसे थोड़ी पूछे हो। आज वही दिल में जब बैठा कर रखे हैं कि आज मैडम तक कहेंगे कि ऐसा गाना सुनाइए हमको कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, जैसे हवा, पानी, आग है ना, और जैसे लाइट, अंधेरा, ये सब है, का नाम आ जाए लेकिन प्यार का नाम ना आए, ऐसा है क्या ना मैडम?
9: हाँ है ना, पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं।
8: भौरे गुनगुनाते हैं, ये तो याद ही, इसे भी थोड़ा नया में तो कोई नया हिस्से में है जो क्रियाशब नहीं हो वो सुना दीजिए, ताकि सबको आजकल नए नए गाना लोग सुनता है। ये तो गाना बहुत पुराना है ना?
9: गाना है पर मतलब इसमें नेचर से रिलेटेड शब्द है लेकिन प्यार शब्द नहीं है, मतलब नेचर से ही रिलेटेड है ये।
8: मैडम ऐसा है कि आपको सब ये गाना सुनते सुनाते या इसमें जो है रिवाइंडिंग होते होते आपका दिमाग एकदम पूरा गाना पे सेट कर गया है ना? जो जिस रास्ते में रहता है ना तो उसका गाना और उसका दिमाग जो है उसी पर खुल जाता है। बिल्कुल सही है, तो सुनाइए मैडम वही कोई गाना, हम अपने तरफ तो नहीं कहेंगे, आप ही सुनाइए जैसे प्यार सब न हो। और आप कैसी हैं मैडम आजकल? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी 100% नहीं, 80% है ना? चलिए 80% पर वाला चाह, भगवान चाह तो वो भी 20% पूरा हो जाएगा है ना, लेकिन समय का इंतजार होना चाहिए है ना, जो सब्र करके रहता है ना उसी को फल मीठा होता है।
9: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजीत 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: भारती जी।
1: हाँ
0: जी, हम इशाद मास्टर ग्राम धनाव से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: खूब बढ़िया, अपना बताएं।
1: मेरा भी ठीक है।
0: ठीक है, बारिश हो रहा है?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बढ़िया है।
0: अरे उधर नेपाल वाला बाढ़ आपकी तरफ भी आया है?
1: नहीं नहीं आया है, मतलब वो जैसे जो गंडक नदी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, उसमें पानी, अभी बाढ़ का समस्या तो नहीं आया है उतना, उसके आसपास तो में थोड़ा सा आया है।
0: किशनगंज ने बता रहा है।
1: उसके बस आसपास
0: है, रक्षाबंधन तो बीत गया ना?
1: जी रक्षाबंधन बीत गया।
0: तो गाना सुना दीजिए।
1: जी बता दीजिए।
0: प्रिया मूवी का है। मैंने तुझे से प्यार किया है, इसमें मेरा खता नहीं। और सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ, और जितने रेडियो रंजी में सुनने वाले सभी दोस्तों को, और हम लोग सुनेंगे धनाव से रोशन किरण में।
1: आप तो इतना अच्छा गाते हैं, फिर भी थोड़ा सा गा के सुनाते हैं।
0: अरे थोड़ा सा, अरे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ा कल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था।
1: अच्छा, हाँ मौसम बदल रहा है तो तबीयत थोड़ा बहुत इधर
0: चले गए थे, धूप में खेत में दवा छिटने था, थोड़ा छिटवाना था। अब हम ही अपने छिटने लगे, बहुत धूप, गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत गर्मी लग रहा था। 24 घंटा पंखा ही में रहते हैं।
1: ये तो है।
0: चलिए तो फिर यार बहुत चोट चलेगा ना?
1: हाँ देखिए।
0: चलिए ठीक है।
1: गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: जी जी बताए ना, जितने में सभी को, आपको भी और हम लोग चुनाव से रोशन चिल्वर में सुनेंगे सब लोग।
1: अच्छा जी जी जी, बिल्कुल। तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम
7: 90.4 FM में। मैं तबियत कैसा है?
8: ठीक है,
7: तो कहने की आज हमारे लोग ने करी कोई अपना बार कॉके छोड़ दे मिल रही हो कहने तो 12:30 बजे 12 बजे के बाद करें। हमारे वो फरमाइश भोजपुरी के रही, हमारे फेवरेट सिंगर रही खुशबू सिंह, उनकर गाना बा जे करे से लव कैलू करे से परेशानी बासन करम सोहरो लागे खानदानी बाजा
8: और गाना
7: सुनाए के बाद रविरा पहला नंबर तो रविरा सुन ले। मनोरमा मैम आजकल थोड़ा गुस्से में है, वो सुन ले हम। ओके, सोनी मैम के हुए हाल बा।

0: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4।
1: मैं हैदराबाद कर रही हूँ, सूरत से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है,
1: बढ़िया रहना चाहिए।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बैठ के कॉल लगा रहे थे। कितना दिन से सोच रहे थे कॉल लगाने के लिए, लेकिन कभी भूल जा रही थी तो कभी टाइम ही नहीं निकल जा रहा था कॉल का।
0: कोई बात नहीं।
1: हाँ, आज सोचे आज भी टाइम निकल जाता, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, थोड़ा बहुत
0: टाइम है अभी, आधा घंटा।
1: हाँ, तो सोचे कि आज लगा ही लेते हैं।
0: अभी तो तबीयत ठीक है आपकी?
1: तबीयत खराब था, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक ठाक है।
0: अच्छा, क्या हो गया था? बुखार?
1: नहीं, वो बुखार नहीं था।
0: अच्छा, तो कौन सा गाना सुन रहे हैं आपको?
1: सॉन्ग सुना दीजिए, भोजपुरी सॉन्ग।
0: गाने की बोल बताइए।
1: गाने का बोल है, ससुई की बोली है जहर लागे, सिराज की आवाज में। और सुनवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को, आपको। हीना जी है, सफाक है, सलेहा है, ब्यूटी परवीन है, रुबीना नाज है, रुखसार जी है, और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर भाई और बाकी जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी लिस्टनर को।
0: जी, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया है।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
11: नमस्ते। क्या हाल है?
10: हेलो हाँ बोलिए।
11: क्या हाल है?
10: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपका तबीयत सही नहीं है क्या?
10: ठीक है,
11: क्योंकि शो नहीं चल पाया,
10: बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए।
11: देख लगे कि आप छुट्टी ले लिए हैं।
10: नहीं चलेगा, नहीं
11: आज तो चलेगा,
10: चलेगा
11: मनोरमा ठीक है
10: यही पे है।
11: परसों बताइए मौसम का, गोपालगंज से कैसा मौसम है?
10: गोपालगंज का मौसम अभी ठीक है।
11: तो गाना सुनना है मेरे को,
10: बता दीजिए
11: कौन सिंह के बारे में बता दीजिए, बेवफाई सॉन्ग
10: गाने की बोल बता दीजिए।
11: कौन सिंह के बारे में बेवफाई सॉन्ग को ही बता दीजिए।
10: और गाना सुनाना भी है किसी को?
11: डेडिकेट है आपको, मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, दिव्या दीदी को और करिश्मा को, जितना रेडियो सुन रहा है सभी लोग को।
10: तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
11: ठीक है, नमस्ते
10: नमस्ते।

0: हेलो, मैं गोपिया से बोल रहा हूँ, गोपालगंज बस्तीला।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: हमको गाना सुनना है।
1: जी बोलिए।
0: आपको हम बस्तीला गोपालगंज से बोल रहे हैं।
1: हाँ हाँ, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: जोगिंदर बाबा
1: जी, कैसे हैं आप
0: जी?
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है हाल चाल बाबू, ठीक है हमारा।
1: अच्छा जी,
0: हमारा हाल चाल ठीक है। एक तो गाना सुनना चाहते हैं,
1: बता दीजिए।
0: वो कौन, गौतम गोविंदा फिल्म का शायद गाना है। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। ठीक है,
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: अरे गाना जब बजेगा तो सबको ही सुनेगा, आप भी सुनेंगी।
1: बिल्कुल जी,
0: ठीक है बाबू।
1: गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: मोहब्बत।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेगुलर मैं
14: कॉल कर रहा हूँ। नमस्ते मैडम।
15: हाँ
14: बोले मैडम, अरविंद कुमार त्रिवेणी का पोल से बात।
15: जी,
14: उधर का मौसम कैसे है मैडम? आज
15: मौसम अभी सुहाना बना हुआ है।
14: बोले मैडम, एक सॉन्ग का फरमाइश रहेगा मेरा आज। हिंदी सॉन्ग है, राधा तो बना है श्याम का।
15: हाँ,
14: और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए और आपके लिए भी।
15: किसी को सुनाना
14: जी, जितने लाइव दोस्त हैं सभी के लिए।
15: अच्छा, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो MGM 90.4 FM।
14: धन्यवाद।

0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: कोई सा गाना सुनवा दीजिए।
0: रक्षाबंधन का?
1: जी
0: रक्षाबंधन। चलिए, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: सबसे पहले आपको और सबको जितना भाई बहन सुनने वाला है रिलीजन पर सबको सुनवाना चाहती हूँ।
0: जी
1: कैसी है आप?
0: मैं तो
1: ज्यादा दिन से कॉल लगा।
2: नहीं बस यही, थोड़ा काम में बिजी है ना सबको।
1: बहुत से पहले नहीं लग रहा है, कितना ट्राई किए, बंद बंद बता रहा था। अब तो शुरुआत हो गया तो अब तो लग ही नहीं गया। खुश हो कॉल लगा कर। बहुत जल्द लगे तो कराइए की
2: ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा।
1: आओ सब भाई, दुआ है
2: तो गाना प्ले करें।
1: हाँ सही है मैम। बाय
2: बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: गुड मॉर्निंग, भारती में बोल रही हैं क्या?
6: जी गुड मॉर्निंग।
7: कहाँ थी आप इतना दिन से?
6: जी हम तो यहीं पे थे।
7: अभी आप तो दर्शन ही नहीं दे रही थी।
6: नहीं नहीं, इधर ही हम भी थे, बस ये काम अभी किसी को मिला हुआ था करने को।
7: जी, मैंने एक गाना सुनना था।
6: बता दीजिए।
7: एक तो लगता ही नहीं, बहुत ट्राई करे, 12-13 बार ट्राई किए तब लगा। पता नहीं क्या, बहुत बिजी हर समय बिजी बता रहा था।
6: कॉल काफी आ रहे हैं, सब दिनों बाद ये वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब कोई बातें कर रहे हैं।
7: तो उधर का मौसम कैसा है मैम, गोपालगंज का?
6: गोपालगंज का मौसम तो अभी
7: बारिश हो रही है।
6: नहीं बारिश नहीं, कभी धूप कभी छाव।
7: कभी धूप कभी छाव। हाँ, इधर का भी मौसम उसी तरह है, सुबह में तो बारिश हुई थी। मैंने गाना सुना दीजिए। ये गाना है हाथी मेरे साथी का, नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। या बस पहले तो हम अपने ये श्रोतागण को सुनाना चाहते हैं और उसके बाद अपनी वाइफ को सुनाना चाहते हैं। बस ये कब तक बज जाएगा मैम?
6: ये आपको आज ही सुनने को मिल जाएगा।
7: आपको तो लगता है उम्मीद कम है, 4-5 दिन बाद मिलेगा सुनने को।
6: आज नहीं तो कल बिल्कुल मिल जाएगा।
7: देखिए अब आप करेक्ट बोले, अभी तो बोल रहे थे कि आज शाम में सुनने को मिल जाएगा।
6: नहीं मतलब जैसे कि आपका तो कॉल लाइन में है कि बज जाएगा, पर ये अभी और
7: प्रॉमिस कीजिए आज और कल में।
6: आज और कल में बिल्कुल सुनने को मिल जाएगा,
7: क्योंकि हम 2-3 बार ट्राई किए, कभी नहीं आज कल हो पाया मैम। 4-5 दिन के बाद आता है नंबर मेरा।
6: नहीं नहीं, इस बार आपका आज या कल बज जाएगा।
7: ठीक है मैम, थैंक यू।
6: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम, तो अभी तो इंतजार खत्म हो गए मैम, फोन करती है।
0: जी जी, तो आप बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: जी गाने का बोल है चलते चलते ये हुई रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ। और सुनवाएंगे कितने रेडियो दोस्ती लोग सुनते हैं, सारी दोस्तों के पास सुनना चाहते हैं।
0: जी और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: और सबसे पहले आपको कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के पास सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: ओके मैम, धन्यवाद, थैंक यू।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-75।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
6: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
7: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी नमस्ते दी।
12: नमस्ते,
11: राधे राधे आपको।
12: राधे राधे,
11: और कैसी है दी?
12: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
11: बिल्कुल, तो क्या हो रहा है?
12: बस आप सभी से बातें करनी है, ज्यादा देर में बात कर।
11: जी जी, और पहचान रही है मुझे?
12: आवाज तो पहचान कही।
11: जी जी, और एक ही बार बात ही हूँ, और मैं बड़ी लंबी आपसे बात कर रही हूँ।
12: वही तो,
11: और आप पर डे शो करती हैं तो आपकी शो 101 बढ़ कर जा रहा है, और जो आपकी आवाज है ना, आपकी आवाज में बड़ी मिठास भरी जा रही है।
12: अच्छा?
11: और शो बड़ा जबरदस्त कर रही हैं, कोई भी शो में आ रही हूँ उसको जो झकझोर दे रही हैं, वो बताना भी जरूरी है। और उसमें से मैं तो बहुत पुरानी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दुआ आपको भरपूर मेरे वाले से दुआ करेंगे, दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे ही जबरदस्त वो करिए। और जो आपकी बीच में जो भोजपुरी वाला जो आवाज होती है ना, बड़ी मीठी होती है, बड़ा नीक लगेला जी।
12: नीक लगेला,
11: सच में बड़ा नीक लगेला। और क्या कहेंगे हम, थोड़ा बहुत मजबूर हो जानी ना, तो बस हम बताई तुरंत, और आवाज बड़ा नीक लगेला। जी जी, और ऐसा ही शो करते रहिए और सब कोई के दिल पर राज करते रहिए, और पीछे हमनी के तो करे वाला बर्थडे वानी सा। जी, और रघु भारती दी बोलता नहीं ना?
12: हाँ।
11: जी देखी रहे हो, गया आवाज हम प्यारा बतावे की बिना पर
12: सब बताएंगे।
11: बिल्कुल बिल्कुल मस्त वानी पूछी का जगह सुनी और मौसम बताई कैसन बा मौसम
12: मौसम देने के
11: और नाश्ता उस्ता कर ले वानी
12: नाश्ता हो सकती है
11: जी चली बढ़िया वहाँ और बीच बीच में पानी पियत रहे मेरे से गाय धो के तो पूछे के ना क्या पूरा जी और पता बा आज हम कुछ और सोच ले रहे बाकी कुछ और सुने के मिल गयी पता बा क्या और जो मुरमना दी जो कॉल लेनी तो वहाँ से बात नहीं के बोलते हम कहीं हम तो हमेशा जुड़े नहीं ना तो आज हम वो प्लान में रात मोबाइल छोड़ के जाए तो पापा जी दे के चला गई है तो कहानी आज हर हाल में कॉल करे अगर वो से बात कर ले थोड़ा तो उल्टा भारी पड़ गए कोई बात ना
12: कोनो बात ना तो करा दूंगा
11: जी जी और कोनो बात ना वो कभी अगर रिकॉर्डिंग करे तो बात हो जाये तो सुनते रहे नहीं था अगर बात होके तो हो जाये जी और मैंने हम प्रवास एक बार हो गई एक बार करवा तो बताइले रहनी जब लोग पहली बार आवाज सुननी था ऐसे मेरे वो लोग सो हम हमेशा

0: पहले भी आरजे शो कहले वानी लो तो हमनी के पाता बा, और पहले बहुत ज्यादा जुड़ल मानी सब रेडियो रिंजिन में बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी ना जुड़ पाए नी, बाकी सुने नी इतना ध्यान रखे हम सुने नी कोई भी शो मिस ना करे नी। जी जी वो तो पाता बा, और का करे के बा, हमार नाम वैसे ही पड़े ला रहुआ जब पानी के जरूरत पड़े ला। और हमार नाम है रानी, हमार घर है रखुआ। लोग जितना लोग जुड़े ला सब कोई पहचान जाए, बाकी नया लोग ना पहचानी हमारे जो हंसी बात सब कोई पकड़ में आ जाला कि हम रानी है बोलते हैं। जी और चली बात तो भाई, बाकी एक गाना सुना दी अब यही लगले सौरों के हम पीछे छोड़ा दी रहू, अंत भला तो सब भला रहू, अभी लाशी कौन चला तक बहुत जा रहा बा। जी बरसात मूवी से सॉन्ग सुना दी, जो में जोन गाना बा ना बबी देओल के जोन मूवी बा बरसात मूवी, करते हैं हम भी तुमसे प्यार, यही सॉन्ग सुना दी। जी जी जी सबसे सबसे बड़का हकदार रहुआ बनी है गाना के रहुआ लीली रानी के तरफ से, हमारा तरफ से तो बड़ा जबरदस्त करता नहीं, और ये थोड़ा सा रहुआ सुन के बड़ा सुकून मिलता है, और रहुआ और भी कामयाबी के आगे रहुआ जाए क्या चली, हम तो शो करता नहीं ना। और खास सबसे बड़का चीज और रहुआ लोग में आरजी में लागे ला, वो दिन सोनी दी बीच बीच में अपन रिकॉर्डिंग भेजे नी एक आरजी होके के नाता, तुम्हों को सुन के बहुत अच्छा लगे ला, दिया बड़ा सुकून मिलेला। और रहुआ के रहुआ के और मुरमना दी के और एगो दीदिया दी रानी है तो वो तो चली गई नहीं तो उन्हों के वहाँ क्या था, और बाकी सब कोई की रानी की तरफ से सब आ रहे।
1: जी जी
0: रहो कम
1: नहीं थी,
0: रहो
1: आवाज बहुत अच्छा
0: लगे ला सुन के। अच्छा जी चलिए, अंत में कहिए कसर ना छोड़नी, हम सुनी है कि
1: ना ना रहो और आवाज हम एक बार में सुनी है तो पहचान नहीं है, जबकि हम रहो से एक बार बात करेंगे।
0: वही वाह, जब रहो बोलनी है तो हम पकड़ में आ गए नहीं है कि रहो वह दी है, जब रहो से हम एक बार बात कर ले वानी, बाकी ऐसे में हम नहीं आएंगे शो लेके तो वो शो मिस भाई बा। और देखिए हम जुड़ी चाहे ना जुड़ी, और जौन इस शो बार वालों के जौन चैनल भाई हमारे गोपालगंज के दिला के चैनल है, तो समझी हम कैसे मिस करें, हम तो हेती चुकी से शो सुनते आई वाली, भले जुड़ी है ना जुड़ी बीच में बाकी स्टार्टिंग से हम सुनते नहीं। और वो चाहे तो अपने पूरा बाय डाटा रेडियो रिंजिन के बारे में पूछ सकते हैं तो हम बता सकते नहीं कि से कितना आगे गई वानी लो, बाकी थोड़ी टाइम की अभाव बा और आगे भी लाइन बहुत लागल बा, बाकी इतना सब बता ही नहीं है कि इंसान अगर कोई बीच बीच में इतना दिन के बाद कोई जुड़ेला, बाकी हम सुने नहीं। जी
1: जी
0: और थोड़ा सा ध्यान दें, बीच बीच में पानी पीते रहे शो के जरिए, प्यास तो बहुत लागत है, ऐसे कहीं लिसनर सबसे बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाला ना।
1: बात
0: और सबसे ज्यादा देखती सॉन्ग मानी रहुआ खाती। जी जी जी चलिए, और कुछ दुनिया में कुछ नहीं है जी, मन बस भाव भाव विचार,
1: टाइम मिली तो कबो याद कर लिया।
0: जी जी जी ऐसा बात नहीं के कॉल करें, और पता बात सच में हम रियल में कहते नहीं रोज, हम पापा के फोन के हम मोबाइल रख के आज कॉल कर ले वाणी, ऐसे में पापा जी से कहा था नहीं कि मिस्टेक से रोज छोड़ के भी चल जाएंगे, बाकी यार मांग लेनी तो दे देनी है। चलिए चलिए, और ऐसा ही सॉन्ग करते रहे और मीठी मीठी आवाज से लोग के पूरा दिल जीतते रहे, और हमने सबके पीछे से लेते चली आगे रहूंगा पीछे से हमने के सारी लिसनर ऐसा ही समारत रही है स्टेरी।
1: बिल्कुल कोशिश में तो लग रही
0: ना ना रोज जाए बहुत आगे जाए, वो से आगे जाए रोज करी अपने दिल मेहनत लगन से करी, और सच बात में अगर ज्यादा अगर हम ये करी तो ऐसा बात नहीं के रोज को नहीं के द्वारा बताए नहीं लोग सारी इंसान सुने ला, और जानी बात नहीं की थी, और पहली बार तो कोई भी कहीं मशक्कत कोई काम करे जाला तो देख रेख करे नहीं तरीका, इंसान थोड़ा सा चाह के भी अगर हिल ना सके बाकी गिर जाला वो जगह से अंदर के जो झक धक दिल करेला पहली बार जो समझी वो पल का होला, बाकी बाद वाला दूसर का पल बहुत अच्छा होला, वो सही जगह सुधरते चली। जी जी
1: चली तब बात हुई।
0: जी जी जी जी बात हुई, और इस शो में सभी कोई परेशान हो तो ये से जो कॉल करे के तरीका वाला ना तो जी नींद ना हो तो वो पंखा के जरूरत पड़ जाला। तो वे बात बा, और चलिए इतना सारी बात भइल बा, रिकॉर्डिंग के जरिए वाला शो चला देम, और जोन बात भइल बा बीच में काट देम, ये से क्या लंबी बात भइल बा तो वह खातिर ज्यादा अच्छा हुई। ऐसे ही में कहा नीलो रानी बहुत ज्यादा बात करती है। चलिए बाय दी। जी जी प्ले कर दी
1: रेडियो 90.4 FM।
0: जी बाय
1: बाय।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
5: Pick it up, pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
7: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: नमस्ते मैम।
9: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: ढाला से बोलते हैं रामाजी प्रसाद
9: जी, का हाल चाल बा?
10: हाल चाल ठीक बा, दिन ठंडा भर बा लेकिन गर्मी बा।
9: अच्छा,
10: और गाना सुना बा?
9: बता दी कौन सा?
10: मेला में सैया फुलाइल हमार, अब का करी हो राम, अब का करी।
9: हमारी गाना क्योंकि सुना हूँ के बा,
10: जितना रेडियो सुनता सब कोई के धनाव से जाना बारे हमारे बाहर नाम ले तो लानू तो अपना बन हम ले टुनकरा के।
9: हाँ, गाना चले प्ले करता नहीं।
10: नमस्ते
9: जी, नमस्ते रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: भारती जी, आपका भी रेडियो रंजन में स्वागत है। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: और कैसे हैं आप?
0: ठीक ही हैं?
1: ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक ही हैं, इसका मतलब ठीक नहीं है?
0: हाँ तो मतलब ठीक है।
1: चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। बारिश वरिश नहीं हो रहा है क्या?
0: नहीं, बारिश तो नहीं आ रहा है, बस जैसे मौसम बना हुआ है।
1: बारिश वरिश करवाई है, मौसम बन रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बताइए। हम लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार करते हैं, भारती जी की आवाज़ सुनने को भी नहीं मिलता। पर आप लोगों ने उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं खिलाई और ऊर्जा में भी नहीं आई। हम लोग तो सरस के रह गए।
0: जी जी, तो थोड़ा तबीयत खराब था ना।
1: कहते हैं कि थोड़ा सेहत पर ध्यान दीजिए, खाली
0: नहीं वो थोड़ा आजकल मतलब पर वगैरह था ना, मम्मी तो कुछ करती नहीं है, तो नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ता है, अकेले तो कभी कभी हो जाता है ऐसे।
1: ये भी देखना जरूरी है। फिर मैंने कहा कि जब ये कॉन्टेस्ट वाला नहीं हुआ था, भारती जी आज लगता है छुट्टी पे है या
0: नहीं आई? बिना सर को बताया हम लोग छुट्टी पे कभी नहीं जाते।
1: कोई बात नहीं, तो माँ जी का भी ध्यान रखिए और सबसे पहले अपना भी ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, कल नहीं आई तो, लेकिन सेहत आई तो ला गई। क्यों, सेहत सही रहेगा तो स्वस्थ इंसान रहेगा, तो हम लोग को भी आवाज सुनने को मिलेगा।
2: बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है ना। नाश्ता उसका पानी करके आई है कि नहीं? आज
0: नहीं, नाश्ता पानी तो करके आते हैं, इससे कहाँ देने वाले हैं।
2: सेहत पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग को आवाज देते रहे, ताकि हम लोग जो है इसी में हम लोग आपको आवाज के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: इसीलिए तो कहते हैं कि दुआ दुआ करते हैं आपके लिए, हम हर पल हर दिन आपके लिए लाए हसीन पल। वो खुशी का आपका ये जो रहे गाना है,
0: बता दीजिए।
1: आई बोला की रात का है या दिल का है, मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया।
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनवाएंगे।
0: जी जी,
1: और साथ में आवाज जो आ रही है आपके मनोरमा जी हैं, उनको भी सुनाएंगे।
0: जी,
1: और जितने तमाम श्रोतागण इस रेडियो को शाम प्रोग्राम सुनेंगे उन सभी का ये गाना डेडिकेट है। लेकिन आपसे बात करके बहुत खुशी आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनने को मिलेगा हम लोगों को।
0: जी जी,
1: थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम वोग्राम सुना, उसके बाद नहाया धोया और जाकर निकला। थोड़ा टाइम दे देते हैं, कंप्यूटर पे अपना देखते रहते हैं,
0: देखना ही चाहिए थोड़ा बहुत,
1: इसलिए कि हर चीज का सुविधा है, कोई ऐसा चीज ऊपर वाले कमी नहीं दिए हैं। बाकी जो है भेजूंगा वीडियो, देखिएगा, आइएगा प्रोग्राम में। तो
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो नमस्कार, और भी लाइन में लगे होंगे।
0: जी,
1: तो रखते हैं, आपका दिन शुभ हो।
0: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: एपिसोड नंबर 47 47।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया? उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
8: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: एपिसोड 48, 48।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्यक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्यक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी चंपारण जिले में 284 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए लोक भवन में आज से 6 दिवसीय शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है।
1: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास में संवाददाताओं से बातचीत में इस सफलता का श्रेय देश के युवाओं, उद्यमियों और छोटे उद्योग चलाने वाले की सामूहिक मेहनत को दिया है।
2: बहुत खुशी की बात है और हमारे प्रधानमंत्री जी को निरंतर देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश में प्रधानमंत्री जी लगे रहते हैं, तो आगे और इससे आगे बढ़ेगा। इसलिए जो लोग इस काम में लगे हैं उनको भी इस बात के लिए बधाई है और हमारे प्रधानमंत्री जी को अलग से इस बात की शुभकामना। इसी तरह से उनका संकल्प सफल होता रहे, हम सब लोग उनके साथ हैं।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वैश्विक संकटों के बीच भारत की जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी विपक्ष के उस आरोप का खंडन करती है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मृत अर्थव्यवस्था बताया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के नए कैंपस की स्थापना की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित गांधी मैदान में बापू धाम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया।
3: नेशनल स्कूल ड्रामा के लिए लोगों को पुणे जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, कलकत्ता जाना पड़ता था। अब उनको कहीं नहीं जाना है, इसी बिहार की धरती पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हम बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि NSD कैंपस की स्थापना से बिहार के युवा कलाकारों को पेशेवर नाट्य प्रशिक्षण, स्टेज क्राफ्ट, प्रदर्शन कला और उन्नत शोध के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार NSD कैंपस के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी और भवन निर्माण की स्वीकृत लागत का 50% राज्यांश वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्थान बिहार की समृद्ध लोक नाट्य परंपराओं और आधुनिक रंगमंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पूर्वी चंपारण जिले में 284 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में जिले में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास का आश्वासन भी दिया।
3: हम आपको स्वस्थ करते हैं कि फिर मैं आऊंगा, इसी साल इसी वित्तीय वर्ष में मैं फिर आऊंगा और मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ
0: श्री चौधरी ने चकिया, वैशाहा, कोटवा, तुरकौलिया समेत कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन किया। बिहार लोक भवन में आज से विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लेकर 6 दिवसीय शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों में संचालित सभी 46 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्य के लिए बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 150 से अधिक विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। नए पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट की एक समान व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों को अपनी रुचि और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विषय चुनने के अधिक विकल्प भी मिलेंगे। नए पाठ्यक्रम में विषयगत ज्ञान के साथ कौशल विकास और शोध कार्य पर विशेष जोर दिया जाएगा। 6 दिवसीय कार्यक्रम के बाद तैयार पाठ्यक्रमों की देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराई जाएगी। उनके सुझावों को शामिल करने और आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पाठ्यक्रमों को अधिसूचित कर बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि यदि NDA के घटक दल आरक्षण के खिलाफ हैं तो उन्हें आरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई।
5: मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या जनता दल यूनाइटेड पार्टी के लोग हो, सब लोग मलाई खारा आरक्षण का इस्तेमाल किया। तेजस्वी ने आज तक आरक्षण का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये लोग रिजर्व सीट से लड़ते भी हैं, मंत्री भी बनते हैं और आरक्षण को खत्म करने की बात भी करते हैं। यानी इन लोगों को केवल अपने कुर्सी से मतलब है और किसी चीज से इनको मतलब नहीं है।
0: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बांका जिले के फुल्ली डूमर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित प्रताप सिंह को उनके निजी आवास पर 75,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पदाधिकारी ने एक शिकायतकर्ता से पंचायत समिति की योजनाओं के अनुमोदन के लिए रिश्वत की मांग की थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह आधुनिक प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। यह स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। IRSME 1990 बैच के अधिकारी डिम्पी गर्ग ने आज पूर्व मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व श्री गर्ग उत्तर रेलवे में प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के पद पर थे। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ट्रफ रेखा राज्य के उत्तरी भागों से गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद जिले के रफीगंज में सबसे अधिक 110.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान

0: घर गंगा में समा गए हैं। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक रिपोर्ट।
1: जिले के नवगछिया और सबौर प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से लगातार नुकसान हो रहा है। नवगछिया प्रखंड का वर्षों पुराना दुर्गा मंदिर भी कटाव के कारण गंगा में समा गया है। नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया रजमेरीपुर सहित शहर से सटे गंगा किनारे स्थित आजमपुर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके अलावा चिंतामणि भागवत विश्वविद्यालय यानी TMBU परिसर की प्रोफेसर कॉलोनी में भी पानी प्रवेश करने से आवागमन में परेशानी हो रही है। कटाव को रोकने और प्रभावित इलाकों में नुकसान कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
0: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि भागलपुर में कटाव की गंभीरता को देखते हुए वे और विभागीय सचिव नई दिल्ली की बैठक को बीच में छोड़कर पटना लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कटाव स्थल पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता मौजूद हैं। रोहतास जिले के सासाराम वन प्रमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए गुप्ता धाम मार्ग को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। DFO स्टालिन फ्रीडल कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए मार्ग पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि मार्ग बंद रहने के दौरान गुप्ता धाम की ओर न जाएं और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ की त्रासदी जारी है। इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश और नदियों में बढ़ते जलस्तर के कारण नए सिरे से बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में बचाव कर्मियों को बाढ़ में फंसे लोगों का पता लगाने में कठिनाई हो रही है। कटिहार जिले में कार्यरत 21 शिक्षकों पर डिजिटल हाजिरी में कथित फर्जीवाड़े के मामले में का मामला सामने आया है। आरोप है कि कोलकाता, धनबाद और पटना जैसे शहरों में रहते हुए भी शिक्षक कटिहार के स्कूलों में हाजिरी दर्ज करा रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद्र चौधरी ने सभी से स्पष्टीकरण मांगा है। मधुबनी जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र और बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 360 लीटर नेपाली शराब और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 4 वाहनों को जब्त किया गया है। शेखपुरा जिले के सिरारी थाना पुलिस ने क्यूल गया रेलखंड पर सिरारी रेलवे स्टेशन के पास अंतर जिला शराब गिरोह के 2 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा पर अररिया जिले के घूरना थाना क्षेत्र से SSB की टीम ने 55 किलो गांजा बरामद किया है। बक्सर जिले की पॉक्सो अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्वी चंपारण जिले में 284 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए लोक भवन में आज से 6 दिवसीय शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: आजादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई। ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
0: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
1: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
5: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
5: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रशासनिक तकनीकी पुस्तकालय, प्रणाली विश्लेषक, निर्माण विभाग, राजभाषा एवं खेल संवर्ग के पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं संस्थान की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.iitbhu.ac.in तथा iitbhu.ac.in/recruitment।
4: दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dtu.ac.in।
5: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में आवश्यकता है इन पदों को भरने की। सहायक प्रशासन अधिकारी पदों की संख्या 2, निजी सचिव 5, सतर्कता प्रकोष्ठ सिविल हेतु सहायक अभियंता 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक गैस अधिकारी 1, वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी 1 पद, परिवहन पर्यवेक्षक 1 पद, सहायक लेखा अधिकारी 2 पद, सहायक भंडार अधिकारी 3 पद, तकनीकी सहायक 16 पद, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 14 पद, व्यक्तिगत सहायक 7 पद, फार्मासिस्ट ग्रेड 1 11 पद, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी 4 पद, स्वच्छता अधिकारी 3 पद, वरिष्ठ फार्मासिस्ट 3 पद, सहायक सुरक्षा अधिकारी 1 पद और धुलाई प्रबंधक 1 पद। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं विस्तृत जानकारी के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल की वेबसाइट, जिसका पता है www.aimsbhopal.edu.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में भरे जाने हैं ये पद, चिकित्सा अधीक्षक, रजिस्ट्रार, कार्यकारी अभियंता सिविल, कार्यकारी अभियंता इलेक्ट्रिकल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक और उच्च श्रेणी लिपिक। आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, वांछनीय योग्यता, अनुभव और संबंधित विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार के 6 संवर्ग बाह्य पदों को प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। इस अवधि को वार्षिक आधार पर अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी और नियम तथा
4: शर्तों को देखने के लिए देखिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट www.ssc.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
0: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। SCO सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित SCO युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले SCO सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और SCO युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
3: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
5: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
6: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
7: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
8: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरण शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
7: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रूपये प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
14: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
15: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
14: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
15: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
14: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
14: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
15: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
16: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
17: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
15: कॉल करें 70-70-75-63 या 70-70-75-42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
18: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
19: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
18: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
19: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
18: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
19: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
18: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
14: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
20: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल।
1: मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा की योजनाओं में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। एचआईवी एड्स की जागरूकता को लेकर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पंचायत सहयोग शिविर लगने से ग्रामीणों में हो रहा है उत्साह। अवैध हथियार के साथ दो नाबालिग युवकों को पुलिस ने पकड़ा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की हुई चोरी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिले में विकास योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने को लेकर जिलाधिकारी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। आज उन्होंने समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान ली गई योजनाओं समेत विभिन्न विकास योजनाओं की लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति, भूमि उपलब्धता, तकनीकी अड़चन और लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें मुख्य रूप से निर्देश दिया गया कि किसी भी विकास योजना को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन 280 के लक्ष्य के विरुद्ध 259 मामलों में भूमि उपलब्ध कराने और एनओसी प्रक्रियाधीन बताई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि और एनओसी की प्रक्रिया को लंबा न खींचा जाए। संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करें ताकि भूमि के अभाव में निर्माण योजनाएं लंबित न रहे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण के लिए भी कुल 270 का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 42 केंद्रों पर कार्य शुरू हो चुके हैं और 103 पर काम शुरू करने की स्थिति है। समीक्षा के क्रम में 40 मामलों में भूमि विवाद, भूमि अनुपालन अथवा अन्य कारणों की स्थिति प्रकरण में आई। इस पर अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। जिन योजनाओं में भूमि, एनओसी, तकनीकी स्वीकृति, निविदा अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से काम नहीं हो रहा है, उन मामलों को अलग से चिन्हित कर संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ तत्काल उसका समाधान करें। समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए उसकी अद्यतन स्थिति जिला स्तर पर उपलब्ध कराने को भी निर्देश दिया गया। बैठक में भूमि उपलब्धता को विकास योजनाओं की प्रगति से सीधे जोड़ते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ वैकल्पिक भूमि की तलाश और उपलब्धता की प्रक्रिया तेजी से पूरा करें। जहाँ भूमि विवाद है वहाँ संबंधित अंचलाधिकारी और विभागीय अधिकारी समन्वय स्थापित कर समाधान की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्यों में कोई बाधा नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करें और विवादित अथवा अनुपलब्ध भूमि वाले मामलों का समाधान संबंधित अंचल स्तर पर ही कराएं। इस दौरान पदाधिकारियों और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता, कार्य की गति और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने कहा कि तकनीकी स्वीकृति, प्राकलन, निविदा और निर्माण के स्तर पर किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा में कुल 86 योजनाओं में 47 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 39 योजनाओं का कार्य प्रगति पर बताया गया है। कुछ योजनाएं भूमि विवाद और न्यायालयी मामलों के कारण प्रभावित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालयी विवाद मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें और जहां वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है वहां प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएं। उद्देश्य यह है कि भूमि संबंधित समस्या के कारण विकास कार्य लंबे समय तक ठप न रहे। कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ 2026-27 के लिए 123,721.758 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 123,371.62 हेक्टेयर में अक्षादन दर्ज है, जो 99% से अधिक है। धान का अक्षादन 101.17% तथा गन्ने का 100% रहा। कृषि विभाग को विकास की इस नई गति को बनाए रखने और किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने तथा योजनाओं की लगातार निगरानी करने को भी कहा गया। एचआईवी एड्स संक्रमण की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज गोपालगंज के समाहरणालय परिसर से एचआईवी एड्स जागरूकता वाहन को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव, जांच एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एचआईवी से संक्रमित व्यक्तियों के उपचार से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके साथ ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैक्सीनेशन मोड में हाई रिस्क समूह, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर तथा जोखिम वाले आबादी समूहों के बीच HIV से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के साथ ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत आम जनों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज कुचायकोट के अहियापुर पंचायत के सहयोग शिविर में अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने आम जनों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय आमजन पहुंचे और विभागों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याएं एवं आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने भी शिविर में उपस्थित लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए उनसे संबंधित आवेदन प्राप्त किया और उसके निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर अरार मोड़ स्थित टी ब्रेक दुकान के पास चार युवकों को अवैध हथियार और मोटरसाइकिल के साथ पकड़ने का प्रयास किया जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। पुलिस ने जैसे वहां छापेमारी की तो दो आरोपी फरार हो गए और दो युवकों को पुलिस ने बल के प्रयोग से खदेड़ कर पकड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों विधि विरुद्ध बालक हैं, इनके पास से अवैध हथियार मिली है जिसको लेकर दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपियों की पहचान को लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस के तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार दोनों विधि विरुद्ध बालकों से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया है कि मयंक सिंह राजपूत अपने दोस्त सोनू श्रीवास्तव के साथ पिस्टल लेकर आया था और उक्त पिस्टल को उसकी अभिरक्षा में लिया गया तथा मोटरसाइकिल की चाबी लेकर सभी के सामने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखा गया। सोनू श्रीवास्तव के द्वारा दोनों को पिस्टल अपने पास रखने तथा बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने की बात कही गई थी। पुलिस ने दोनों विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है और एक अवैध देसी पिस्टल और दो मोबाइल फोन को जब्त कर इसमें कांड दर्ज करने के बाद अब आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पंचायत सहयोग शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं से जोड़ना तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन को उनके द्वार तक पहुंचाना है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता कम होती है और वे पंचायत स्तर पर ही अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न पंचायत शिविर में पहुंचे आम जनों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर मिला। नगर थाना के एक डेरवा पंचायत स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय एक डेरवा को अब राजकीय मध्य विद्यालय एक डेरवा के भवन में शिफ्ट किया गया है। भवन की कमी के कारण स्कूल का संचालन फिलहाल सीमित कमरों में हो रहा था, लेकिन छात्र हित को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालय के संचालन स्थल में बदलाव का निर्देश जारी किया है। विद्यालय में करीब 301 छात्र छात्राएं नामांकित है। नए भवन में अतिरिक्त कमरों की उपलब्धता से पठन पाठन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने इसकी जानकारी दी है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थान को बदलते हुए छात्र हित में लिया गया शिक्षा विभाग का यह फैसला बताया है। आज जगतौली ओपी थाना क्षेत्र के तिवारी छपरा गांव में सोमवार की देर रात चोरों ने एक महिला को बंधक बनाकर 70,000 नगदी और लाखों के जेवरात लूट लिए। बताया जा रहा है कि मामला तिवारी छपरा गाँव के विद्यापति उपाध्याय के घर का है। इनके घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। देर रात घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। इसी बीच रात में घर के बाहर एक पेड़ के सहारे अज्ञात चोर इनके आंगन में दाखिल हो गए। चोरी की घटना को अंजाम देने लगे तभी इनके घर एक महिला की नींद खुल गई। महिला जैसे ही पहुंची तो चोरों ने महिला के गले पर चाकू रख दिया और हत्या की धमकी देते हुए उसे बंधक बना दिया और घर का नगदी जेवरात इत्यादि चोरी कर लिए और चोरी करने के बाद चोर आराम से फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर स्थानीय लोग एकत्रित हुए, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक एक बिंदुओं पर अब पुलिस अनुसंधान कर रही है। कटिया थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त के घर पर न्यायालय के निर्देश पर इश्तेहार का विधिवत तामिला किया। इस दौरान पुलिस आरोपी विनोद कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा तथा दीना भगत और तीन महिलाओं के घर पहुंच गई। ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने पूरे आरोपियों के घर पर इश्तेहार को चस्पा किया और जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया, अन्यथा आगे कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये सभी आरोपी कटिया थाना क्षेत्र के राजापुर दिवलिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। लोगों की समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। मुचका गांव थाना की पुलिस ने चोरी कांड के एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2022 में हुई एक चोरी के कांड में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त विकास ठाकुर, पिता राघव ठाकुर, साकिन रामपुर माधो, थाना कुचायकोट, जिला गोपालगंज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी राजन यादव, पिता हरे राम यादव, साकिन पड़रिया थाना कटिया का निवासी है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब आगे इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और उसे भी निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। महिला सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण पहल को लेकर बिहार पुलिस के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के द्वारा जिले में पुलिस दीदी अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अभियान के अंतर्गत पुलिस दीदी की टीम के द्वारा जिले के विभिन्न स्कूल, महाविद्यालय, कोचिंग सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के आसपास नियमित रूप से गश्ती और निगरानी की जा रही है। इस अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा विशेष रूप से उन स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है जहां छात्राओं और महिलाओं की आवाजाही अधिक रहती है। गश्ती के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से असामाजिक गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई कर सके। खेल जगत में गोपालगंज के बरौली प्रखंड के दो होनहार खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर जिले और बिहार का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रतन सराय गांव निवासी भवानी सिंह तथा रामपुर निवासी रिया सिंह का चयन वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी आगामी 16 से 20 सितंबर 2026 तक चुनचौन दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विश्व चैंपियनशिप में विभिन्न देशों के शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों खिलाड़ियों का भारतीय टीम का हिस्सा बनना गोपालगंज के लिए गौरव का विषय है। दोनों खिलाड़ी ताइक्वांडो फ्री स्टाइल में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में दोनों ने लगभग 4 बार पदक जीत कर अपना लोहा मनवाया है। पुलिस दीदी अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और उनके आसपास छात्राओं के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। इसके तहत विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी से छात्राओं में सुरक्षा की भावना को मजबूती मिलती है, साथ ही उन्हें अपनी समस्याएं पुलिस के समक्ष सहजता से रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा छात्राओं को सतर्क रहने, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के संदर्भ में भी जागरूक किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा की योजनाओं में तेजी लाने का डीएम ने दिया निर्देश। HIV एड्स की जागरूकता को लेकर वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पंचायत सहयोग शिविर लगने से ग्रामीणों में हो रहा है उत्साह। अवैध हथियार के साथ दो नाबालिग युवकों को पुलिस ने पकड़ा। महिला को बंधक बनाकर लाखों की हुई चोरी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
21: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
21: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 90.4 FM पे समय 9:43 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम काफ़ी लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने पसंद के गाने फरमा सकते हैं और फरमाना चाहते हैं तो अभी जल्द से जल्द टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 7277165696 पे, ताकि आपकी फरमाइश आपके पास जल्द पहुंचाई जाए, आपको सुनाई जाए। तो कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ इस शो से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी जुड़े हुए हैं और विलेज सव्या फील्ड से, तो आप बन रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं सुरभि जिला गोपालगंज बिहार नवादा से, और मुझे सॉन्ग सुनना है ये दोस्ती तेरे दम से है, आपको सुनाना है। और भारती मैम, मनोरमा मैम प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो, हम भी हैं, गाना सुनना है, सुना सकते हैं आप? बिल्कुल, यदि आपका फरमाइश पहुंचता है तो हम क्यों नहीं सुनाएंगे, हमारा कार्य यही है कि आप लोगों की फरमाइशों को सुनाएं। इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम नहीं बताए हुए तो अपना परिचय के साथ अपने गाने की भी फरमाइश करें, आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माझा से, सुनम जी से निवेदन है कि मेरा भी गाना सुना दीजिए। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपने नाम जो बता रहे हैं जिनसे आप निवेदन कर रहे हैं, तो सोनम जी नहीं, सोनू मेरा नाम हुआ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सोनू जी, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हैं हमारे साथ। आपकी भी लाइन जो भी है एक बार देखने के बाद आपको सुनाई जाएगी, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और सुरभि जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे, ये दोस्ती तेरे दम से है।

रेडियो एमजीएम 94.4 FM सुन रहे हैं हम सब। कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का, और यदि आप भी सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने के फरमाइश करें तो आप पुराने गाने के फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने के फरमाइश करते हैं। लिखे हुए कि सुनो भाई, मैं ब्रिज बिहारी पांडे राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और मुझे एक गाना सुनना है। गाने का बोल है, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। इस गाने को मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो देख ले, फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो, प्ले वन सॉन्ग सर। तो बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, लेकिन आप कौन, अपना परिचय दे। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हम भी जुड़ गए हैं सोनू बाबू पर लेट। चलिए भाई, अच्छा लगा कि आपकी दोस्ती एक के दूसरे के दम से है, यही दोस्ती का फर्ज है। अगर ऐसा है तो शुक्रिया। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है। कार्यक्रम भी लेट से स्टार्ट हुआ है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है, जितना हो सकेगा, मेरा जो समय निर्धारित है उतना में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। तो बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करें। और इस मैसेज को किए हुए हैं सिद्धार्थ जी, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कल ही आपकी फरमाइश हम पूरी किए थे, सो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम है। सप्ताह में एक ही बार मौका मिलता है गाने फरमाने का, तो आपकी बारी समाप्त हो चुकी है। फिलहाल आगे कई श्रोतागढ़ इंतज़ार में लगे हुए हैं, जो कल छूट गए थे, उनकी फरमाइश पूरी की जाएगी आज। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रिज बिहारी जी की फरमाइश को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछिम 94.4 FM पे।

0: रेडियो एमसीएम 94 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और महेंद्र कपूर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में इस गाने को सुन रहे हैं आप सब। और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, आगे कई गाने की फरमाइश और श्रोतागढ़ की मैसेज रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप सबकी फरमाइश पूरा करने का मेरा प्रयास है। आगे बढ़े, यहाँ पे आगे गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है अजय जी के द्वारा गणेश स्थान माझा से, और गाने की फरमाइश करते हैं कुरुक्षेत्र मूवी से, इश्क भी क्या चीज़ है, तो इनकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं गोपालगंज से हूँ और अभी सूरत में आपका रेडियो सुन रहा हूँ, पवन सिंह का कोई भी गाना सुना दो। तो बिल्कुल आपका फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा, लेकिन आप कौन है अपना नाम बताएं, परिचय दें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। फिलहाल यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत अच्छा सॉन्ग दूल्हे का फुल फिल्म में किया ये सॉन्ग, आशा महेंद्र कपूर जी ने गाए, 1962 की लगता है। और यहाँ पे मैसेज किए हुए हैं, लिखते हैं कि थैंक्स मैसेज किए हुए हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि आप कैसे हैं, तो बिल्कुल अभी फ़िलहाल ठीक हूँ और आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अब गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो एमजीएम 94 एफएम पे।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट।

रेडियो रेमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और कुरुक्षेत्र अभिषेक कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे। और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो सर, मेरा नाम श्वेता है और मैं दंगसी से हूँ, मुझे गाना सुनना है रब ने बनाया मुझे तेरे लिए। और एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, और इस मैसेज को की है निशा शुक्लवा से, और इनके तरफ से लिखा गया है कि कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए इस गाने को हम प्ले करते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं हम, आप इंजॉय करें रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे गाने रब ने बनाया तुझे मेरे लिए।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है चतुर जी के तरफ से, और गाने की फरमाइश किए हुए हैं पवन सिंह का आवाज़ में कोई भी, तो कोई भी सॉन्ग सुनाएंगे और पुराने गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे, भगवान बड़ी फुर्सत से दोहरा के बनौले बाड़े, प्रतिज्ञा मूवीज फिल्मी गाने हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज देखने के बाद से आगे गाने हम प्ले करते हैं। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स सर, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं अजय कुमार मिश्रा ग्राम गणेश स्थान माजा से प्यारा सा सॉन्ग सुनाने के लिए सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे भी सुनते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे कार्यक्रमों से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि कोई बात नहीं भैया, इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम तो पूरी कर ही चुके हैं कल की, जिसकी वजह से आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। केवल हम ही सुनेंगे तो दूसरा कब सुनेगा, थोड़ा सा समझना है। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं

रेडियो रिमझिम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, पुराने सॉन्ग प्रतिज्ञा मूवी से, भगवान बड़ी तोहरा के फुर्सत से बनवले बाड़े। भगवान ने तो सबको फुर्सत से बनाए हैं, सबको ही प्यारे हैं और गाने भी प्यारे। आगे मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज लिखा गया है कि 20 रुपये का नोट मिला, उस पर लिखा था। तो आप ऐसे ऐसे लाइन लिखते हैं कि थोड़ा शामिल करने में भी हम लोगों को दिक्कत होती है, सोचना पड़ता है। तो चलिए इतना ही तक रहने दीजिए। अगली मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक हैं। सुपर गाना बा भाई। सविता चौहान भू छपरा से मैसेज किया, बिल्कुल सुपर गाने। अगले मैसेज पहुँचा हुआ है और

आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सर, मैं अनिल कुमार नवादा से और मुझे गाना सुनना है। और गाने का बोल देते हैं, जब तक रहेंगे समोसे में आल। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। कह रहे हैं कि मैं पहली बार इस रेडियो को सुन रहा हूँ और गाने की भी फरमाइश किया हूँ, तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं। जिला नवादा से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो आप जब सुनना चाहें तब सुन सकते हैं, बशर्ते गाने की फरमाइश एक ही बार कर सकते हैं सप्ताह में इस कार्यक्रम। तो आगे अब अगले सप्ताह आपकी बारी आएगी। जो भी श्रोतागण एक बार सुन लेते हैं उनकी बारी सप्ताह में एक बार अगले सप्ताह आती है, फिर अगले सप्ताह सुनने के बाद से उसके अगले सप्ताह, यानी माह में चार बार मौका मिलता है गाने सुनने को। कभी कभार ऐसा होता है सीट खाली रहती है, तो गाने की फरमाइश दो बार पूरी हो सकती है, बशर्ते सीट खाली होने के बाद। वैसे तो कभी सीट खाली होते नहीं है, श्रोताओं की फरमाइश लगी रहती है। जब खाली होती है तो बताई भी जाती है, तो आप जब सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम आज यहीं तक रहेगा और आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और जो भी श्रोतागण आगे छूट जा रहे हैं तो नाराज नहीं होना है, समय जो है आप लोगों को इस दिए गए समय से थोड़े आगे हैं। तो आज बस इतना ही, सुनते रहें आप सब रेडियो रमछम 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद, वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West in the Ministry of External Affairs, Simi George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and wars cannot be solved on the battlefield. Dialogue and diplomacy are the only way forward. Highlighting that terrorism was a grave threat to humanity, he called for committed action to dismantle the terror ecosystem. He specifically stressed that there should be no double standards whatsoever in fight against terrorism.
2: Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. The leaders of the member states also signed the Bishkek Declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Our correspondent reports India's priorities have found prominent place in the SCO Bishkek Declaration. The 26th Shanghai Cooperation Organization summit concluded with 13 outcomes. The outcomes cover counter-terrorism, climate action, energy, disaster management and digital cooperation. Secretary West informed that the summit approved 4 MOUs and more than 20 decisions. The MEA said, addressing the summit, Prime Minister Narendra Modi called for a roadmap for the next 25 years. He stressed on the need for concrete outcomes in the areas of security, connectivity and opportunity. The two-day SCO summit was held at Bishkek in Kyrgyzstan from August 31 to September 1. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today reviewed two schemes, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana PMDDKY and the progress of Watershed Development Component WDC PMKSY of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana in New Delhi. The meeting focused on accelerating implementation of the PMDDKY scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district level performance for farmers. The scheme focuses on 6 key objectives of increasing agricultural productivity, promoting crop diversification and sustainable agricultural practices among others. During review of WDC PMKSY, the Agriculture Minister called upon the states to ensure speedy implementation of projects and clear and measurable outcomes at the grassroots level. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to student protests mentioned in applications filed by the Centre, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The apex court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present in the Jantar Mantar protests as they had serious criminal antecedents. The death toll from the devastating flash floods in Nepal has crossed 1,000, with security forces recovering more bodies from 8 affected districts of the country. Rescuers struggled to trace those stranded amid intermittent rainfall and a fresh flood alert as water levels rose in rivers across several districts. And that is the end of this news bulletin.
4: रात्रि हिंदी न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: क्या
1: क्या कॉलेन की हो?
0: कॉल करे क्या?
1: कॉलेना की हो?
0: ना ना ना, अरे कॉल करे क्या?
1: कॉलेना की हो?
0: अरे मम्मी से छुप के फोन किए हैं।
1: तो
0: कॉल करे क्या?
1: कॉलेन की हो?
2: तू तो बड़ा भोला है, कुछ नहीं समझता है, तुझको समझाने का रब जाने क्या रास्ता है।
1: हाँ

0: अरे हम तो वीडियो कॉल का बात कर रहे थे।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Don't touch my hair।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी?
2: अरे तारातारी खाना दो ना, खा के फिर ड्यूटी पर जाए के बा।
3: बंगलिनिया फोन कर छे।
1: आए, अरे तोड़ा तारातारी कर ले से किचू होबे ना। ला हुड़ ला।
3: ठीक अच्छा हम आवत ने।
1: एक सकाले के गईल गईल बिकाले आइल ह, अबर पता न कहाँ जाए लगा हता। की गो चुपचाप बैठबे कि लात खाबे?
4: झूठो बंगलिनियन के बदनाम करता इस साला, खुद पे बड़का ठरकी हा।

0: के बच्चा, सुअर के बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा, केकरो बच्चा इतना ढेमना ना हो सकेला जितना ई ढेमना गिरी आदमी के बच्चा होके करेला।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो रूम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते।
1: कौन? भारती मैम।
2: जी।
1: अच्छा, कैसे हैं मैम?
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी।
2: क्या हो रहा है जी?
1: अभी पहचाने नहीं है क्या? लग रहा है।
2: आपका आवाज ऐसे चेंज हो जाता है हमेशा, क्यों?
1: आवाज कैसे चेंज हो जाता है? ये तो घर पर आ गए हैं ना, यहाँ का पानी खा रहा है ना।
2: हाँ हाँ, इसीलिए ना थोड़ा सा चेंज लग रहा है।
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमतापुर।
2: आपकी हंसी पहचान गए।
1: और बताइए मैम।
2: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तब रक्षाबंधन कैसे मना?
1: रक्षाबंधन सही से मना, एकदम साड़ी ओड़ी भी दिए और ऊपर से उन लोग का 2-2 किलो चीनी भी दिए।
2: अच्छा।
1: और 250-250 रुपया भी दिए। बताइए घर आने के बाद कितना नुकसान हुआ?
2: नुकसान क्या हुआ? अपनी बहन से दिए और क्या।
1: मैं बड़ी वाली बहन से बोले कि भाई देखो और कुछ नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, बताओ क्या चाहिए बताओ। तो बड़ी बहन बोली कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस 5 किलो चीनी दिया दो।
2: अच्छा।
1: हम बोले 5 किलो चीनी का दाम जानते हो कितना हो गया? 80 रुपया किलो के हिसाब से, वही 300-400 के आसपास हो गया। तो हंसने लगी दीदी मेरी, वो बहन बड़ी वाली, बोली कि नहीं आप लोग का प्यार है बहुत है, ये मम्मी पापा को आप लोग बस ध्यान रखिए, उतना ही बहुत है, हम लोग का पैसा उसका कुछ नहीं चाहिए।
2: तो आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी, हाथ उठ भी थोड़ा सही हो गया है, सारा करवाया है जा करके सरकारी अस्पताल में।
2: वही तो पूछ रहे हैं, मतलब अब ठीक है ना? कुछ निकला तो नहीं ना?
1: नहीं कुछ निकला नहीं है, खून जम गया था ना, खून जमा हुआ है, वही दर्द करता है।
2: तो उसको कुछ दिखा लीजिएगा ताकि खून वो जो जमा है वो थोड़ा ये हो जाए।
1: नहीं दवा ववा दिया है, दवा ववा मलहम दिया है, बोल रहा है कि गर्म पानी से इसको धोया करो और गर्म पानी नमक से उसको डाल करके, और बाकी दवाई वाई मलहम दिया है। हाँ दवाई भी खा रहे हैं, दवाई भी 4-5 दिन का दिया है। हाँ नहीं तो हम अभी तक चले गए होते, जी से बात कर लो। वो कार्टून देखता है खूब मोबाइल में, वो नहीं बात करेगा, बहुत बदमाश है गुंडा।
2: अच्छा।
1: बाबू नहीं बात करेगा,
2: बहुत बदमाश होना चाहिए।
1: हाँ इसका मौसी बोलती है कि इसका पापा कैसा है तो वो लड़का नहीं रहेगा उसका। हाँ ये अपना घर गया था ना अपने मामा के घर।
2: हाँ
1: इसका 2-3 मौसी है, बहुत बहुत मजाक वजाक में।
2: हाँ तो उन लोगों का हक है।
1: हाँ और मौसम आज तो मौसम बहुत सुहाना है ना मैडम?
2: जी जी मौसम तो सुहाना बना हुआ है।
1: हाँ 28 तारीख को मैडम हम लोग मेला गए थे वहाँ महावीर यहाँ खड़ा। आज गाना हमको सुनवाइएगा, मेरे महबूब का वादा निभाना होगा, यही गाना।
2: पुराना सॉन्ग है? पुराना है?
1: पुराना नहीं है, नए सॉन्ग है।

0: ईशा में मेरे वादा निभाना होगा, ये गाना सबसे पहले आपको सुनवाना है, जितना रेडियो म्यूजिक सुनने वाले हैं सबको। गाना है, गाना मैंने जो हम बताए वही गाना बजाइएगा ना, आपको ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कौन सा गाना है।
1: ध्यान में आ गया है।
0: आ गया ध्यान में, तो थोड़ा गाइएगा एक दो कड़ी।
1: एक दो कड़ी गाए?
0: हाँ गाइएगा।
1: ऐसे मेरे महबूब तुझे वादा निभाना होगा।
0: हाँ ऐसा ही है, यही है सेम।
1: चाहे रोके ये जमाना।
0: हाँ यही है, यही। हाँ हाँ राइट राइट राइट। गाना एकदम मस्त है एकदम।
1: गाना तो मस्त है।
0: हाँ हमको हिंदी गाना से भोजपुरी गाना नहीं उतना वो नहीं लगता। भोजपुरी हम गाना सुनते हैं, वही खेसारी लाल का वो थोड़ा उसका बेवफाई सॉन्ग सुन लेते हैं।
1: भोजपुरी में भी होते हैं कुछ गाने जो अच्छे हैं, अच्छा लगता है। कोई कोई
0: पवन सिंह का हो गया, खेसारी लाल का हो गया, वो सब सुन लेते हैं थोड़ा बहुत। और सब मोनार्मा सिस्टर आप ये सब कैसे हैं इन लोग?
1: ये सभी ठीक है।
0: अच्छा और सब अलग अलग उन लोग का ड्यूटी दिया गया है ना। चलिए बढ़िया है, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। आपसे बुध के दिन बात करने वाले थे हम, बुध के दिन हम ट्रेन में थे, दीवान में उतरे हम, 11:30 बजे उतारा हमको लिया कर, 11:30-12 बजे करीब। अब वहाँ बारिश सीखना न होने लगा कि उठने का नाम नहीं ले रहा था मैडम। फिर वहाँ से लोकल पकड़ के थावे आ गया। थावे आ करके भाई का वहाँ से थावे से बुलाया, बोला कि आ जाओ थावे आ गए स्टेशन में।
1: चलिए फिर ठीक है, आज बहुत सारी बातें हो गई, अभी और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं।
0: ठीक है ठीक है, ओके मैम।
1: गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
0: ठीक है, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो
0: बहुत बहुत है आपका रेडियो 90.4 एफएम है
1: जी। रमजान
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाँ बढ़िया है, आपको सुनाइए। बारिश हो रहा है यार बनारस, हो रहा है?
0: नहीं इधर तो नहीं हो रहा, इधर तो ऐसे मौसम बना हुआ है।
1: सॉन्ग सुनवा लीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा?
1: अजय मूवी का, सनी देओल का मूवी अजय।
0: जी गाने की बोल बता दे।
1: उसमें गाना है पान खा के जाना गोरिये, पान खा के जाने, यही बोला
0: जी। और गाना किसी को सुनाना कुछ है
1: जी? आप सभी को और जितने सेवना सभी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे।
0: ओके तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो मैडम, नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी, मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से। आज मैडम हमको कोई गाना ऐसा सुनाइए जिसमें प्यार शब्द न हो।
7: प्यार शब्द ना हो?
6: ना हो।
7: क्यों, क्या हो गया है?
6: हर गाने में प्यार प्यार प्यार प्यार ये सुन सुन के हम आजीज हो गए हैं। कोई ऐसा गाना सुनाइए कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, हिंदी गाने में न।
7: ऐसा कोई गाना आपके ख्याल में है?
6: हमारे ख्याल में होता तो आपसे थोड़ी पूछे हो। आज वही दिल में जब बैठा कर रखे हैं कि आज मैडम तक कहेंगे कि ऐसा गाना सुनाइए हमको कि जिसमें प्यार का शब्द न हो, जैसे हवा पानी आग है ना, और जैसे लाइट अंधेरा ये सब है का नाम आ जाए लेकिन प्यार का नाम ना आए, ऐसा है गाना मैडम?
7: हाँ है ना, पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं।
6: भौरे गुनगुनाते हैं, ये तो याद ही। इसे भी थोड़ा नया में तो कोई नया हिस्से में है जो प्यार शब्द नहीं हो वो सुना दीजिए, ताकि सबको आजकल नए नए गाना लोग सुनता है। ये तो गाना तो बहुत पुराना है ना।
7: गाना है पर मतलब इसमें नेचर से रिलेटेड शब्द है लेकिन प्यार शब्द नहीं है, मतलब नेचर से ही रिलेटेड है ये।
6: मैडम ऐसा है कि आपको सब ये गाना सुनते सुनाते या इसमें जो है रिवाइंडिंग होते होते आपका दिमाग एकदम पूरा गाना तो सेट कर गया ना। जो जो जिस रास्ते में रहता है ना तो उसका गाना और उसका दिमाग जो है उसी पर खुल जाता है। बिल्कुल सही है, तो सुनाइए मैडम वही कोई गाना। हम अपने तरफ तो नहीं कहेंगे, आप ही सुनाइए जिससे प्यार शब्द न हो। और आप कैसे हैं मैडम आजकल? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी 100% नहीं, 80% है ना। चलिए 80% पर वाला चाह, भगवान चाह तो वो भी 20% पूरा हो जाएगा ना, लेकिन समय का इंतजार होना चाहिए है ना। जो सब्र कर करता है ना उसी को फल मीठा होता है।
7: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: भारती जी।
0: हाँ
1: जी अमिताभ मास्टर ग्राम धनाव से।
0: जी जी क्या हाल चाल है आपका?
1: खूब बढ़िया, अपना बताएं।
0: मेरा भी ठीक है।
1: ठीक है, बारिश हो रहा है?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रहा है लेकिन मौसम बढ़िया है।
1: अरे उधर नेपाल वाला बाढ़ आपके तरफ भी आया है?
0: नहीं नहीं आया है, मतलब वो जैसे जो गंडक नदी है वो थोड़ा बढ़ जाता है उसमें पानी, अभी बाढ़ का समस्या तो नहीं आया है उतना, उसके आसपास में थोड़ा सा आया है।
1: किशनगंज ने बता रहा है।
0: उसके बस आसपास
1: है, रक्षाबंधन तो बीत गया ना?
0: जी रक्षाबंधन बीत गया।
1: तो गाना सुना दीजिए।
0: जी बता दीजिए।
1: प्रिया मूवी का है। मैंने तुझे से प्यार किया है इसमें मेरा खता नहीं। और सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ और जितने रेडियो रंजीम है सुनने वाले सभी दोस्तों को, और हम लोग सुनेंगे धनाव से रोशन तिलक में।
0: आप तो इतना अच्छा गाते हैं फिर भी थोड़ा सा गा के सुनाते हैं।
1: अभी थोड़ा सा, अरे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, थोड़ा कल तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था।
0: अच्छा हाँ मौसम बदल रहा है तो तबीयत थोड़ा बहुत इधर
1: चले गए थे, धूप में खेत में दवा छिटने था, थोड़ा छिटवाना था, अब हम ही अपने छिटने लगे, बहुत धूप गर्मी बहुत बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत गर्मी लग रहा था। 24 घंटा पंखा ही में रहते हैं।
0: ये तो है।
1: चलिए तो फिर यार बहुत चोट चलेगा ना?
0: हाँ देखिए
1: ठीक है।
0: गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: जी जी बताए ना, जितने में सभी को, आपको भी और हम लोग चुनाव से रोशन चिल्लर में सुनेंगे सब लोग।
0: अच्छा जी जी जी बिल्कुल, तो गाना प्ले करते हैं।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they watch the head, go get the hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM।
5: मैं तेजी कर रहा हूँ।
6: प्रणाम।
5: तबियत कैसा है?
6: ठीक है, दवा खाए हैं? ठीक।
5: तो चली की ना?
6: चली।
5: तो कौन है कि आज हमारा लगवे ना करी कोई कितना बार कह के छोड़ देनी रोनी हो कहीं तो सारे 12 बजे के बाद करें। हमारे के रही हमारे फेवरेट सिंगर रहे खुशबू सिंह, उनके गाना बा जे करे से लव कैलू करे से परेशानी बा जासन में करम सोहरो लागे खानदानी बा। ये बजा दे
6: और गाना
5: सुनाए के बा। रविरा पहला नंबर तो रविरा सुन ले। मनोरमा मैम आजकल थोड़ा गुस्से में है, वो सुन ले हम। ओके, सोनी मैम के हुए हाल बा। सोनी मैम सुन ले, यहाँ रहे मोजा। हमारा नाम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। चलिए तो हमारे फरमाइश पूरा करें।
6: गाना प्ले करता नहीं सुनते रेडियो।
5: चलिए ठीक है, सुना इंतजार।

0: हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4।
1: मैं हैदराबाद कर रही हूँ, सूरत से।
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: बढ़िया रहना चाहिए।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बैठ के कॉल लगा रहे थे। कितना दिन से सोच रहे थे कॉल लगाने के लिए, लेकिन कभी भूल जा रही थी तो कभी टाइम ही नहीं निकल जा रहा था कॉल का।
0: कोई बात नहीं।
1: हाँ, आज सोचे आज भी टाइम निकल जाता, लेकिन थोड़ा टाइम है अभी, थोड़ा बहुत
0: टाइम है अभी, आधा घंटा।
1: हाँ, तो सोचे कि आज लगा ही लेते हैं।
0: अभी तो तबीयत ठीक है आपकी?
1: तबीयत खराब था, अभी फिलहाल थोड़ा ठीक ठाक है।
0: अच्छा, क्या हो गया था? बुखार?
1: नहीं, वो बुखार नहीं था।
0: अच्छा, तो कौन सा गाना सुन रहे हैं आपको?
1: सॉन्ग सुना दीजिए, भोजपुरी सॉन्ग।
0: गाने की बोल रहा था,
1: गाने का बोल है ससुई की बोली है जहर लागे, सिल्फीराज की आवाज में। और सुनवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को, आपको। हीना जी है, शफाक है, सलेहा है, ब्यूटी परवीन है, रुबीना नाज है, रुखसार जी है, और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, समीर भाई और बाकी जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी लिस्टर को।
0: जी, तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: बोले मैडम एक सॉन्ग का फरमाइश रहेगा मेरा आज, हिंदी सॉन्ग है राधा तो बना है श्याम का, और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव दोस्त सुन रहे हैं सभी के लिए और आपके लिए भी,
1: और गाना किसी को सुनाना है
0: जी जितने लाइव दोस्त हैं सभी के लिए।
1: अच्छा, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 94.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: रक्षाबंधन के कोई से गाना सुना दीजिए।
0: रक्षाबंधन का?
1: जी
0: हाँ, रक्षाबंधन। चलिए, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको और सबको जितना भाई बहन सुनने वाला है रिलीजन पर सबको सुनाना चाहती हूँ।
0: जी
1: कैसी है आप?
0: मैं
1: ज्यादा दिन में कॉल लगा।
0: नहीं बस यही थोड़ा काम में बिजी है ना सबको।
1: हाँ हाँ बहुत सुपाले नहीं लगवाई थी, इतना ट्राई किया, बंद बता रहा था। हाँ अब तो शुरुआत हो गया तो अब तो लगे भी गया। खुश हो कॉल लगा कर बहुत जल्द लगे तो कराइए की
0: ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा।
1: आप सब बढ़िया दुआ है
0: तो गाना प्ले करें।
1: हाँ ठीक है मैम, बाय
0: बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: गुड मॉर्निंग, भारती में बोल रही है क्या?
2: जी गुड मॉर्निंग।
3: कहाँ थी आप इतना दिन से?
2: जी हम तो यहीं पे थे।
3: अभी आप तो दर्शन ही नहीं दे रही थी।
2: नहीं नहीं, इधर ही हम भी थे, बस ये काम अभी किसी को मिला हुआ था करने को।
3: जी, मैंने गाना सुनना था।
2: बता दीजिए।
3: एक तो लगता ही नहीं, बहुत ट्राई करे, 12-13 बार ट्राई किए तब लगा। पता नहीं क्या, बहुत बिजी हर समय बिजी बता रहा था।
2: कॉल काफी आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद ये वाला कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब कोई बातें कर रहे हैं।
3: तो उधर का मौसम कैसा है मैम, गोपालगंज का?
2: गोपालगंज का मौसम तो अभी
3: बारिश हो रही है।
2: नहीं बारिश नहीं, कभी धूप कभी छाव।
3: कभी धूप कभी छाव। हाँ, इधर का भी मौसम उसी तरह है। सुबह में तो बारिश हुई थी। मैंने गाना सुना दीजिए। ये गाना है हाथी मेरे साथी का, नफरत की दुनिया छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। या बस पहले तो हम अपने ये श्रोता गण को सुनाना चाहते हैं और उसके बाद अपनी वाइफ को सुनाना चाहते हैं। बस ये कब तक बज जाएगा मैम?
2: आपको आज ही सुनने को मिल जाएगा।
3: आपको तो लगता है उम्मीद कम है, 4-5 दिन बाद मिलेगा सुनने को।
2: आज नहीं तो कल बिल्कुल मिल जाएगा।
3: देखिए अब आप करेक्ट बोले, अभी तो बोल रहे थे कि आज शाम में सुनने को मिल जाएगा।
2: नहीं मतलब जैसे कि आपका तो कॉल लाइन में है कि बज जाएगा, पर ये अभी और
3: कीजिए आज और कल में।
2: आज और कल में बिल्कुल सुनने को मिल जाएगा,
3: क्योंकि हम 2-3 बार ट्राई किए, कभी नहीं आज कल हो पाया मैम। 4-5 दिन के बाद आता है नंबर मेरा।
2: नहीं नहीं, इस बार आपका आज या कल बज जाएगा।
3: ठीक है मैम, थैंक यू।
2: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
3: थैंक यू मैम।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मायर एमपी से।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम, तो अभी तो इंतजार खत्म हो गए मैम, फोन लगती है।
0: जी जी, तो आप बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: जी गाने का बोल है चलते चलते यूं रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ। और सुनवाएंगे कितने रेडियो दोस्ती लोग सुनते, सारी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: जी और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: और सबसे पहले आपको कितने रेडियो रिंजन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
0: ओके, तो गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंजन 90.4 FM।
1: ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Jab phone din de bajte hai to kehte hain hello. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी नमस्ते दी।
2: नमस्ते।
1: राधे राधे आपको।
2: राधे राधे।
1: और कैसी है दी?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल। तो क्या हो रहा है?
2: बस आप सभी से बातें
1: करना है,
2: ज्यादा दिनों बात करना।
1: जी जी, और पहचान रही है मुझे?
2: बात तो पहचान
1: जी जी, और एक ही बार बात हूँ और मैं बड़ी लंबी आपसे बात कर रही हूँ।
2: वही तो।
1: और आप पर डे शो करती हैं तो आपकी शो 101 बढ़कर जा रहा है, और जो आपकी आवाज है ना, आपकी आवाज में बड़ी मिठास भरी जा रही है।
2: अच्छा?
1: और शो बड़ा जबरदस्त कर रही हैं। कोई भी शो में आ रही हूँ उसको जो झकझोर दे रही हैं, वो बताना भी जरूरी है। और उसमें से मैं तो बहुत पुरानी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुआ आपको भरपूर मेरे वाले से दुआ करेंगे, दिन दुगुना रात चौगुना ऐसे ही जबरदस्त वो करिए। और जो आपकी बीच में जो भोजपुरी वाला जो आवाज होती है ना, बड़ी मीठी होती है, बड़ा नीक लगेला जी।
2: नीक लगेला,
1: सच में बड़ा नीक लगेला। और का कहेंगे हम, थोड़ा बहुत मजबूर हो जानी ना, तो बस हम बताई तुरंत, और आवाज बड़ा नीक लगेला। जी जी, और ऐसा ही शो करते रहिए और सब कोई के दिल पर राज करते रहिए। और पीछे हमनी के तो करे वाला बड़े वाणी का। जी, और रघु भारती दी बोलता नहीं ना?
2: हाँ
1: जी, देखी रहो गया आवाज हम प्यारा बतावे के बिना पर
2: सब बताएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मस्त वानी पूछी तो झकास वानी। और मौसम बताई कैसन बा? मौसम
2: मौसम देने के ठीक
1: बात। और नाश्ता वास्ता कर ले वानी?
2: हाँ, नाश्ता हो सकती
1: है। जी चली बढ़िया वाह। और बीच बीच में पानी पियत रहे मेरे से, गाय धो के तो पूछे के ना क्या जी। और पता वा आज हम कुछ और सोच ले रही है, बाकी कुछ और सुने के मिल गई पता है क्या? और जो मुरमना दी जो कॉल लेनी तो वहाँ से बात नहीं के बोलते हम कहीं, हम तो हमेशा जुड़े नहीं ना, तो आज हम वो प्लान में वो मांग के रख मोबाइल छोड़ के जाए तो पापा जी दे के चला गई है। तो कहानी आज हर हाल में कॉल करे, अगर वो से बात कर ले थोड़ा सही तो उल्टा भारी पड़ गए। कोई बात ना,
2: कोनो बात ना, तो करा दूंगा।
1: जी जी, और कोनो बात ना, वो कभी अगर रिकॉर्डिंग करे तो बात हो जाये, वो तो सुनते रहे नहीं था, अगर बात होके तो हो जाये। जी, और मैंने हम बस एक बार हो गई, एक बार करवा से बताइले रहनी जब लोग पहली बार आवाज सुननी तक। ऐसे मेरे वो लोग सो हम हमेशा सुने नहीं, बाकी जुड़े नहीं ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमार बा, बाकी सो सुने नहीं रहा। और हमारे माँ बहुत अच्छा वानी, रो लोग की दुआ से बहुत अच्छा वानी दी। और वहाँ की दवा कंटिन्यू चलेगा के परे, फिर वहीं से अभी कल परसों फिर जाए पटना। और हमार बस अभी की दुआ से बहुत अच्छा वानी,
2: जल्दी से
1: ठीक हो जाए। जी जी जी, और सिखवा शिकायत बात अनुभव से ना करे, ये शिकायत उसो के जरिया हम बहुत पहले से भी जानता नहीं, ये शिकायत में से बहुत अर्जी रिटायर भइल बानी लो, तो ऐसा बात नहीं कि कभी इंसान जुड़ेला तो वो काम हो ना पावेला, तो रोज से शिकायत नहीं की कर बोल देनी है। ना ना ना करे, इतना तो बता देनी बहुत ज्यादा बा। और पहले भी आरजे शो कैले बानी लो तो हमने के पता बा, और पहले बहुत ज्यादा जुड़ल बानी हम रेडियो रिंजिन में बहुत ज्यादा, अब थोड़ी सी ना जुड़ पाए नी, बाकी सुने नी, इतना ध्यान रखे हम सुने नी, कोई भी शो मिस ना करे। जी जी, वो तो पता बा, और का करे बा, हमार नाम वैसे ही पड़ेला रहुआ जब पानी की जरूरत पड़ेला। और हमार नाम है रानी, हमार घर है रखुआ। लोग ए पर जितना लोग जुड़ेला वो सबको ही पहचान जाये, बाकी नया लोग ना पहचानी, हमार जो हंसी बा सबको पकड़ में आ जाला कि हम रानी बोलते हैं। जी और चली बात तो भाई बाकी गाना सुना दी अभी लगले सौरू के हम पीछे चुरा दी रहू अंत वाला तो सब वाला रहू अभी लास्ट कौन चला तक बहुत जा रहा बा जी बरसात मूवी से सॉन्ग सुना दी जो मैं जोन गाना बा ना बबी देओल के जोन मूवी बा बरसात मूवी करते हैं हम भी तुमसे प्यार यही सॉन्ग सुना दी जी जी जी सबसे बड़का हकदार रहुआ बनी है गाना के रहुआ लीली रानी की तरफ से हमारा तरफ से तू तो बड़ा जबरदस्त करता नहीं और ये थोड़ा सा रहुआ सुन के बड़ा सुकून मिलता है और रहुआ और भी कामयाबी के आगे रहुआ जान के चली हम तो शो करता नहीं और खास सबसे बड़का चीज और वालों में आरजी में लागे ला। दिन सोनी जी बीच बीच में अपन रिकॉर्डिंग भेजे नहीं एक आरजी हो गए के नाता

0: तुमको को सुन के बहुत अच्छा लगेला, अभी बड़ा सुकून मिलेला। और रउआ के और मुरम नदी के और एगो दिव्या दी रानी है, तो वो तो चली गई नहीं, तो उनको के वहाँ क्या करा, और बाकी सब कोई की रानी के तरफ से सब आ रहे।
1: आवाज बहुत अच्छा लगेला सुन के।
0: अच्छा जी चलिए, हम तुम्हें कहिए कसर ना छोड़नी, हम सुननी है कि
1: ना ना आ रहा आवाज, हम एक बार में सुननी है तो पहचान नहीं है, जबकि हम रउआ से एक बार बात करेंगे।
0: वही बात, जब रुआ बोलनी है तो हम पकड़ में आ गई है कि रुआ वे दी है, जब रुआ से हम एक बार बात ले बनी, बाकी ऐसे में हम आएंगे शो लेके तो वो शो मिस भाई बा। और देखिए हम जुड़ी चाहे ना जुड़ी, और जो इस शो बार वालों के जो चैनल भाई हमारे गोपालगंज के जिला के चैनल है, तो समझिए हम कैसे मिस करें, हम तो हेती चुकी से शो सुनते आई बानी, भले जुड़ी है ना जुड़ी बीच में, बाकी स्टार्टिंग से हम सुनता नहीं। और वो चाहे हम तो अपने पूरा बाय डाटा रेडियो रिंगिंग के बारे में पूछ सकते हैं, तो हम बता सकता नहीं कि कितना अर्जे गई बानी लो, बाकी थोड़ी टाइम की अभाव बा और आगे भी लाइन बहुत लागल बा, बाकी इतना सब बताई नहीं है कि इंसान अगर कोई बीच बीच में इतना दिन के बाद कोई जुड़ेगा, बाकी हम सुने नहीं जी
1: जी।
0: और थोड़ा सा ध्यान दें, बीच बीच में पानी पीते रहें, शो के जरिए प्यास तो बहुत लागत है, ऐसे का लिसनर सबसे बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाला ना।
1: बात
0: और सबसे ज्यादा तो एक चीज हम बानी रहुआ खाती जी जी जी। चलिए और कुछ दुनिया में कुछ नहीं के जी, मन बस भाव भाव विचार,
1: टाइम मिले तो कबो याद कर लिया करें
0: जी जी जी, ऐसा बात नहीं के कॉल करें। और पता भाई आज सच में हम रियल में कहते नहीं रोज, हम पापा के फोन के हम मोबाइल रख के आज कॉल कर ले बानी, ऐसे में पापा जी से कहते रहने की मिस्टेक से रोज छोड़ के भी चल जाये, बाकी यार मांग लेनी तो दे देनी है। चलिए चलिए, और ऐसा ही सॉन्ग करते रहें और मीठी मीठी आवाज से लोग के पूरा दिल जीतत रहे, और हमने सबके पीछे से लेते चली आगे रहूंगा, पीछे से हमने के सारी लिसनर ऐसा ही समारत रही है।
1: बिल्कुल कोशिश में तो लग रही है
0: ना ना रो जाए, बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए रो, करी अपने दिल मेहनत लगन से करी। और सच बात में अगर ज्यादा अगर हम ये करी तो ऐसा बात नहीं के रो करतनी इसके द्वारा बताए नहीं, लोग सारी इंसान सुनेला और जानी करतनी ऐसी बात नहीं के भी। और पहली बार तो कोई भी कहीं मशक्कत कोई काम करे जाला तो देख रेख करे नहीं तरीका, इंसान थोड़ा सा चाह के भी अगर हिल ना सके बाकी गिर जाला वो जगह से अंदर के जो झक धक दिल करेला पहली जो समझी पल का होला, बाकी बाद वाला दूसर का पल बहुत अच्छा होला, वो सही रहो सुहरते चली जी जी।
1: चली तब फिर बात हुई
0: जी जी जी जी बात हुई। और इस शो में सभी कोई परेशान हो तो ये से गए जो कॉल करे के तरीका वाला ना, तो जी नींद ना हो तो तब वो पंखा के जरूरत पड़ जाला तो वे बात बा। और चलिए इतना सारी बात भइल बा, रिकॉर्डिंग के जरिए वाला शो चला देम और जो बात भइल बा बीच में काट देम, ये से क्या लंबी बात भइल बा रउआ खातिर ज्यादा अच्छा होई। ऐसे ही में कहा है नीलो रानी बहुत ज्यादा बात करती है। चलिए बाय दी जी जी, प्ले कर दी
1: रेडियो
0: जी, बाय
1: बाय।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो,
4: नमस्ते मैम।
3: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
4: हम खारा से बोलते हैं, रामाजी प्रसाद
3: जी। का हाल चाल बा?
4: हाल चाल ठीक बा, दिन ठंडा भर बा लेकिन गर्मी बा।
3: अच्छा,
4: और गाना सुने बा?
3: बता दी कौन सा?
4: मेला में सैया फुलाइल हमार, अब का करी हो राम अब का करी।
3: हाँ, ये गाना क्योंकि सुना उनके बाद
4: जितना रिव्यू सुनता सब कोई के धनाव से बारे हमारे बाहर नाम लेते रहन तो अपना लेते उनका के
3: गाना
4: चले
3: प्ले करता।
4: नमस्ते
3: जी, नमस्ते। रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: भारती जी, आपका भी रेडियो रंजन में स्वागत है। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और कैसे हैं आप?
0: ठीक ही हैं।
1: ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक ही हैं, इसका मतलब ठीक नहीं है?
0: हाँ तो मतलब ठीक है।
1: चलिए ठीक है तो अच्छी बात है। जबकि बारिश वरिश नहीं हो रहा है क्या?
0: नहीं, बारिश तो नहीं आ रहा है, बस मौसम बना हुआ है।
1: बारिश वरिश करवाई है, मौसम बन रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, बताइए। हम लोग इधर बेसब्री से इंतजार करते हैं, भारती जी की आवाज सुनने को भी नहीं मिलता।
2: पर आप लोगों ने उसका कॉन्टेक्ट भी नहीं खिलाई और ऊर्जा भी नहीं आई। हम लोग तो थरस के रह गए।
0: जी जी, तो थोड़ा तबीयत खराब था ना।
1: कहते हैं कि थोड़ा सेहत पर ध्यान दीजिए।
0: थोड़ा आजकल मतलब पर्व वगैरह था ना, मम्मी तो कुछ करती नहीं है, उनसे नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मुझे देखना पड़ता है। अकेले तो कभी कभी हो जाता है ऐसे।
1: ये भी देखना जरूरी है। फिर मैंने कहा कि जब ये कॉन्टेस्ट वाला नहीं हुआ था, भारती जी आज लगता है छुट्टी पे है, इसलिए नहीं आई।
0: बिना सर को बताया हम लोग छुट्टी पे कभी नहीं जाते।
1: कोई बात नहीं, तो माँ जी का भी ध्यान रखिए और सबसे पहले अपना भी ध्यान रखिए। कोई बात नहीं, कल नहीं आई तो, लेकिन सेहत आई तो ला गई। क्यों, सेहत सही रहेगा तो स्वस्थ इंसान रहेगा, तो हम लोग को भी आवाज सुनने को मिलेगा।
2: बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास है ना। नाश्ता उसका पानी करके आई है कि नहीं? आज भी
0: नहीं, नाश्ता पानी तो करके आते हैं, इससे कहाँ होटेलने वाले हैं।
2: सेहत पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग को आवाज देते रहिए, ताकि हम लोग जो है इसी में हम लोग आपको आवाज के लिए बेसब्री से इंतजार करते
0: हैं।
1: इसलिए तो कहते हैं कि दुआ दुआ करते हैं आपके लिए हम हर पल, हर दिन आपके लिए लाए हसीन पल। वो खुशी का आपका ये जो रहा सदा हर पल, ये गाना है,
0: बता दीजिए।
1: उस आई फिलहाल की रात का है या दिल का है? मुझे नींद ना है, मुझे चैन ना है, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया।
0: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले तो आपको सुनवाएंगे।
0: जी जी,
1: और साथ में आवाज जो आ रही है आपके मनोरमा जी हैं, उनको भी सुनाएंगे।
0: जी,
1: और जितने तमाम श्रोतागण इस रेडियो को शाम प्रोग्राम सुनेंगे, उन सभी का ये गाना डेडिकेट है। लेकिन आपसे बात करके बहुत खुशी आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनने को मिलेगा हम लोगों को।
0: जी जी,
1: थोड़ा बहुत आपके प्रोग्राम वोग्राम सुना, उसके बाद नहाया धोया और जाके निकला। थोड़ा टाइम दे देते हैं हम लोग कंप्यूटर पे अपना, देखते रहते हैं।
0: अच्छा, देखना ही चाहिए थोड़ा बहुत,
1: इसलिए कि हर चीज का सुविधा है, कोई ऐसा चीज ऊपर वाले कमी नहीं दिए हैं। बाकी जो है भेजूंगा वीडियो, देखिएगा, आइएगा प्रोग्राम में। तो
0: जी जी, बिल्कुल।
1: तो नमस्कार, और भी लाइन में लगे होंगे।
0: जी,
1: तो रखते हैं, आपका दिन शुभ हो।
0: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्ति ट्रैवल.com पर विजिट करें।

0: बजे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: राधा, ओ राधा।
2: क्या है? मैं नहीं बोलती।
1: देखो आज होली है, मुझे तंग क्यों कर रही हो?
2: जा, मैं नहीं सुनती।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल